मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएस डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा

0: यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में मिट्टी की जांच का महत्व विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, मिट्टी में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हों तभी हमारी फसल बिल्कुल स्वस्थ एवं अधिक उपज देने वाली हो सकती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और वह बीमार ना होने पाए, इसीलिए हम मिट्टी की जांच करवाते हैं ताकि यह निश्चित हो जाए कि जमीन में किस तरह की कमी है। मिट्टी की जांच के लिए सबसे पहले जिस खेत की मिट्टी की जांच करवानी हो उससे नमूना लेते हैं और फिर इस सैंपल को जांच के लिए

0: भेजा जाता है। मिट्टी की जांच का सबसे उपयुक्त समय क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। मिट्टी की जांच कराने का सबसे अच्छा समय फसल काटने के बाद या बुआई से पहले है, लेकिन यदि परती या ऊसर जमीन है तो मिट्टी का नमूना किसी भी समय ले सकते हैं। वैसे इसके लिए मार्च से लेकर के जून तक का समय उपयुक्त रहता है। अगर खेत में फसलें खड़ी हैं तो फसल की दो लाइनों के बीच से भी नमूना ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि बुआई के कम 30 दिन पहले आप नमूना जांच के लिए अवश्य भेज दें, ताकि समय से रिपोर्ट प्राप्त हो जाए और उस अनुसार आप उर्वरकों का प्रयोग करें। ये तो कुछ बातें हुई कि कब मिट्टी का नमूना भेजना है, और अब कुछ मुख्य बातें नमूना लिया कैसे जाए। चूंकि मिट्टी के परीक्षण की सफलता मिट्टी के नमूना की प्रकृति पर निर्भर करती है, अतः यह आवश्यक है कि जिस खेत की मिट्टी का परीक्षण करना है उसका ऐसा नमूना एकत्र किया जाए जिसमें उस पूरे खेत की प्रमुख किस्म की मिट्टी का अंश आ जाए। अब बात यह आती है कि किसी खेत से कितने नमूने लिए जाएं। यद्यपि नमूनों की संख्या, किसानों की जोतों के आकार, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की क्षमता तथा विशेष प्रकार की मिट्टी की समस्याओं पर निर्भर करती है, फिर भी मोटे तौर पर 5 एकड़ तक के खेत से हमें एक सैंपल ही लेना चाहिए। फसलों की जड़ें प्रायः मिट्टी में 6 इंच की गहराई में ही होती हैं, अतः ज़्यादातर नमूने इसी 6 इंच की गहराई में ही लिए जाते हैं। हाँ, यदि गन्ने का खेत है या ऊसर जमीन है तो 9 इंच की गहराई तक तथा वृक्षारोपण के लिए आवश्यकता अनुसार 1 मीटर की विभिन्न गहराई तक, जैसे 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर की गहराई तक भी नमूना ले सकते हैं। पहले जिस खेत का नमूना लेना हो उसे ढाल, संरचना, रंग को ध्यान में रखकर अलग अलग खंडों में बांट लेते हैं तथा वहाँ प्रत्येक खंड से अलग अलग मिट्टी लेना चाहिए। जहाँ की मिट्टी लेना हो वहाँ की घास फूस साफ करके 6 इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा एवं 6 इंच गहरा गड्ढा खोदना चाहिए और उसकी मिट्टी अलग कर देनी चाहिए। फिर इस गड्ढे की लंबवत दीवारों से 1 इंच मोटी परत खुरपी से काट लेते हैं और इस प्रकार इस मिट्टी को ले लेते हैं। इसी प्रकार 8-10 स्थानों की मिट्टी पॉलीथीन पर रखकर मिला लेते हैं और फिर इसे गोलाई में फैलाकर 4 हिस्सों में बांटकर आमने सामने के 2 हिस्सों को लेकर बाकी मिट्टी को फेंक देते हैं। अब इस मिट्टी को फिर गोलाई में फैलाकर 4 हिस्से में बांटकर आमने सामने की आधी मिट्टी ले लेते हैं। ये क्रिया तब तक करते हैं जब तक मिट्टी 500 ग्राम तक नहीं रह जाती। अब यह 500 ग्राम मिट्टी ही नमूना है। इसे पॉलीथीन की थैली में भरकर कपड़े की थैली में बंद कर देते हैं। फिर पहचान के लिए थैली के अंदर एवं थैली के ऊपर अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम, विकास खंड, जनपद, खेत का नंबर तथा बोई जाने वाली फसल का नाम लिखना चाहिए और जांच हेतु जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। नमूना लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि खेत की मिट्टी गीली ना हो। नमूना लेने की जगह कंपोस्ट या खाद के ढेर नहीं होने चाहिए तथा मेड़ के पास से भी मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। सड़क, नाली तथा पेड़ के पास से भी नमूना नहीं लेना चाहिए। मिट्टी की जांच के बाद उसकी संस्तुतियों के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ती है तथा फालतू उर्वरक देने से बचा जा सकता है। संतुलित उर्वरक देने से पौधों की बढ़वार सुचारू रूप से होती है, उसमें किसी प्रकार की बीमारी आदि नहीं होती तथा फसलों से अच्छी पैदावार मिलती है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में मिट्टी की जांच का महत्व विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना।

भक्त प्रभु से विनती करते हुए ये कहता है कि मुझे संसार की मोह माया से पार लगाओ। हे प्रभु, आपका नाम पावन और पवित्र है, हमें आशीष दें, हमें कृतार्थ करें।

हे प्रभु, हमारा एकमात्र आलंब, एकमात्र सहारा प्रभु आप ही हैं। आप ही हमारा मार्ग प्रशस्त करो और इस माया मोह रूपी संसार से मुक्ति दिलाओ।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना। आराधना कार्यक्रम में आज आपने पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, विदुषी गिरजा देवी और चित्रा सिंह के स्वरों में भक्ति रचनाएं सुनी। आराधना कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रस्तुत है विचार बिंदु। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज की कड़ी का शीर्षक है मौन का महत्व।
1: मनुष्य का जीवन विचित्रताओं से भरा है। मनुष्य के जीवन में हर अनुभव, बात, विचार और व्यवहार के दो पहलू होते हैं, जैसे सुख दुख, जीत हार और सफलता असफलता। इसी तरह बोलना और मौन रहना भी है। प्रायः मनुष्यों और पशु पक्षियों में सबसे अधिक देखी जाने वाली भिन्नता वाणी की ही है। मनुष्य स्पष्ट और

0: उद्गम्य भाषा के माध्यम से अपनी वाणी प्रकट कर सकता है। इससे वो समाज में अपनी हर इच्छा अनिच्छा प्रकट करता है, जबकि पशु पक्षियों के लिए ये सुविधा नहीं है। उनके पास अपनी एक जनजात बोली है जिससे वे आपसी संवाद करते हैं। हमारे पास कई भाषाओं के जरिए बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं, पर क्या कभी हमने विचार किया कि इतनी बातों को बोलकर हम इनके बदले अपने लिए क्या प्राप्त करते हैं? आज समाज में लोगों में वक्तृता की होड़ लगी है। यदि हम थोड़ी सी संवेदना रखें तो भीतर एक बात प्रकट होती है कि क्यों न इन परिस्थितियों में उलझने से बचें और मौन धारण करें। शायद मौन व्रत रखने का आरंभ ऐसी परिस्थितियों के कारण ही हुआ होगा। मौन शब्द मन से ही निकला है, मन यानी अंतःकरण की ओर उन्मुख होने की राह। लंबे समय तक मौन होकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित निरूपण कर सकता है। मात्र एक दिन के लिए मौन व्रत रखकर हम इसकी महत्ता से परिचित हो सकते हैं। जिस दिन हम चुप रहे और जिस दिन कुछ न कुछ बोलते रहे, दोनों दिन हमें विपरीत अनुभव कराते हैं। जिस दिन हम मुखर होते हैं, स्वयं और पास पड़ोस को केवल बाहरी दृष्टि से देखते हैं, वहीं जिस दिन हम मौन व्रत रखकर अपने दायित्व निभाते हैं, उसमें हमें स्वयं और संसार को देखने की एक उदार दृष्टि प्राप्त होती है। इस तरह यदि मौन रहने का अभ्यास प्रतिदिन ही हो तो हम स्वयं और संसार के लिए कितने उदार हो सकते हैं। इंद्रियों को नियंत्रण में रखने में ही सुख की कुंजी निहित है, और इंद्रियों को संयमित करने का एक उत्तम उपाय है मौन। अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने मौन की महत्ता को स्वीकार किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण मौन को 5 तपों में से एक कहते हैं। वाणी का मौन मन की शांति के बिना असंभव है। मन को शांत करने के उपरांत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नए विचार आते हैं। मौन रहते समय हमारे विचारों का चयन, शोधन और परिमार्जन होता रहता है। परिणाम स्वरूप हम सर्वोत्तम विचारों को प्राप्त कर सकते हैं। मुनिजन मौन द्वारा प्राप्त इस सकारात्मक ऊर्जा को संचित कर परमार्थ सेवा करते हैं। प्रख्यात अमेरिकी कवि हेनरी लॉन्ग के अनुसार मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। मौन अवस्था में हम सही आत्मावलोकन कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निद्रा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए मौन की जरूरत होती है। ज्ञान की शक्ति मौन है। महात्मा गांधी कहते थे कि मौन में अंतर शक्ति को जगाने की प्रभावशाली सामर्थ्य होती है। उनके अनुसार वो व्यक्ति जो अपने जीवन में निरंतर रूप से सत्य का शोध कर रहा हो, मौन साधना का ही पथ पकड़ता है। संसार के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना के समय महर्षि वेद व्यास जी के मुख से निकले वचनों को लिपिबद्ध करते समय गणेश जी मौन साधना में लीन रहे। मौन के महत्व का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? आज के समय में जब वाचालता को बुद्धिमत्ता से जोड़ दिया जाता है तो मौन की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। भूख लगने पर हम आवश्यकता अनुसार भोजन करते हैं, शारीरिक आवश्यकता अनुसार सोते हैं, लेकिन वाणी पर संयम कितना रखा जाए इसका ध्यान नहीं रखते। वाचालता ऊर्जा का व्यर्थ क्षरण है। तभी तो अधिकांश संत महात्मा मौन के उपासक रहे हैं।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज की कड़ी का शीर्षक था मौन का महत्व। आलेख एवं स्वर अरुण पांडे का था। प्रस्तुत कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुने उचित पोषण अच्छा स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर आंचल सिंह से ये जानकारी।
2: नमस्कार। आज की जो लाइफ है, हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के पीछे भाग रहा है कि उसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। सबके ड्रीम्स है और उन ड्रीम्स में लाइफ इतनी तेजी से भाग रही है कि सबको सिर्फ अपने ड्रीम्स याद है, लेकिन वो ड्रीम्स कैसे पूरे करने हैं, जो स्वास्थ्य है हमारा उसको कैसे ठीक रखना है जिसकी वजह से हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, वो लोग पीछे भूलते जा रहे हैं कि एग्जैक्टली उन्हें किस समय सोना है, किस समय उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी

0: मात्रा में खाना है और उसका जो पोर्शन है वो साइज क्या रखनी है वो किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बस मन किया तो खा लिया। मोस्टली लोगों का यही आंसर होता है। जैसे मैं पूछती भी हूँ अपने पेशेंट से कि आप नाश्ता कितने बजे करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि भूख लगती ही नहीं है इस वजह से नहीं करते हैं। तो लोगों के माइंड में ये होता है कि जब लगेगा तब करेंगे, उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये आदत आपने बनाई है। उन्हें लगता है कि बॉडी डिमांड नहीं कर रही है, बॉडी कहीं ना कहीं डिमांड कर रही होती है, लेकिन हमारे टारगेट्स दूसरे होते हैं। किसी का टारगेट होता है कि ये काम खत्म करके करना है, किसी का टारगेट होता है कि ऑफिस पहुंच के करना है, किसी का टारगेट होता है सीधा लंच करेंगे, क्योंकि आजकल डाइट भी बहुत प्रकार की चल चुकी है, वन मील, कीटो डाइट एंड बहुत फैंसी डाइट्स चल चुकी है, जिसकी वजह से लोगों एक जो संतुलित आहार है उसके बारे में भूलते जा रहे हैं। उचित पोषण की हम बात करें, जो मेरे लिए उचित पोषण है वो आपके लिए नहीं, और जो आपके लिए है वो मेरे लिए नहीं, क्योंकि हमेशा पोषण का जो एक कैलकुलेशन होता है एग्जैक्टली हमें जो लेना है वो हमारे हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंगली लिया जाता है। अगर हम अंडर वेट है उसके अकॉर्डिंग हमारी कैलोरी वैल्यू अलग होगी, और अगर हम ओवर वेट है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारी कैलोरी वैल्यू अलग होती है, और अगर हम नॉर्मल वेट में है तो एग्जैक्टली सारी चीजें हमारी अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले जो भी एक उचित पोषण है उसका कैलकुलेशन शुरू होता है व्यक्ति के लंबाई और उसके वजन से। मान लीजिए जैसे कि किसी पर्सन का वजन 70 kg है, ठीक है, और वो ओवरवेट है, हमने उसकी BMI निकाली, वो ओवरवेट में आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वेट इनटू 24 आवर जो हमारे 24 घंटे हैं इनटू 1.2 एक्टिविटी लेवल, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बताया वो ओवरवेट है, तो ओवरवेट के अकॉर्डिंगली हम उसमें क्या है 500 मतलब माइनस करेंगे तो वो एक्चुअल कैलोरी आती है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सारी चीजों को उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करके चीजों को बताते हैं। बहुत सारी फैंसी डाइट चली है, बहुत सारे लोग क्या है वेट लॉस के चक्कर में वन मील के पीछे भाग रहे हैं। वन मील मतलब दिन भर में आपको सिर्फ एक मील लेनी है, बाकी कुछ भी नहीं खाना है, उससे तो वो एक टाइम की भी कैलोरी को कवर नहीं कर पा रहे हैं। अब उससे क्या होती है, हमारी बॉडी कीटोन अवस्था में चली जाती है, जिससे क्या होता है कि आपकी जान जाने की भी नौबत आ सकती है। कुछ लोग होते हैं कि जनरली क्रैश डाइट पे चले जाते हैं। क्रैश डाइट इज लाइक आपका उसमें कार्बोहाइड्रेट को वो पूरा कट डाउन कर देते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे लोग दिमाग में भ्रम है कि कार्बोहाइड्रेट गलत है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी गलत नहीं है, तब तक गलत नहीं है जब तक आप उसको एक्सेसिव अमाउंट में नहीं ले रहे हैं या बिल्कुल सिंपल फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, जस्ट लाइक शुगर। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है, जो एक्चुअल में गलत है हम उन्हें कट डाउन करें, न कि पूरे कार्बोहाइड्रेट को ही कट डाउन कर दें। मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा कार्बोहाइड्रेट ही कट डाउन करके प्रोटीन को बढ़ा दे रहे हैं, फैट को बढ़ा दे रहे हैं, जस्ट लाइक कीटो डाइट जो आजकल चली हुई है। उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगती हैं, आपके रिएक्शन होने लगते हैं, जिससे कि हमारी जान भी जाने की नौबत आ जाती है, और फिर तब जाकर के हमें समझ में आता है, या तो जब हम मौत के मुंह से निकल के आते हैं, और कुछ लोग तो उस मौत के मुंह से भी निकल के नहीं आ पाते हैं, तब समझ में आता है कि हमने कितना गलत किया। तो हमें हमेशा एक संतुलित आहार के लिए सही प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट, सही प्रोपोर्शन में प्रोटीन और सही प्रोपोर्शन में फैट को लेकर के चलना चाहिए। और वो सही प्रोपोर्शन होता है हमारा 50-60% हमें अपने डाइट का कार्बोहाइड्रेट परसेंट रखना चाहिए, 15-20% हमारा फैट होता है, और बाकी बचा हुआ हमारा प्रोटीन होता है। अगर इस पोर्शन में हम इन चीजों को लेकर के चलते हैं तो एक संतुलित आहार हम ले रहे हैं, और फिर उसके बाद हमें सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इन सारी चीजों को अलग साइड में लेकर के चलना चाहिए। पोषण कंट्रोल के साथ आपकी एक चीज और अभी चली हुई है, मोटा अनाज, मिलेट्स। उसमें क्या है ना, पोषण कंट्रोल और मोटा अनाज, ये दोनों ये बहुत ही ज्यादा इस वक्त के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। पोषण कंट्रोल हम इस तरीके से ले सकते हैं, पर्सन टू पर्सन। लाइक एक ओबीस पर्सन है और उसको 5 रोटी सुबह नाश्ते में करने की आदत है, 5 रोटी उसको दोपहर में करने की आदत है, और 5 रोटी उसको रात में करने की आदत है। तो हमें उसको यहाँ पे समझाना है कि उसको सिर्फ रोटी को नहीं फोकस करना है, पोषण कंट्रोल करना है, लेकिन हमें यहाँ पे आपके सीरियल के पोषण को कंट्रोल करना है और वेजीज के पोषण को बढ़ाना है। थैंक यू सो मच।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने उचित पोषण अच्छा स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर आंचल सिंह से ये जानकारी सुनी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रीराम चरितमानस से संगीतमय पाठ।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगल वाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।

समवेत स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए सुने आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे आज रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 बजे और सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे आशुतोष भट्टाचार्य का ध्रुपद गायन। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में दिन 12:45 पर आप सुनेंगे पंडित शिवनाथ मिश्रा का सितार वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम

बैंकिंग कार्य में सावधानी विषय पर डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से बातचीत। साथी किसान भाई सुनेंगे महेंद्र सिंह यादव और साथियों का गाय लोकगीत। इनके गाय लोकगीत आप दिन 1:45 पर और सुबह 9:50 पर भी सुन सकते हैं। युवावाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात क्या आप जानते हैं, यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। धरती के गीत कार्यक्रम में आज शाम 5 आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी लोकगीत। अंगनिया कार्यक्रम में दिन 1:15 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी गंगा दशहरा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को सार्थक करता रेडियो और गीत संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 12:00। गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनते हैं सुबह 7:00 सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। मधुरिमा आप सुनेंगे सुबह 9:15। झंकार कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 10:00। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनिएगा दिन 11:00। दिन 2:30 आप सुनेंगे सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 6:10 पर। शाम 7:00 रसरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। रसमाधुरी आप सुनेंगे रात 8:15। और गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे आज रात 9:30। श्रोताओं हम आपको याद दिलाएं खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे आज रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 और सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे आशुतोष भट्टाचार्य का ध्रुपद गायन। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में दिन 12:45 पर आप सुनेंगे पंडित शिवनाथ मिश्रा का सितार वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:00 फनकार होंगी आबिदा परवीन। इसी कार्यक्रम में दिन 12:30 आप सुनेंगे ताहिर सईद को। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 12:00। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अंतरराष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्र अवधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनम् इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशति दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्ट चिकित्सालयेभ्यः चिकित्सा साहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्री दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज रहे हैं, सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: seven, six, five, four, three, two, are you ready?
1: हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी हाँ, लीजिए एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त, वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत।
2: हेलो, मैं पूजा, पहचाना?
3: इस नाम से उसे कोई नहीं जानता, वो बुलाने जो सब बुलाते हैं।
1: जी हाँ, पूजा और लेकर हाजिर हो गई हूँ आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी केंद्र पर। बनारस, आज का दिन बेहद खास है, बेहद पावन है, क्योंकि आज हम सबका पसंदीदा और पवित्र त्योहार गंगा दशहरा है। आज ही के दिन माँ पतित पावनी कष्ट हारिणी गंगा स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आई थी। और जब बात माँ गंगा के धरती पर आने की हो, तो भला हमारी काशी से

ज्यादा उत्सव और आनंद कहाँ देखने को मिलेगा। बनारस आज सुबह सुबह अगर आप दशाश्वमेध 80 या राजेंद्र प्रसाद घाट की तरफ निकल गए होंगे तो नजारा देखकर ही मन तृप्त हो गया होगा। भोर की पहली किरण के साथ ही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, हर हर गंगे के गूंजते जयकारे, शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चार, ऐसा लग रहा है जैसे आज पूरी दुनिया ही काशी के घाटों पर सिमट आई हो, है ना। कहते हैं कि आज के दिन माँ गंगा में एक डुबकी लगाने से इंसान के दसों तरह के पाप धुल जाते हैं, लेकिन सच बताऊं, पाप धुले न धुले पर गंगा मैया के पानी को छूते ही जो आत्मिक सुकून और मानसिक शांति मिलती है वो इस ब्रह्मांड में और कहीं नहीं मिल सकती, है ना। सोचिए राजा भागीरथ ने कितनी कठिन तपस्या की होगी माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए, और माँ गंगा जब आई तो शिव की जटाओं में समा गईं, और शिव की नगरी कौन सी, हमारी अपनी काशी। इसीलिए तो कहते हैं कि बनारस का कंकड़ कंकड़ शंकर है और यहाँ की लहर लहर गंगा मैया का आंचल है। आज शाम को तो घाटों का नजारा और भी अलौकिक होने वाला है दोस्तों। दीप दान होंगे, माँ गंगा की महाआरती होगी और हजारों दियों की रोशनी जब गंगा की लहरों पर तैरेगी तो ऐसा लगेगा जैसे आसमान के सारे सितारे माँ की आरती उतारने नीचे उतर आए हों। लेकिन बनारस उत्सव मनाने के साथ साथ एक छोटा सा संकल्प भी आज हम सबको लेना है। माँ गंगा हमें जीवन देती हैं, हमारा पेट भरती हैं और हमें मोक्ष देती हैं। तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उन्हें साफ रखें? आज गंगा दशहरा पर चलिए प्रतिज्ञा करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि घाटों पर गंदगी नहीं फैलाएंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और माँ के स्वरूप को स्वच्छ रखेंगे। आखिर माँ स्वच्छ रहेंगी तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो बनारस उठिए, माँ गंगा को नमन करिए और आज के इस पावन दिन का आनंद उठाइए। आप जुड़े रहिए मेरे यानी पूजा के साथ गुड मॉर्निंग बनारस में, क्योंकि अभी गंगा मैया की महिमा के कुछ और मजेदार किस्से, समाचार, इतिहास और हमारे काशी रत्न, ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हर हर गंगे।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस मेरे यानी पूजा के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी वाराणसी केंद्र पर। और दोस्तों, कार्यक्रम में समय हो गया है आपसे ढेर सारी बातें करने का, लेकिन उससे पहले आइए आपको बता दूं कि आज दिन है मंगलवार का और तारीख है 26 मई। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय व उससे संबद्ध महाविद्यालयों में 28 मई से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षा के लिए 370 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 35,175 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। अगली खबर यह है, बनारस की आंगनबाड़ी केंद्रों को और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के 3 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाकर खेल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। आराजी लाइन विकास खंड के कचनार काशी विद्यापीठ ब्लॉक के करौंदी और नरूअर आंगनबाड़ी केंद्र का चयन किया गया है। यह आने वाले दिनों में मॉडल केंद्र के रूप में दिखेगा। यह सेंटर मौजूदा समय में किराए के मकान में संचालित हो रहे हैं। डीएम सत्येंद्र कुमार भी आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया कि महीने के आखिरी तक नियत मानक के आधार बच्चों का असेसमेंट कर लिया जाए और जो बच्चे मानक पूर्ण कर रहे हों उनका प्राथमिक विद्यालय में दाखिला करा दिया जाए। जो बच्चे बिछड़ रहे हों उन पर विशेष रूप से ध्यान देकर 2 महीने में निपुण बनाया जाए। बच्चों को एक असेसमेंट कार्ड भी दिया जाए जिसमें अभिभावकों में अपने बच्चों की प्रगति की जानकारी हो सके और आंगनबाड़ी में दी जाने वाली स्कूल पूर्व शिक्षा के प्रति विश्वास भी विकसित हो। बनारस वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 31 मई को होने वाली उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारियों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन सक्रिय है। इसी क्रम में सोमवार को कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुलपति ने सनबीम भगवानपुर, धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज और आरएल लॉ कॉलेज सहित कई स्व वित्त पोषित कॉलेजों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने पर जोर दिया। प्रोफेसर त्यागी ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, बैठने की सुविधा, साफ सफाई और तकनीकी सुविधाओं का भी जायजा लिया। बढ़ती गर्मी को देखते हुए उन्होंने अभ्यर्थियों के लिए पेयजल, पंखे और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने सुनिश्चित करने को कहा कि परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 31 मई को आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा की तैयारियों की लगातार निगरानी कर रहा है ताकि यह पूरी पारदर्शिता और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। बनारस वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विश्वविद्यालय के सभी संकाय, विभाग, संस्थान और कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। यह नई व्यवस्था 26 मई से लागू होगी। कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी के अनुसार अब विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित किए जाएंगे। यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा। कुल सचिव ने बताया कि यह निर्णय बढ़ती गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा बजट के संबंध में दिए गए निर्देशों का भी पालन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारियों और अधिकारियों से वाहन पूलिंग का उपयोग करने की अपील की है ताकि ईंधन की बचत हो सके। इसके अतिरिक्त निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करने, वाहन खड़ा करते ही इंजन बंद करने और आवश्यकता न होने पर एसी, लाइट, पंखे तथा अन्य बिजली उपकरणों को बंद रखने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। अगली खबर यह है, बनारस की संतरे के छिलके का उपयोग करके औद्योगिक अपशिष्ट जल से अत्यंत विषैले एवं कैंसरकारी डाई मेलाकाइट ग्रीन को हटाया जा सकता है। यह तकनीक विकसित की है आईआईटी बीएचयू के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विशाल मिश्रा और उनकी टीम ने। उनके द्वारा किया गया शोध औद्योगिक जल प्रदूषण से उत्पन्न गंभीर पर्यावरणीय चुनौती के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। बनारस हिंदी भाषा और साहित्य की प्राचीनतम संस्था नागरी प्रचारिणी सभा में सोमवार की दोपहर 15 दिवसीय बहुउद्देशीय इंटर्नशिप कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इसमें शामिल होने के लिए देश भर के विश्वविद्यालयों से प्राप्त कुल 800 आवेदन आए थे, जिनमें से 75 योग्य प्रतिभागियों का चयन किया गया है। सभा के ऐतिहासिक आर्य भाषा पुस्तकालय के सभा कक्ष में प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए सभा

0: के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने कहा कि इस महान संस्था की बुनियाद में ही युवा शक्ति है। सो बनारस, ये तो बात हो गई, क्या खास हो रहा है शहर बनारस में आज और अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन के इतिहास को। आज ही के दिन 1999 में इसरो ने PSLV-C2 रॉकेट से 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रचा था। 1906 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार राम किंकर बैज का जन्म हुआ और 1946 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ अरुणा रॉय का जन्म हुआ। सो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास की और अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका रहता है आप सबको इंतजार और वो है हमारा काशी रत्न।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: दोस्तों, हमारा बनारस सिर्फ घाटों और कचौड़ियों का शहर नहीं है, ये शहर है शब्दों का, साहित्य का और उस कड़क बौद्धिक चेतना का जिसने हिंदी भाषा को उसका असली भौकाल दिया। जब हम भारतेंदु, प्रेमचंद्र या नामवर सिंह जी की बात करते हैं तो उसी फहरिस्त में एक नाम ऐसा आता है जिनके बिना हिंदी का गद्य अधूरा है। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं आधुनिक हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष और BHU के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष आचार्य रामचंद्र तिवारी जी को। कहते हैं कि बनारस की हवा में ही कविता है और यहाँ की मिट्टी में ही शोध की गहराई है। आचार्य रामचंद्र तिवारी जी ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदी भाषा की सेवा में लगा दी। उनकी लिखी किताब हिंदी का गद्य साहित्य आज भी देश की हर बड़ी यूनिवर्सिटी में साहित्य के छात्रों के लिए गीता की तरह मानी जाती है। आचार्य जी सिर्फ एक प्रोफेसर या लेखक नहीं थे, वो कबीर की उस फक्कड़ता और तुलसी की उस मर्यादा के जीते जागते उदाहरण थे जो हमारी काशी की पहचान है। उन्होंने कबीर, सूर और तुलसी के साहित्य को बहुत ही सरल और तार्किक अंदाज में दुनिया के सामने रखा। BHU के जो छात्र उनसे पढ़े हैं वो बताते हैं कि आचार्य जी जब क्लास में बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात सरस्वती माँ विराजमान हो गई हो। इतनी सादगी, इतना गहरा ज्ञान और बात करने में वही बनारसी मिठास और ठहराव। लंका की सड़कों से लेकर विश्वविद्यालय के सिंह द्वार तक उनकी गंभीर कंठकाठी और चेहरे का वो तेज आज भी पुराने बनारसियों की यादों में बसा हुआ है। आज काशी रत्न में हम काशी के इस महान साहित्यिक विभूति को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे शब्दों को पहचान दी और हमारी भाषा को समृद्ध किया। नई पीढ़ी को ऐसी महान शख्सियतों के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए ताकि वो जान सके कि हमारा साहित्यिक इतिहास कितना समृद्ध रहा है। काशी रत्न में आज के लिए बस इतना ही।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: सो बनारस, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन दोस्तों, आज के इस पावन मौके पर जब हम सब ने गंगा मैया में डुबकी लगाई है या उन्हें दूर से ही प्रणाम किया है तो सिर्फ अपने पापों को धोने की प्रार्थना मत कीजिएगा। आज गंगा मैया से ये सीख भी लीजिएगा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, पहाड़ों को चीर कर रास्ता कैसे बनाया जाता है यह हमें गंगा मैया सिखाती हैं, है ना। और हाँ दोस्तों, गंगा मैया सिर्फ हमारे पाप धोने के लिए नहीं है, वो हमारी जीवन दायिनी भी है। तो आज गंगा दशहरा पर अपनी इस माँ से एक वादा जरूर कीजिएगा कि हम अपने इन घाटों को, अपनी इस जीवन रेखा को हमेशा साफ और स्वच्छ रखेंगे क्योंकि माँ की सेवा सिर्फ आचमन से नहीं, उसकी हिफाजत से होती है। बस अब इतना ही कहूंगी कि खुद से प्यार करना और खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तभी हम औरों में खुशियां बांट पाएंगे, उन्हें खुश कर पाएंगे। तो बस अपने पास अपने जो आपके खास हैं उनका ध्यान रखिए, उनसे प्यार करिए, और इस गर्मी में खुद का ख्याल तो बहुत ज़रूरी है, खासकर छोटे बच्चों का, बुज़ुर्गों का, क्योंकि घर

बाहर निकलना और एक कहते हैं ना पानी का सेवन कम करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक हो सकती हैं। तो इस गर्मी में खूब पानी पीजिए, छोटे बच्चों को बुलाइए, अपने बुज़ुर्गों को बुलाइए, ठंडी चीज़ों का सेवन करिए, जो आपके सीजनल फ्रूट हैं उनका सेवन करिए, घर से बाहर निकलिए तो छाता, छतरी, कपड़ा, चश्मा, जिसका यूज करके आप अपने आप को संभाल सकते हैं, इस गर्मी से बच सकते हैं, ज़रूर बचिए। और बस अब दीजिए अपनी ट्विटर दोस्त पूजा को अनुमति टू वेरी वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी ट्यूसडे बनारस, गुड मॉर्निंग।

0: गुड मॉर्निंग बनारस। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में ठीक 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देश भर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं वायलिन वादक और उत्तर प्रदेश

0: से जुड़ी एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश से 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कारागार विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से कारागारों को नई पहचान दी जाए। उन्होंने ओपन जेल की परिकल्पना को उपयोगी बताते हुए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने 75 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों, असाध्य रोगों से ग्रस्त बंदियों, बच्चों के साथ जेल में रह रही महिला बंदियों तथा जमानत राशि जमा न कर पाने वाले कैदियों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कल ही कृषि विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि खरीफ 2026 की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए दलहन, तिलहन और श्री अन्न की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार कर ली जाए और आवश्यकता पड़ने पर किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएं। श्री योगी ने जून माह से सभी विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपालों के साथ किसान मेले के भी आयोजन के निर्देश दिए, ताकि किसानों को योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और प्रगतिशील खेती की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर कल चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पी एस नरसिम्हा और आलोक आराध्य की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल आगरा पहुंचकर ताजमहल देखा। उनके साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर अमेरिकी विदेश मंत्री का स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया। साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: प्रदेश सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को नई ग्राम पंचायतों के गठन तक अथवा अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार सभी जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासकों को केवल सामान्य

0: और नियमित कार्य करने की अनुमति होगी। उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी आपात स्थिति में या विशेष परिस्थितियों में कोई नीतिगत निर्णय लेना आवश्यक हो तो प्रस्ताव पर जिलाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। केंद्र सरकार ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सरकार के प्रयासों से देश में उर्वरक का भंडार भी बना हुआ है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज वहां विशेष अनुष्ठान होंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने छह मंदिरों की स्थापना हुई थी जिसकी पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: कल पूरे प्रदेश में दिनभर की तेज धूप, भीषण गर्मी और लू के बीच रात में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। प्रदेश के गोरखपुर और अयोध्या सहित कई अन्य जिलों में बीती रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत दे दी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी लू चलने की आशंका बनी हुई है। प्रचंड गर्मी और हीट स्ट्रोक के मामलों को देखते हुए अलग अलग जिलों में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देशभर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं आशुतोष भट्टाचार्य का राग

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने आशुतोष भट्टाचार्य का राग अहीर भैरव में ध्रुपद गायन सुना। आपके साथ पखावज पर संगति की थी अंकित पारीख ने। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: Akashvani at 90.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।

0: समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2023 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1

0: 896 वार्डों से 7,555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहाँ वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नाव को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी।

0: लीजिए। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्म पत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोक सत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली टुडे। President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshi Mitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. US Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged

0: Miyazaki and Malvika Bansal will be up against Chinese Taipei's Lin Xiangti. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
1: Thank you, Anuja. Hindustan Times and all the dailies have covered the Quad ministers meet in the national capital amid trade and energy concerns, aiming to keep the Indo-Pacific free, open and secure. The price rise of fuel again grabs the headlines in all the dailies today. Oil shock, petrol crosses 102 rupee is a top front page headline in the Pioneer. Defending the Prime Minister's austerity push, Finance Minister is quoted by the Statesman saying, Indian economy is resilient, but West Asia crisis exerting pressure on Forex. The Hindu writes about a two-judge bench issuing notice to the Union Ministry of Education, NTA and others on pleas to replace on or fundamentally restructure the exam body and make it answerable to Parliament. The editorial in the Tribune talks about renewable energy generation growing by leaps and bounds and accounting for about a quarter of electricity production. Under the headline, Time to Stop Slipping on Oil, the paper says how renewable energy can make India resilient to oil price shocks. The Indian Express states, live-in rules, polygamy ban as Assam introduces uniform civil code bill. With Trump administration's new policy, 7 lakh green card seekers left US in state of anxiety, writes Economic Times. City swelters, warmest May night in 14 years, says the Times of India. And finally, the Tribune cites Chhattisgarh government turns former Naxal hit areas into tourist hubs, with tribal culture helping the communities develop a sense of ownership while generating income. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg Gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कली मेहमद। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। क्वाड मुल्कों के उज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदरे जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के तीन दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सैयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के उज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी ओंग, जापान के वजीर खारजा तोशी मित्सू मोतेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। ये उज़रा मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे ले जाने पर तबादला ख्याल करेंगे, मौजूदा क्वाड इकदामात की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत बहरुलकाहिल खित्ते के हालात व वाकयात नीज बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैनुलअक्वामी उमूर पर गौर व फिक्र करेंगे। आज़ाद और खुले भारत बहरुलकाहिल खित्ते के क्वाड के नज़रिए के ऐन मुताबिक ये उज़राए खारजा पिछले साल 1 जुलाई को वाशिंगटन डीसी में मुनक़िदा बातचीत पर आगे कदम बढ़ाएंगे।

0: ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़ीरे खारजा कल नई दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि अमरीकी वज़ीरे खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर इस महीने की 23 तारीख को यहां आ गए थे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: क्वाड के वज़ीरे खारजा की ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है कि जब आलमी सतह पर गैर यकीनी के हालात हैं और मगरबी एशिया का बहरान भी जारी है। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड ग्रुप भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमनो सलामती और इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज करते हुए एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत क्वाड के मौजूदा सदरनशी होने के नाते इसकी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। क्वाड के मुल्क आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए एक ताकत के तौर पर काम करने और खुले, आजाद और जामे भारत बहरुल काहिल खित्ते की हिमायत के तई अहद के साथ यकजा हो रहे हैं। क्वाड ने एक मुसबत और अमली एजेंडा इख्तियार किया है जिसमें सेहत की यकीनी फराहमी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों, नीज बहरी निजाम को मुस्तहकम बनाने जैसे मौजूदा मामलात और चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज की गई है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी और कई मुकामात का दौरा करेंगी। सिक्किम सरकार ने उनका इस्तकबाल करने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। सदर जमहूरिया शाम को गंगटोक में तिब्बती उलूम के नामग्याल इदारे में जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू कल नाथुला पास का दौरा करेंगी, जहाँ वो तैनात सिपाहियों के साथ गुफ्तगू करेंगी। कल ही वो गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगी। इस मौके पर तकरीबन 14,000 डिग्रियां पेश की जाएंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में एक तकरीब में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुल्क के सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी से मुतालिक मीटिंगें करेंगे। जनाब अमित शाह कल राजस्थान में बीकानेर पहुंचे। वजीर दाखिला आज सुबह बीएसएफ की सांचू सरहदी चौकी पर जाएंगे, जहां वो तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकारों से गुफ्तगू करेंगे और उनके लिए बहबूद की स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। दोपहर को जनाब अमित शाह बीकानेर में सरहदी खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से गोंडोला रोपवे के रुक जाने के बाद से केबिन में फंसे हुए सभी सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। हुकाम ने बताया है कि केबल कार के 65 केबिन्स के अंदर 300 से ज्यादा सयाह फंसकर रह गए थे, जिनमें कुछ जमीन से तकरीबन 500 फीट की बुलंदी पर केबिन में मौजूद थे, जिससे खवातीन और बच्चों समेत सयाहों में बेचैनी फैल गई। फौरन ही इमरजेंसी इकदाम किए गए। SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज की चनार कोर और मुकामी इंतजामिया की टीमों ने मिलकर बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दी, जो 7 घंटे तक चली। सभी मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया और किसी को कोई चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तकनीकी खराबी की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात का ऐलान किया है और कहा है कि किसी तरह की कोताही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में डोरीमल इलाके के घने जंगलात में छुपे हुए मुश्तबह इंतहा पसंदों का पता लगाने के लिए तलाश की कार्रवाई आज 4th दिन भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तसर फायरिंग के बाद दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पता लगाया है। हफ्ते के रोज वहां दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम शुरू हुआ था। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने कांगो और युगेंडा में इबोला बीमारी फैलने को आलमी सेहत तंजीम की जानिब से बैन अल-अक़वामी तशवीश की सेहत आम्मा से मुतालिक इमरजेंसी करार दिए जाने के तनाजुर में एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। DGCA ने कहा है कि युगेंडा और कांगो के लिए परवाजें चलाने वाली फिजाई कंपनियों को मुसाफिरों के उतरने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी तौर पर दाखिल करने और उन्हें वसूल करने को यकीनी बनाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: DGCA ने फजाई कंपनियों के लिए ये लाजमी बना दिया है कि वो परवाजों के दौरान सेहत से मुतालिक मखसूस ऐलान नशर करें ताकि मुमकिन एबोला केसों की जल्द निशानदेही हो सके और इस बीमारी को

0: फैलने से रोका जा सके। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो बुखार, कमजोरी, दर्द होने, सर में दर्द, गले में खराश और कह होने या खून बहने जैसी अलामतों के बारे में हवाई जहाज के अमले के अहलकारों के साथ साथ इमिग्रेशन या तिब्बी हुक्काम को पहुंचने पर इसकी इत्तला बिला ताखीर दें। DGCA ने कहा है कि अगर भारत पहुंचने के 21 दिन के अंदर इस तरह की अलामतें जाहिर होती हैं तो मुसाफिरों को मखसूस अस्पतालों से तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए और हवाई अड्डे के सेहत हुक्काम को मुत्तला करना चाहिए। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। दिल्ली में CNG की कीमत 83 रुपये 9 पैसे फी किलोग्राम हो गई है, जिसका इतलाक आज सुबह 6 बजे से हो गया है। पंजाब में म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। रियासत में 8 म्यूनिसिपल कारपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल कौंसिलों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पंजाब के साल 2027 के असेंबली इंतखाबात से पहले इन म्यूनिसिपल इंतखाबात को एक अहम सियासी इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। रियासत में हुक्मरान आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। रियासती इंतखाबी कमीशन के मुताबिक रियासत भर के कुल 1896 वार्ड से 7555 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सख्त पुलिस इंतजाम के तहत वोट डाले जा रहे हैं। यहां 32,000 पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। वोटरों की शिरकत बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वोटों की गिनती 29 मई बरोज जुमा की जाएगी। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। बुंदेलखंड खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां करीब करीब हर जिले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। जुनूब मगरबी मानसून के आज केरलम पहुंचने का इम्कान है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरलम पहुंचता है। मौसमियात महकमे ने केरलम के 14 में से 4 जिलों में कहीं कहीं शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज हज अदा कर रहे हैं। कल मनासिक हज के आगाज के मौके पर आजमीन हज मीना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अराफात जा रहे हैं, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जाएगा। ये आजमीन वहां तौबा इस्तगफार में दिन गुजारेंगे। आजमीन हज मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा रवाना होने से पहले जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज इकराम कल सुबह मीना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। अमरीकी फौज ने ईरान के साथ जंगबंदी के तनाजुर में अबनाए हुरमुज के नज़दीक ईरान के मिसाइल लॉन्च करने के ठिकानों और कश्तियों को निशाना बनाते हुए अपने दिफा में हमले किए हैं। अमरीका की सेंट्रल कमान के तर्जुमान टिमोथी हॉकिंस ने कहा कि इन हमलों में ईरान की उन कश्तियों को निशाना बनाया गया जिनके जरिए वहां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें की जा रही थीं। उसने ये भी कहा कि अमरीकी फोर्सेज जंगबंदी के दौरान अपने फौजियों का दिफा करते हुए जब्तो तहमुल से काम लेती रही हैं। इस हमले के चंद घंटे कबल अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी मुजाकरात में पेशरफ्त होने की बात कही थी। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने मुल्क में इंटरनेट खिदमात बहाल करने का हुक्म दिया है। ईरानी हुक्काम ने 87 से ज्यादा दिन के लिए मुल्क में इंटरनेट खिदमात पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीप को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीप की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। अविका सिंह ने 4 गोल किए, जबकि प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। भारत अब इतवार को अपने अगले मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश का सामना करेगा। भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप 5 मरतबा जीत चुका है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा।

0: ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में इलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की क्यादत करेंगे। दीगर भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा तकरीब में पद्म अवार्ड अदा किए। अदाकार धर्मेंद्र को बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस खबर को कई अखबारात ने अपने पहले सफे पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मनासी के हज का बाकायदा आगाज, रुकन आजम वकूफ अरफा आज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आगरा पहुंचे और अपनी एहलिया के साथ ताजमहल का दीदार किया। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर खारजा डॉक्टर एजय शंकर ने अफ्रीका डे पर मुबारकबाद पेश की, शराकत दारी को मजबूत बनाने के अजम का इजहार किया। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन अलाक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, ईरान से मुआहदा न हुआ तो जंग दोबारा शुरू होगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, रूस का कीव पर फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, 4 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी।
0: खास खास खबरें एक बार फिर, क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।
3: अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है।
4: ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग,
5: आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से।
6: यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है।
7: आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए,
8: जानकार बनिए,
9: सतर्क रहिए।
10: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
11: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
10: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
11: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
10: बुकिंग है तो संपर्क करें
12: 0542227658,
13: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
14: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में अभी आपने फिल्म गंगा तेरा पानी अमृत से ये गीत सुना। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीत दिया था रवि ने।

0: आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। मधुरिमा कार्यक्रम के शेष गीत आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: सर 50,000 एडवांस।
2: और इतना कैश तो हम नहीं लाए।
3: और आज बैंक भी बंद है।
4: इलाज है, डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढोल।
3: लेकिन
4: अरे अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि
5: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
6: औरों को भी सिखाओ।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
8: आकाशवाणी, आकाशवाणी।

हेमंत कुमार की आवाज में अभी आपने फिल्म काबुलीवाला का एक गीत सुना। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार सलील चौधरी। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रोटी का ये गीत, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और ये है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम गाइड, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले होगा।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
3: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हाथरस और रायबरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार सिंघल का।
4: जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण कार्य की शुरुआत से हाथरस में हो गई है। इस अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी आवास से किया गया, जहां पर्यवेक्षक और प्रांगणकों ने जिलाधिकारी अतुल बस के आवास का सूचीकरण करते हुए मकान संख्या अंकित की। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में मकान सूचीकरण जनगणना कार्य के लिए 3,607 प्रांगणक और 472 पर्यवेक्षक तैनात किए गए। यह अभियान 22 मई से 20 जून तक चलाया जाएगा, जिसके तहत जिले के सभी मकानों और परिवारों का विवरण दर्ज किया जाएगा। जिले में पुलिस लाइन ऑडिटोरियल में जिले की प्रभारी मंत्री और महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित हुए। इस मौके पर BLS इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और BLS इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने नारी सशक्तिकरण पर आधारित नाटक कृष्ण लीला पर आधारित मनमोहक नृत्य व छात्र छात्राओं ने नारी शक्ति पर आधारित नुक्कड़ नाटक पर प्रस्तुति दी। प्रभारी मंत्री ने नवनियुक्त 225 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विकास भवन सभागार में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग श्याम बिहारी गुप्ता की अध्यक्षता एवं सदस्य उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग रमाकांत उपाध्याय की उपस्थिति में गौ संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि गौवंश संरक्षण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। जनपद में सिंचाई व्यवस्थाओं को सुदृढ़, सुचारू एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त खंडों के कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अतुल बस ने संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में नहरों, नालों एवं नदियों की वर्तमान स्थिति, उनकी सफाई, मरम्मत, जल प्रवाह अधिष्ठान में कार्यरत कर्मियों की स्थिति तथा नगर क्षेत्रों में नहरों, नदियों में गिरने वाली दूषित जल की समस्या पर गहनता से विचार करने के साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्त आवश्यक कार्यों व टेंडर प्रक्रियाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से समस्या का सामना न करना पड़े। जनपद में औद्योगिक विकास को गति देने एवं उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के

0: से कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक करते हुए जिलाधिकारी अतुल वसन ने उद्यमियों की समस्या का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने को कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग बंधु समिति केवल एक औपचारिक मंच नहीं बल्कि उद्यमियों और प्रशासन के बीच प्रभावी संवाद एवं समाधान का सशक्त माध्यम है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल वर्ष ने ईवीएम बीवीपैट वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ईवीएम बीवीपैट वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे सशक्त बलों की तैनाती अग्निशमन उपकरणों आदि व्यवस्थाओं को निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल निगम ग्रामीण के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति पूर्ण या अपूर्ण कार्यों को अनारंभ परियोजना की बिंदुवार समीक्षा की। विश्व हिंदू परिषद जनपद हाथरस द्वारा तालाब चौराहे स्थित कार्यक्रम स्थल पर 101 पानी की टंकियों का लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अतुल वर्ष पुलिस अधीक्षक चंद्रजीव नाथ सिन्हा मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा भीषण गर्मी के दृष्टिगत पशु पंछियों एवं गौवंशों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना एक पूर्ण एवं मानवीय कार्य है। जल संरक्षण एवं जीव जंतुओं की सेवा के उद्देश्य से स्थापित की जा रही पानी की टंकियां नान समाज में सेवा संवेदनशीलता एवं माननीय मूल्यों को का संदेश देंगी।
1: हाथरस जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
2: जिलाधिकारी सरनीत कौर बोगा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में सुचारू एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा आंधी तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों को रिस्टोर कर विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की प्रगति की तहसीलवार समीक्षा प्रस्तुत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में आंधी तूफान के कारण विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं वहां मरम्मत कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए विद्युत विभाग पूरी तरह तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील महाराजगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके क्रम में तहसील व थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की इन शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति उत्तर प्रदेश डॉ. मनोज कुमार पांडे ने बीते 24 मई को एनटीपीसी उचाहार में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री जी ने जनपद में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, राशन कार्ड सत्यापन, पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ उपलब्ध कराया जाए। मंत्री जी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा किसी भी स्तर पर अनियमितता एवं शिकायत की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। जनपद में बढ़ रहे तापमान एवं भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी सरनीत कौर बोगा द्वारा जनहित में हीट वेव लू से बचाव हेतु एडवाइजरी जारी की गई। जिलाधिकारी ने आम जन से सतर्कता बरतने तथा आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की है। जिलाधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार लगातार कई दिनों तक सामान्य से अधिक तापमान रहने पर हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होती है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गंभीर एवं खतरनाक साबित हो सकती है। विशेष रूप से वृद्धजन, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा एवं अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खुले में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं कामगारों को सिर एवं शरीर को गीले कपड़े से ढककर रखने तथा समय समय पर छायादार स्थान पर विश्राम करने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी में दोपहर 12 से 3 तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचने की विशेष अपील की गई है। जिलाधिकारी सरनीत कौर बोकर ने बताया कि भारत जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में जनपद रायबरेली में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। इस अभियान के तहत नियुक्त प्रगणक एवं सुपरवाइजर घर घर जाकर मकानों का सर्वेक्षण करते हुए सूचीकरण और गणना का कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने इस कार्य को गंभीरता एवं शत प्रतिशत सफलता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी मकान गणना से वंचित न रह जाए। जिला प्रशासन के अनुसार जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है, जिसके

0: माध्यम से जनसंख्या, आवासीय स्थिति, संसाधनों एवं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े संकलित किए जाते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग भविष्य की योजनाओं, सरकारी नीतियों तथा जनहितकारी कार्यक्रमों के निर्माण में किया जाता है। ऐसे में मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनपद में नियुक्त प्रगणक और सुपरवाइजरों ने आज से अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचकर मकानों का सत्यापन, सूचीकरण एवं गणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस दौरान टीम द्वारा प्रत्येक मकान की स्थिति, उपयोग, संरचना सहित निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवश्यक विवरण संकलित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण के दौरान कोई भी मकान छूटने न पाए, प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि
1: जनगणना 2027 है, उसका द्वितीय चरण हुआ है, जिसमें जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं वो डोर टू डोर जाकर हाउस की लिस्टिंग करेंगे। हाउस की लिस्टिंग यानी घर पर नंबर डालेंगे और उनको ब्लॉक के रूप में संगठित करेंगे, जिससे कि जब वो फिर से घर में जाएं तो वो प्रति घर जा पाएं और कोई भी घर छूटने ना पाए। सभी से अनुरोध है कि इनके साथ सहयोग करें और जो इनके द्वारा दिए गए नंबर वगैरह हैं उसको मिटाएं ना, उसको मिटाना एक अपराध भी है।
0: जिलाधिकारी सरनीत कौर रोका ने बीते 21 मई को विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लेने हेतु निर्माणाधीन मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बेला भेला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, निर्धारित मानकों एवं समयबद्ध प्रगति की जानकारी संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से प्राप्त की।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। श्री श्रीकांत सिंह ने मूसाखाड़ थाना चकिया जनपद चंदौली से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री कुमारी अर्पिता दिनांक 24 अप्रैल 2026 सुबह 8:30 से कहीं गुमशुदा है। कुमारी अर्पिता के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 21 वर्ष, कद 5 फीट, इनका चेहरा गोल है, रंग गेहुआ है और एक गहरा बदन है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला है और इनके बाल लंबे हैं। इन्होंने सफेद रंग का सलवार और ग्रे कलर का सूट पहना है। कुमारी अर्पिता के बारे में यदि आपको कोई जानकारी मिले तो कृपया कोतवाली चकिया जनपद चंदौली से संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम कुमारी अर्पिता है। श्री सतीश सिंह ने ग्राम जोपा थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पत्नी निकिता सिंह दिनांक 19 मार्च 2026 से कहीं लापता है। निकिता सिंह के बारे में जानकारी के बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 25 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, इनका चेहरा गोल है, रंग गोरा है और डील डॉल सामान्य है। इन्होंने नीले रंग की साड़ी पहनी है। निकिता सिंह पत्नी सतीश सिंह के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति का नाम निकिता सिंह है। श्री मुन्ना चौहान ने ग्राम रामपुर डबहीर थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री रंजना दिनांक 13 मार्च 2026 दिन 10:00 से कहीं लापता है। रंजना पुत्री श्री मुन्ना चौहान के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 18 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, इनका चेहरा गोल है, रंग सांवला है और इकहरा मजबूत जिस्म है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला है। इन्होंने नीले रंग की जीन्स पैंट और सफेद रंग का हाफ टॉप पहना है। इनके पाए जाने की संभावना वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में है। अगर आपको रंजना पुत्री श्री मुन्ना चौहान के बारे में कोई सूचना मिले तो कृपया थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति का नाम रंजना है। श्री विनोद यादव ने जीवनाथपुर थाना अली नगर जनपद चंदौली से हमें सूचना दी है कि उनकी पत्नी श्रीमती काजल दिनांक 1 अप्रैल 2026 को सुबह 9 बजे से कहीं लापता हैं। श्रीमती काजल के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 26 वर्ष, कद 5 फीट, इनका चेहरा गोल है, रंग सांवला है और एक गहरा बदन है। इन्होंने हरे रंग की

साड़ी और ब्लाउज पहना है और पैरों में हवाई चप्पल पहनी है। श्रीमती काजल पत्नी श्री विनोद यादव के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया प्रभारी डीसीआरबी जनपद चंदौली से संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम श्रीमती काजल है। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं और दो प्रोग्राम थोड़ी देर में हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: साथ आपका मेजबान फरीदुल्ला खान आकाशवाणी रामपुर के मरकज से हाजिर है। सलाम मोहब्बत कबूल कीजिए, आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। सामिन बज्म, ये हमारे लिए खुश नसीबी है, आज हम बात कर रहे हैं रेडियो की बेमिसाल 90 साल। आज हमारे लिए एक और खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे स्टूडियो में रामपुर की मौजिज शख्सियत और रामपुर के पूरे रोहिलखंड और पूरा उत्तर प्रदेश में एक जानी मानी शख्सियत के मालिक, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपको आपका तारुफ कराना चाहेंगे। आज हमारे साथ आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज़हीर अली सिद्दीकी साहब। डॉक्टर ज़हीर अली सिद्दीकी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में समीमे कल्ब से खैर मकदम है।
1: शुक्रिया। मैं ये अर्ज़ करूं अपनी बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए
0: जी,
1: कि हमारे वहां रियासत में जो नवाबीन रहे हैं
0: जी,
1: उन नवाबीन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जब कभी भी कोई प्रोग्राम किया या कोई नई ईजाद उन्होंने की या कोई चीज़ यहाँ कायम की
0: जी,
1: तो उन्होंने अपनी उस डिग्निटी और उस नवाबी शान को भी कायम रखा और उसमें असर उनका और पैसा और वक्त जो कुछ भी सर्फ हुआ उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और बहुत बेदरेक काम किया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरी यह खुशकिस्मती है कि मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर के खानवादे से हूँ
0: जी, बिल्कुल
1: मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नवासों में हूँ। ये दूसरी मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे डॉक्टर मलिकज़ादा मंसूर अहमद, जो बेताज बादशाह थे मुशायरों के,
0: जी बिल्कुल,
1: ये बहुत बड़ी बात है कि मैं उनके शागिर्दों में, और ये खुशकिस्मती है कि ऐसे शागिर्दों में कि मैं उनके फैमिली मेंबर की हैसियत से उन्हीं के घर रहता था।
0: क्या बात है, बहुत
1: ये
0: अच्छी बात।
1: तो नतीजा ये है, बल्कि मैं ज़िम्नी तौर पर यह भी जिक्र करूं उनके खानवादे का कि उनकी वाइफ को हम सब बाजी कहते थे
0: जी,
1: चुनाचे मैंने भी बाजी कहना शुरू किया। तो बाजी जो थी वो ख़ुद बहुत पढ़ी लिखी खातून थी। दूसरी

0: बात यह है, मोहम्मद अली ने जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया वो ये अंजाम दिया कि उन्होंने ये दावा किया अंग्रेज़ों से, ये कहा कि जब आप इस मुल्क को छोड़ कर जाएंगे तो आपने चूंकि ये मुल्क हमसे लिया था,
1: जी
0: इसलिए जब जाएंगे आप ये छोड़कर तो ये हमें सौंप कर जाएंगे।
1: बेशक, बहुत अच्छी
0: हाँ,
1: बात।
0: ये आप हमें सौंप कर जाएंगे। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया, और उन्होंने जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
1: जी
0: में मोहम्मद अली गए तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर भीख मांगने नहीं आया हूँ,
1: क्या बात है।
0: मेरे सामने दो चीज़ें हैं, या तो मौत और या आज़ादी का परवाना।
1: आज़ादी का परवाना,
0: मैं उसी वक्त अपने मुल्क को वापस जाऊँगा जब मेरे हाथ में आज़ादी का परवाना होगा।
1: क्या जज्बा था।
0: ये यही हुआ कि मौलाना मोहम्मद अली जब वहाँ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उन्हें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आज़ादी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मौत को सीने से लगा लिया।
1: क्या
0: ये
1: बात
0: बहुत बड़ी शान की बात है।
1: जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि ऐसे मुजाहिद आज़ादी यहाँ पर पैदा हुए और उनकी परवरिश हुई बी अम्मा जो थीं, उनकी वालदा मोहतरमा, उनके हाथों से और उनके ही तेरे सरपरस्ती उन्होंने परवरिश पाई और ऐसा जज्बा पाया कि वो देखें आपके, वो आज़ादी का परवाना मांगते थे या फिर मौत को गले लगाना,
0: हाँ,
1: लेकिन मौत को ही गले लगाया और शहीद हुए वहां पर। आपकी परवरिश रामपुर में हुई और रामपुर में आपने बहुत अच्छा दौर, बहुत अच्छा वक्त देखा है।
0: नवाबीन के
1: अच्छा, निकल
0: मैंने
1: चुका।
0: खास बाग में मुझे जाने का शर्फ मिला,
1: अच्छा
0: और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बेगम साहब, नवाब रज़ा अली खान साहब की जो बेगम साहिबा थी,
1: जी जी जी
0: उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला।
1: जी जी
0: ये बहुत बड़ी बात
1: बड़ी
0: है
1: बात है
0: कि नजियाबाद ख़त्म हो चुका था,
1: जी।
0: लखनऊ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था,
1: जी
0: और रियासतें भी मर्ज हो रही थी,
1: जी बिल्कुल
0: तो अब रामपुर में सिर्फ राजमाता ही हमारी गोया
1: नवाबों
0: नवाब
1: में बची
0: जहाँ
1: थी
0: जहाँ
1: जो
0: वो
1: संभाले हुए थी रामपुर
0: जहाँ
1: को।
0: जहाँ
1: जी,
0: उनसे
1: उनसे गुफ्तगू
0: रौनक
1: आपकी रहती थी या?
0: रौनक थी, और
1: जी,
0: उनके पास बैठकर मैंने उनसे गुफ्तगू की है।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ,
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो रही बात आपकी और आपके जो सिलसिला चल रहा है खानवादे का। आपने जिक्र किया मोहम्मद अली जौहर का, मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली का, बी अम्मा का, और इसी तरह से आपने जिक्र किया नवाबों में मोहतरमा राजमाता साहिबा का। अब बात चलती है रामपुर की, और देखें डॉक्टर साहब के एक जो हम बात कर रहे हैं, बेमिसाल 90 साल, यानी रेडियो के 90 साल, तो वो होने जा रहे हैं हमारे। हमारे लिए बहुत खुशनसीबी कि हम, मतलब जो जनरेशन, हमारी वाली जनरेशन है, उसने वो देखा, वो वक्त भी देखा, और हमने 80 का दौर और 90 का दौर भी देखा कि मतलब क्या रेडियो की चाहत थी और क्या रेडियो का एक क्रेज था और बहुत शौक से लोग सुना करते थे। तो डॉक्टर साहब, जब आपकी, यानी जब आप होश में होंगे उस टाइम, जब समझदार हुए होंगे आप माशाल्लाह बचपन से हटके, तो उस वक्त का दौर आप थोड़ा सा रेडियो के बारे में बताइए हमारे सामीन को कि रेडियो का क्या क्रेज था, क्या शौक से सुना करते थे लोग।
0: रेडियो का यह था क्रेज़ कि सुबह को उठने के बाद
1: जी
0: माफ़ फरमाना, नमाज के बाद तिलावत तो याद रहे या नहीं रहे, लेकिन रेडियो को लगा दिया करते थे लोग।
1: जी
0: मुझे कहना नहीं
1: जी
0: चाहिए
1: जी जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: लफ्ज़,
1: जी जी जी बिल्कुल
0: मैं माजरा
1: जी
0: चाहूँगा,
1: जी कोई बात
0: लेकिन
1: नहीं,
0: असल मसला यही है
1: यही है
0: कि रेडियो लगा दिया करते थे और रेडियो को सुनते रहते थे। लोग अपना अपना काम भी करते थे, ख्वातीन घर में काम भी कर रही हैं,
1: जी जी
0: और पूरी आवाज़ से रेडियो था जो था वो बजता रहता था,
1: जी
0: और रेडियो को सुनाया जाया करता था, लोग काम भी करते रहते थे।
1: जी
0: दूसरी बात ये मैं अर्ज़ करूं कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मेरी मुख्तलिफ किताबों पर
1: जी
0: लोग, मैं माफ़ फरमाना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ
1: जी
0: किसी
1: जी
0: को,
1: बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, वो
0: मैं
1: एडवर्टाइजमेंट की
0: असल
1: बात नहीं, ये आप
0: असल
1: अपनी शौक की
0: असल
1: चीजें बता रहे हैं।
0: असल बात बता रहा हूँ,
1: जी
0: वो ये है कि जो मौजूदा दौर है, इस मौजूदा दौर को बाज़ लोग अफवाहों पर यकीन करके मालूम नहीं किस किस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं,
1: जी जी बिल्कुल
0: लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ।

0: मुझे इस दौर में उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी से मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा एक स्कॉलरशिप मिलता है,
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात।
0: बल्कि हकी
1: ये तो
0: हक
1: खुशनसीबी की बात है।
0: हाँ जी हाँ, कि मुझे
1: ये सरकार आपको वजीफे के तौर पे,
0: वजीफे के तौर पर मुझे दे रही
1: और
0: है।
1: जो राइटर होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, उनके लिए ये चीज़ है कि उनको नवाजा जाता है, आपको
0: जी हाँ
1: एजाज से नवाजा
0: जी
1: जा
0: हाँ
1: रहा
0: जी
1: है।
0: हाँ, 15 किताबें मेरी कम से कम आ चुकी हैं
1: क्या
0: जो
1: बात है।
0: मुख्तलिफ मौजूआत पर हैं। दूसरी बात यह है कि उन किताबों में उन बातों का भी मैंने जिक्र किया है
1: जी
0: कि जो मैंने कभी रेडियो पर सुनकर अपनी गिरह में बांध ली थी।
1: क्या बात है।
0: देखिए, रेडियो पर ऐसी मालूमाती तकरीरें आती थी
1: जी
0: और तकरीरें आती हैं आज भी,
1: जी जी बिल्कुल
0: कि जिसे हम अगर सुने और अपनी गिरह में बांधे तो हमारी मालूमात कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं।
1: बिल्कुल, यही बात,
0: यह है
1: यही बात है। कुछ चीज़ें हमने आपसे सीखी हैं जब आपसे बातचीत हुआ करती थी। अब तो आप थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं, लेकिन उस दौर में जब आपके पास हम जाया करते थे और स्टूडेंट लाइफ थी, उस टाइम पे भी आपसे रूबरू होते थे और आपसे कुछ सीखते थे हम, तो हमने बहुत कुछ आपसे सीखा है। और आप जिक्र किया करते थे रेडियो, देखें आप कैसा है महकमा, है कि रेडियो में जो चीज़ होती है वो सच्ची और पक्की होती है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आंखों देखा हाल
1: जी
0: बिल्कुल बयान करते हैं रेडियो वाले,
1: जी बिल्कुल
0: और जब वो बाहर भी अगर निकलते हैं तो चारों तरफ ये देखते हुए कि कहाँ क्या हो रहा है,
1: जी
0: और बिल्कुल सही शहर की सख्त पोजीशन क्या है।
1: जी बिल्कुल
0: बाज़ हजरात ने यहाँ पर एक ज़माना ऐसा गुज़रा एक इनकलाबी का,
1: जी
0: कि तैयारी ये कर दी थी कि शायद यहाँ पर कर्फ्यू लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
1: नहीं हुआ।
0: रेडियो वालों ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया, उन्होंने जो असल बात थी वो बताई और ये बताया कि यहाँ पर क्या क्या पोजीशन है और सब
1: हाँ,
0: लोग
1: माहौल
0: सुकून
1: जो
0: से
1: है और
0: नॉर्मल
1: यहाँ
0: है,
1: नॉर्मल है और खुशगवार है, कोई
0: खुशगवार
1: ऐसी वारदात नहीं घटी है
0: नहीं है।
1: जिससे एक माहौल ख़राब हो।
0: हाँ
1: तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो कि जो चीज़ है वो क्लियर होना चाहिए, जो साफ़ सुथरी बात है वही
0: जी
1: होनी चाहिए। डॉक्टर
0: जी
1: साहब,
0: जी
1: डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे आप, जब शायद हमने भी अपने बचपन में देखा है और सुना भी है कि रेडियो पर फरमाइश आया करती थी और उसमें जैसे खत आता था, जो चिट्ठियां होती थी, पत्र होते थे, वो डाक के जरिए इसमें यहाँ पे फरमाइश भेजी जाया करती थी। यानी कि जैसे मेरा नाम आ रहा है तो हम उस नाम को सुनने के लिए, फैमिली के नाम सुनने के लिए रेडियो बीच में रखा होता था और आसपास सारे लोग घर के बैठे हुआ करते थे और वो नाम आया करता था कि ये गाना सुनना चाहते हैं। यानी कोई भी XYZ, मान लिया आपका नाम ही लिया जा रहा है, तो वो नाम मतलब खुशनसीबी की बात समझी जाती थी कि आज हमारा नाम रेडियो पर आया,
0: हमारा नाम रेडियो पर आया और हमारी फैमिली के लोगों का भी
1: फैमिली
0: नाम
1: का
0: हमारे पास
1: नाम आया।
0: नाम आया,
1: जी
0: और बाकायदा जो खतूत भेजे जाते थे उन खतूत के हिस्से पढ़कर सुनाए
1: सुनाए
0: जाते
1: जाते थे,
0: थे
1: बिल्कुल
0: रेडियो पर,
1: जी जी
0: और उन हिस्सों में वो नाम भी होते थे
1: जी
0: जो घर वालों के होते
1: जी
0: थे।
1: जी
0: तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: डॉक्टर साहब, ये 90 साल पूरे होने जा रहे हैं तो हम जिक्र करेंगे उस दौर का भी, जब जैसे किले के आसपास या बाजारों में, जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में होंगे, स्टूडेंट लाइफ आपकी पूरी हुई थी, कॉलेज में भी आए होंगे, उस दौर में भी आपने देखा होगा कि होटलों पे रेडियो रखे होते थे और आसपास लोग उसको बैठकर सुना करते थे। तो कोई किस्सा मुझे ऐसा बताइए।
0: साहब मैं एक किस्सा बताऊं जिसे अब तहसील कहा जाता है,
1: जी
0: इन्फॉर्मेशन ऑफिस वहीं पर था
1: क्या बात है,
0: उस जमाने।
1: मतलब वहां पर क्रीम बैठा करती थी।
0: जी हाँ, इन्फॉर्मेशन ऑफिस वहीं था,
1: जी
0: और इन्फॉर्मेशन ऑफिस के अलावा भी वहाँ पर एक गैलरी थी, उस गैलरी के अंदर लोग बैठा करते थे, गुफ्तगू करते थे, उस चबूतरे के ऊपर गुफ्तगू करते थे
1: जी
0: और फिर बाकायदा उसे लिखा करते थे, और लिखने के बाद फिर ख़त की शक्ल में रेडियो स्टेशन को भेजा करते थे और उसमें तफसील लिखते थे कि ये हमने फला जगह बैठकर लिखा है,
1: यानी जो शहर की मौजी शख्सियात होती थी वो वहां पर मौजूद होती थी
0: मौजूद होती थी
1: पूरे शहर रामपुर की।
0: चेहरे राम।
1: और वो दौर क्या दौर होगा, आप रामपुर का इतना डेवलपमेंट नहीं था रामपुर में उस वक्त जब आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जिक्र किया रेडियो का और रेडियो

0: का आपने जिक्र किया कि सारी चीजें जो होती थी वहां पर, जो बातचीत हो रही है, सारी मालूमाती, तो उसको खत की शक्ल में
1: खत की
0: आकाशवाणी को
1: शक्ल,
0: भेजा जाता था,
1: जा
0: रेडियो
1: जा
0: को।
1: जा खत की शक्ल में जा करते थे और नाम उसमें सुना करते थे कि
0: क्या
1: हम
0: बात।
1: लोगों के नाम आ रहे हैं और हमारी फैमिली के नाम आ रहे हैं। पिछले दिनों में यहाँ पर एक महफिल में मुराद रामपुरी साहब से
0: मुलाकात हुई आपकी?
1: मुलाकात क्या हुई, मैंने बैठ के गुफ्तगू की उनसे,
0: अच्छा,
1: तो मैंने उनसे कहा कि फिल्में हमने बहुत सारी देखी, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ कि कोई ऐसा आर्टिस्ट करीब से मैंने नहीं देखा जो बाकायदा फिल्मों में अदालत की डिग्निटी और उसके मेयार को कायम रख सके। वो
0: जी
1: आपकी ज़ात है कि आप अदालत में हमेशा बहैसियत जज
0: जी जी
1: बैठते हैं और हमेशा ये कहते हैं मुकदमे को मुकदमा नहीं कहा, आपने मुकदमा कहा।
0: क्या बात है। आपने बहुत मतलब बारीकी से उस चीज को देखा और उसको आपने जिक्र
1: जा
0: किया। रजा मुराद साहब से,
1: जा
0: उनके वालिद की
1: हाँ
0: बात कर रहे हैं हम,
1: जा रजा मुराद साहब की, रजा
0: उनके
1: मुराद साहब का,
0: रजा
1: जहाँ
0: मुराद साहब के वालिद,
1: वालिद
0: वो
1: साहब
0: जज
1: की,
0: का रोल अदा करते
1: जा
0: थे और
1: जज
0: उन पे
1: का,
0: वो जज का रोल बहुत ही खूबसूरत लगा करता था। वो जज का
1: जा
0: रोल ऐसा
1: जा
0: लगता था कि असलियत में शायद जज हैं ये।
1: वाकई ऐसा ही था।
0: जी
1: उन्होंने मुझसे खुद यह कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे कहीं कहीं तलफ़ुज़ सही कराना पड़ता है दूसरे लोगों का, इसलिए कि बेहतरीन किस्म के वो उर्दू नवाज भी थे
0: जी
1: और उर्दू जानने वाले भी थे।
0: जी बिल्कुल
1: अच्छा, जहाँ तक आपने मुराद रामपुरी का नाम लिया,
0: जी।
1: तो रज़ा साहब के सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँ कि उनकी ज़िंदगी का पहला स्टेज ड्रामा रामपुर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन घेर नज्जू खां में
0: डॉक्टर
1: हुआ।
0: साहब, ये तो रही बात, बात कर रहे हैं हम रेडियो की। डॉक्टर साहब, आपने रेडियो पर कुछ फीचर भी लिखे?
1: या
0: जी
1: ड्रामों में मैंने बाकायदा बोला भी हूँ
0: अच्छा
1: और ड्रामे लिखे भी हैं
0: अच्छा
1: और ड्रामों में आवाज़ भी आपने दी है
0: जी जी बिल्कुल।
1: कई कई किरदार के हिसाब से।
0: तो हमारे लिए डॉक्टर जहीर अली साहब, यानी कि खुशनसीबी की बात यह है कि आपने रामपुर में वो दौर देखा जब ये स्टेशन कायम हुआ।
1: जी हाँ, मैंने वो दौर देखा जब वो पनवड़िया में
0: जी
1: सबसे पहली बार जब वहाँ पर कायम हुआ, तो अशफाक आलम खां इंजीनियर,
0: अच्छा, यानी
1: उन्होंने,
0: उस दौर में जो पनवड़िया में, यहाँ रामपुर में स्टेशन जो कायम हुआ पनवड़िया, तो
1: पनवड़िया में हुआ पर
0: उसमें वहाँ पर इंजीनियर थे वो जिनका जिक्र कर रहे हैं
1: नहीं,
0: हम।
1: वो इंजीनियर की हैसियत से उन्होंने वहाँ पर कायम किया।
0: कायम किया था।
1: उन्हें वो तो शायद उस वक्त बनारस में या किसी और जगह थे, तो
0: अच्छा,
1: उन्हें बुलाया गया
0: बुलाया
1: था
0: गया था।
1: नवाब साहब ने अपने असर रसूख से
0: जी।
1: और अपने ताल्लुक से उन्हें बुलवाया था, और बुलवाने के बाद यहाँ पर यह कहा था कि भाई अब आप इसे देखें और इस पर अब काम करें।
0: वो स्टेशन कायम कराया,
1: वो स्टेशन कायम
0: यानी
1: कराया।
0: रामपुर वालों को ये खुशनसीबी हासिल थी कि वो रेडियो जो थे वो सुना करते थे और कायम हुआ। आसपास के जिले थे, यानी मुरादाबाद और बरेली भी बड़े जिले थे, लेकिन रामपुर में स्टेट था, नवाबी थी यहाँ पर, तो इसलिए नवाब साहब ने वो स्टेशन यहाँ कायम कराया और आसपास के जो जिले थे वो सब कवर किया करते थे,
1: या
0: सुनते थे लोग रेडियो।
1: मुरादाबाद के लोग तो बहुत, मैंने खुद देखा कि वहाँ एक जगह है पाटा नाला, तो
0: अच्छा
1: नाले के पास लोग खड़े होकर बाकायदा रेडियो को यहाँ के सुना करते थे, मैंने
0: जी,
1: अपनी
0: बिल्कुल।
1: आंखों से देखा।
0: डॉक्टर साहब, आपने दौर देखा और यहाँ पे जो अनाउंसर रहे, यानी पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, जो मशहूर हुआ करते थे, मोहम्मद अली मौज साहब थे,
1: आहा,
0: अंजलि वाजपेयी जी थीं, और भी बहुत सारे थे, तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपने वो दौर देखा तो सुना होगा उनको, लोग रहे हैं यहाँ पर, अनाउंसर रहे हैं, फिर उसके बाद वो अफसरान भी रहे।
1: देखिए अंजलि वाजपेयी जी तो बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करती थी,
0: जी
1: और मौज साहब जो थे वो तो खुद बतौर खुद शायर भी थे,
0: जी बिल्कुल
1: उनका एक बड़ा मशहूर शेयर

0: था
1: जी
0: जो उन्होंने किसी ड्रामे में खुद कहा था
1: जी
0: कि जिल्ले सुबहानी आज भी ताली बजा के देखते हैं,
1: जिल्ले सुबहानी, आज भी
0: आज
1: ताली
0: भी
1: बजा के
0: ताली बजा
1: देखते
0: के
1: हैं
0: देखते
1: जी।
0: हैं, कि वो ये समझते हैं कि मैं आज भी बादशाह हूँ। ये उनका शेर जो है ये ज़रबुल मिसाल है
1: जी
0: जो मुझे आज तक याद है।
1: मैंने सुनी है बचपन में कि उनकी आवाज में ऐसा था कि लोग खींचे चले आते थे, जैसे
0: बिल्कुल खींचे चले आते।
1: अगर वो कहीं महफिल में हैं तो भीड़ लग जाया करती थी। मैंने देखा है कि रेडियो का कोई भी बंदा XYZ कोई भी हो, मैंने बचपन में, मुझे याद है कि किसी जगह अगर महफिल में कोई आ गया है, रेडियो स्टेशन पे है भाई, रेडियो पे है, तो उनके आसपास भीड़ लग जाया करती थी, जैसे कोई बहुत बड़ी हस्ती आ गई।
0: ऐसा ही था कि उनकी आवाज़ को सुनकर लोग खींचे चले आते थे।
1: जी बहुत अच्छा रहा हमारे साथ में, अच्छी गुफ्तगू रही आपकी। आप यूं ही हमारे सामने को अपनी दुआओं में याद रखें, और कुछ पैगाम देना चाहेंगे कि 90 साल हुए हैं, बेमिसाल 90 साल, उसके बारे में हमारे सामीन को कोई पैगाम दीजिए।
0: पैगाम यह है कि रेडियो को लाजमी सुना करें, इसमें तरह तरह के प्रोग्राम आते हैं, उससे मालूमात में इजाफा होता है और बोलने का तरीका भी आता है कि किस बात को अदा हम किस अंदाज से करें। बहुत बड़ी बात है।
1: शुक्रिया। बेमिसाल 90 साल, इस उनवान के तहत आज हमने मुलाकात की डॉक्टर ज़हीर अली सिद्दीकी साहब से। अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से दीजिए इजाज़त।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं महेंद्र सिंह यादव और साथी। आइए इनसे पहले सुने ये देवी गीत

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे महेंद्र सिंह यादव और साथी। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाएं, इनके गाए लोकगीत आप दिन 1:45 पर और कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार।

कार्यक्रम का पहला गीत लिया है हमने फिल्म चंदन का पालना से। आवाज लता मंगेशकर की है, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

यह आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम अनपढ़। गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खां और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हिमालय की गोद से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज है, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: से न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आइए अब सुनते हैं फिल्म बड़े दिल वाला का गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

ये गीत हमने लिया है फिल्म गंगा जमुना से। आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं शकील बतायुनी और संगीतकार नौशाद।

ये आवाज़ है उदित नारायण और अलका याज्ञिक की। फिल्म का नाम यस बॉस, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत दिया है जतिन दलित ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़

ये आवाज है मीका सिंह की। फिल्म का नाम हम है राही कार के। गीतकार हैं श्रीकंठ अग्निस्वरन और संगीत दिया है सिद्धार्थ हल्दीपुर ने।

0: हिना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। इसके साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त तो होता है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब्स OTT पर एक साथ उपलब्ध हैं। दिन के 11:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज गंगा दशहरा है और माँ गंगा, जिनके बारे में कहा गया है कि गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, यानी जिस भागीरथी के दर्शन मात्र से मुक्ति होती है, आज का ये दिन हमें नदियों, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति विशेष जागरूकता और सम्मान की भावना जागृत करने को प्रेरित करता है। तो प्रकृति और पारिस्थितिकी के प्रति सतर्क रहें और प्रयास करें कि हरियाली में, मौसम के संतुलन में हम आप जो भी योगदान कर सकें जरूर करें। आज का ये प्रोग्राम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। 7905519981 ये कार्यक्रम का व्हाट्सएप नंबर है, यानी 7905519981। फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं और उन्हीं फिल्मों से अपनी फरमाइशें आपको भेजनी है। शुरुआत में ही आपको बता दें कि क्योंकि बहुत सारे संदेश आते हैं और कई एक श्रोता बार बार कहने के बावजूद एक ही संदेश में कई जगह के श्रोताओं के नाम लिखते हैं और बार बार संदेश भेजते हैं, और कुछ हमारे साथी हैं जो नाम शामिल होने के बाद भी कहते हैं कि नाम शामिल नहीं हुआ, तो इन बातों का ख्याल रखें। एक संदेश में एक ही स्थान के 3-4 श्रोताओं के नाम लिखें, दुकान, प्रतिष्ठान, संगठन या फिर श्रोता क्लब के नाम न लिखें। आज की फिल्में हैं अब बस, जमाना दीवाना, सनम, याद रखेगी दुनिया, साजन की बाहों में और कदर 2। अब बस, जमाना दीवाना, सनम, याद रखेगी दुनिया, साजन की बाहों में और कदर 2। सबसे पहले फिल्म का नाम लिखें और उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम, और बिल्कुल एक बार संदेश भेजने के बाद कुछ और न लिखें क्योंकि वो संदेश फिर बहुत पीछे हो जाता है। अब बस, जमाना दीवाना, सनम, याद रखेगी दुनिया, साजन की बाहों में और गदर 2। शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम का इंतजार करते हैं और अपने नाम बिल्कुल शुरुआत में ही हमें भेज देते हैं। आइए कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है अब बस। फरमाइशें तो तमाम फिल्मों के लिए बहुत सारी हमारे पास हैं, पहले गीत सुनते हैं।

जी हाँ, आज की पहली फिल्म थी अब बस, और शुरुआत में ये इशारा कि आप हमें एक बार संदेश अगर आपने भेजा हुआ है तो इंतजार करें, आपका नाम जरूर शामिल होगा। संदेश के बाद कोई भी और बात मैं लिखें ताकि आपका संदेश वक्त रहते शामिल हो सके। एक स्थान से ही श्रोताओं के नाम एक संदेश में लिखें और 4-5 नाम ही अधिकतम लिखें। बक्सर बिहार से हैं, इस गीत को सुनना चाहा आपने, शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी और अकरम अंसारी।

आर्यनगर कोका भिलाई से संदेश आया है उत्तम सिंह जंघेल, बोरस जंघेल, अनिल कुमार और अजीत कुमार का। जमानिया रेलवे स्टेशन से हैं एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, चंडीगढ़ से इसी में नाम आपने लिखा है और इसे दूसरे बार किसी और गाने के लिए भेजते हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा। मोहसिन अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी और मुश्ताक अंसारी हैं कोटवा बनारस के हमारे श्रोता। इसी गीत को सुनना चाहा गमरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल ने। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से हैं शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय कोलाम और संध्या कोलाम। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। गाजीपुर गांव नारी पचदेवरा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा। संबलपुर कांकेर के श्रोता हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन और हर्ष कुमार सेन। जलालाबाद वेस्ट से ये फरमाइश आई सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा की। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और ईशान छिपा। जवाहरनगर दुर्ग से ये फरमाइश आरसी कांबड़े, करुणा मीना और अश्विनी की। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और बेबी गर्भी। बजरडीहा वाराणसी से अनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी और सलीम आजाद अंसारी। आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी और सरफराज अब्बासी, ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल साहनी चौहलदा बागपत के श्रोता हैं। मोहम्मद यासीन अंजान, साइबा नवाज, हसन नवाज और बाबू अहद गिरिडीह झारखंड से। राम सकल चौधरी चोचकपुर बाजार गाजीपुर से इसी गीत को सुनना चाहा। सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल और प्रथमेश देशमुख हैं कालेगांव जाफराबाद से। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पूनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन की फरमाइश पलारी छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी पूजा तामूरिया की फरमाइश डोंडी लोहारा बालोद से। आशीष कुमार महरेव जौनपुर के हमारे श्रोता हैं। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल और डिंपल नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। ऋषु मौर्या हमें सुन रहे हैं जौनपुर से। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु और अर्णव आनंद हैं पाकुड़ झारखंड से। शम्स तबरेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद, हबीब अंसारी, मखदूम नगर बजरडीहा वाराणसी के हमारे श्रोता हैं। ये फरमाइश है सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और सद्दाम की कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म का नाम है जमाना दीवाना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, समीर के बोल, नवीन शवन का संगीत। बाकी फिल्में हैं सनम, याद रखेगी दुनिया, साजन की बाहों में और गदर 2। अगर आपने अभी तक संदेश नहीं भेजा है तो 11:30 बजे तक भेज दें। एक बार ही भेजें और एक संदेश में 3-4 नाम ही लिखें कि स्थान के, और फिर हमारे साथ बने रहें।

जमाना दीवाना फिल्म का युगल गीत आप सुन रहे थे, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। फरमाइशें यानी व्हाट्सएप संदेश आप सबके हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक और अनिल शर्मा। सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू और बब्बू की फरमाइश कृष्णा कॉलोनी हासी से आई है। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ के श्रोता हैं दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना और हसीना दिलशाद। मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तूबा आफरीन। रोहिदास चौक पंडरपुर से हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज और ऋषि शिंदे। अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ के श्रोता है माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश। ये फरमाइश है मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज और रिफत जहानाज की। नूर महल महसौल सीतामढ़ी से। संदीप मक्कड़, जोगिंदर पाल मक्कड़, किरण मक्कड़, अनु मक्कड़ हैं पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। शादुल शहर राजस्थान से हमें सुन रहे हैं रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी और पुष्पराज मरावी। ये व्हाट्सएप संदेश है रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का, नई दिल्ली टैगोर गार्डन से आया हुआ। ग्राम चरोदा बार नवापारा से हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका और ज्योति ठाकुर। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना हमें सुन रहे हैं लदावली मुरादाबाद से। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान के श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह की फरमाइश पद्मा टॉकीज ने पानगर से इसी गीत के लिए। चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा और विनीत कुमार पटवा धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग और टोनी दीवान। मलेर कोटला पंजाब में ये जगह है, वहां से हैं एमडी इरफान खान, मुस्कान खातून, रौनक खातून और बेबी आलिया। बुल्ढाना वर्डसिंगी महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर के श्रोता। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी और सुहेल यशफ अब्बासी। कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, निखत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद और शाहिद हसन आजमी की फरमाइश। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओंकार गायकवाड़। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा के श्रोता हैं राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन और अक्षय सेन। नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा। ग्राम पजोनिया जालौन से हमें सुन रहे हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक और अनिल शर्मा की फरमाइश एक बार शामिल हो चुकी है मोहाली चंडीगढ़ से। जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम कुमार सुरलकर हैं मोटाला महाराष्ट्र से। सतीश शर्मा चंडीगढ़ से। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर के श्रोता हैं अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर। कार्यक्रम का अगला गीत बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश पर, फिल्म का नाम है सनम, पंकज उधास की आवाज़।

जी हाँ, और हमारे पास आए हैं आपके बहुत सारे नाम इस गीत के लिए। सनम थी फिल्म, पंकज उधास की आवाज, समीर के बोल, आनंद मिलिंद का था संगीत। लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़ से ये फरमाइश। गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी और कृतिका की इस गीत के लिए। लाल माता सुदामा नगर एलटाई झालावाड़ राजस्थान से। हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा, मनोहर भाई बाग।

और प्रभुलाल बागती। सुशीला देवी मंदूरकर, सतानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर की फरमाइश डाबकी रोड अकोला से। गुजरात गांधी ग्राम के श्रोता हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश चौहरी, मेहताब आलम, सरफराज आलम, मोबिन अंसारी, जाकिर हुसैन अंसारी, मतीन अंसारी कोटवा वाराणसी से। रामगढ़ कैंट से हमें सुन रहे हैं महेंद्र मोदी, ठाकुर साहब और महेंद्र चौरसिया। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। बैंजो मास्टर हैं सुनील यादव, शिव कुमार यादव, तनिष्का यादव, नौबत यादव, आप सभी अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं। गोविंदपुर सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और उनके परिवार के सदस्य एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। ग्राम भीलखेड़ी सारंगपुर राजगढ़ मध्य प्रदेश से ये फरमाइश आई है धनराज बैरागी, सीमा, किट्टू और वैष्णव की। गांगीवाड़ा छिंदवाड़ा से हैं रमनदीप, राजदीप, परिहार, अपर्णा परिहार और सुधा परिहार। ये संदेश है बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने और वैष्णवी ढोमने का। झारखंड बड़ा बाम्बो सुपाई गांव से हैं देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा, रेशमा और दीपाली। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और रयान बाबू ने इसी गीत को सुनना चाहा। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर और चेतन मनवर हैं शाहूनगर यवतमाल से। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शविश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक और लुबना बाजार रोड मुंगीसापुर से। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले और डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर। बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल।

ये जो एक संदेश है इसमें हाय गुड आफ्टरनून सर लिखा है, एनी सॉन्ग ऑफ योर चॉइस लिखा है, लेकिन लिखने वाले कौन हैं इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो नाम जरूर भेजें अपना ताकि आपका नाम शामिल हो सके। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर और जियाउल हक डाबर की फरमाइश नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आई है। मोहम्मद ख्वाजा रिजवानुद्दीन, मोहम्मद ख्वाजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया की फरमाइश वारंगल से आई हुई है। मुकेश शर्मा और गौरव शर्मा की फरमाइश भिलाई छत्तीसगढ़ से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषि वर्मा और रमेश चंद्र वर्मा है खरगोन सनावत के श्रोता। ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश, हैप्पी राय जी बिल्कुल, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से। सहारनपुर से सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग, अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति और आकाश प्रजापति हैं कोरोता वाराणसी से। शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और साईराज सपकाल, ये फरमाइश हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक और प्राची की आई हुई है बेरडी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, आज अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। 7905519981 कार्यक्रम का नंबर है। आपके बहुत सारे संदेश जो बाकी फिल्में हैं उनके लिए भी आए हुए हैं। ये जरूर कहें कि मौसम बहुत तेज धूप और गर्मी यानी तपन का है, तो अपना भी ख्याल रखें और स्वस्थ सुरक्षित रहें, और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है, तो उसकी भी रक्षा करें ताकि आने वाली पीढ़ियां और हम सब अच्छे मौसम का लुत्फ ले सकें। तभी याद रखेगी दुनिया, और ये फिल्म का नाम भी है याद रखेगी दुनिया। मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में कार्यक्रम का अगला गीत है, बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं।

मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी याद रखेगी दुनिया, और इस गीत को सुनना चाहा उदिता और सुचिता विश्वकर्मा ने देवरिया उत्तर प्रदेश से। और ये संदेश सहसपुर लोहारा खुर्द कबीरधाम से गुणीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा और पुष्पराज का। आप हैं बोरखेड़ा पित्रमल उज्जैन के श्रोता। मध्य प्रदेश से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक और मयंक मूडत। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और उमंग मलिक। उत्तम नगर दिल्ली के श्रोता हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। धमदा ग्राम सुखरी कला के श्रोता अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि और ओशिका ने इसी गीत को सुनना चाहा। पंचकुला चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रजता खुराना, रिधान खुराना और तुलसीदास चुक। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला, फरहान लल्ला और समायरा आजमीन गुड़िया। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत की फरमाइश आई है कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली के श्रोता हैं मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर और मोहम्मद अल्ताफ। नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे हैं वरवट वकाल बुल्ढाना से। नाहिद अंसारी, राशिद अंसारी, साजिद अंसारी की फरमाइश नेवादा मुबारकपुर आजमगढ़ से आई हुई है, शुक्रिया आपका। धनोरा विटाली तहसील नांदूरा बुल्ढाना के श्रोता हैं भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता और शशांक। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा के श्रोता हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ और मास्टर अनवर। बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेश वर्मा और उमेश मिथिलेश वर्मा। समर्थ दादा देठे पाटिल, भागवत देठे पाटिल और लक्ष्मी देठे पाटिल धामड़गांव बुल्ढाना से। आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान, कछुआ कला शाहजहांपुर के श्रोता है। विनय प्रजापति, गोविंद प्रजापति, वंदना प्रजापति और राहुल प्रजापति हैं जलालीपुरा वाराणसी से। इसरोल बाड़मेर राजस्थान से शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, मांगे खान, आतिफ खान और रियाज खान। इमृति यादव की फरमाइश ग्राम बर्ठी सकलडीहा चंदौली से। सानू आर अश्विन, शोभनाथ अवस्थी और उनके मित्र हैं शिवराजपुर चुनार से। पोफाली यवतमाल से जयराम सिंह गढ़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता। रईस खान, साबिया खान, अनस खान, शकील खान, दानियाल खान हैं फूले नगर अम्बिवली मुंबई महाराष्ट्र से। ये फरमाइश है शिवाजी कॉलोनी रोहतक से आई हुई पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू की। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और मैंडी शर्मा। विनय कुमार राजा, आप हैं महरेव जलालपुर जौनपुर से। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती और आप सभी हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण और कपिल मेहरा। नारवा इंद्रो का जोधपुर राजस्थान से नरपत सोनी, वैशाली सोनी। हार्डी खेड़ा सिरसा हरियाणा से हैं राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। सत्तर साल पुराने रेडियो सेट का चित्र भेजा है। आप हैं रमंता यादव, राजेंद्र तिवारी, अनु गुप्ता और रमा शंकर गुप्ता और यश गुप्ता ग्राम बगही बेलहारी से, शुक्रिया आपका। बजडिया वाराणसी से अजीजुर रहमान अंसारी, सिराजुद्दीन अंसारी, मोहम्मद जुबैर अंसारी और बद्रुद्दीन अंसारी।

विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े और अदिति बंसोड़े की फरमाइश मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से। और अब ये गीत फिल्म है साजन की बाहों में, साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ें। इस गाने के लिए शुरुआत में संदेश भेजा हमारे श्रोता पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह ने। तमाम श्रोताओं से एक है कि कार्यक्रमों से जुड़ी अपनी प्रतिक्रियाएं पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में नियमित रूप से भेजते रहें और आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल होंगी pkldairvaranasi@gmail.com पर।

साजन की बाहों में फिल्म का युगल गीत था। और भी फरमाइशें हमारे पास हैं। आप हैं अनिल, मानसी, गौरव, कविता, मदान, हनुमान मंदिर रोड, करमपुरा, नई दिल्ली।

आप हैं हदगांव महाराष्ट्र से शंकर गिरबिड़े, दिलीप गिरबिड़े और उनके परिवार के सदस्य। मालियान सरदारा मेरठ से अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान जैन और जीवीएम जैन। सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या और आरो खुराना है एमएलबी रोड ग्वालियर के श्रोता। संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे, कृष्णा तिवारी, प्रगति तिवारी, स्वाति मिश्रा, शुभम मिश्रा, मान्यता मिश्रा, हॉटसिल मिश्रा आपने लिखा है, चौखंडी हाथी बाजार वाराणसी से आप सब हैं, शुक्रिया आपको। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद और मल्लू अंसारी हैं अहमदनगर बजडी वाराणसी से। परवेज अहमद हमें सुन रहे हैं शुकुलपुरा वाराणसी से। संतोष नामदेव, अभय, अनिल और अजीत सोरई ललितपुर के श्रोता है। ग्राम बगही बेलारी केराकत जौनपुर से हैं रमा शंकर गुप्ता, राजेंद्र तिवारी, रमता यादव, यश गुप्ता और अनु गुप्ता। बागरी मोहल्ला रटलाई झालावाड़ राजस्थान से नैना सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदीबाई बागरी। जमानिया गाजीपुर से हमें सुन रहे हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। ग्राम चकपुटही असनाव बाजार भदोई से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव। नेहरू चौक पैठण के श्रोता हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती, पूजा और प्रसाद जाधव। रश्मि झरना, भरत कुमार, राजकोट, गुजरात के श्रोता हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता। बहुअरा दिलदार नगर से हैं अकलू राम, केदार राम और दीनानाथ सिंह। जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनानाथ यादव और कयूम शाह। सरफुद्दीन अंसारी,

रहे हैं रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एंद्री, ओमना सारंग, शिवांग, रोली अदिति और उनकी माताजी निर्मला त्रिपाठी। रघुनाथ पीरा गंगानगर से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और हिना। और अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम है गदर 2, मिथुन और नितिन मोहन की आवाजों में गीत।

और इस गीत के लिए भी पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज दो से वाराणसी से हमारे श्रोता अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता, पूजा गुप्ता गौंड और अग्रिम गौंड ने फरमाइश भेजी और इंतजार किया। अब तक बहुत शुक्रिया आपका।

इस गीत को सुनना चाहा सलोनी कुमारी ने, नौपुरवा चोचकपुर से और नंदगंज गाजीपुर से हैं अच्छे लाल बिंद। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। गणेश शौक रातानाड़ा जोधपुर से नरेश भाटी और वीणा भाटी। गाजीपुर का गांव नारी पच देवराडी चौराहा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता। शाहिद परवेज, अकील अहमद, शम्स तबरेज, मखदूम नगर बजटिया से। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। मुबारकपुर पुरानी बस्ती से शाहिद जमाल, राशिद जमाल और दानिश जमाल। रिजवान खान, आयशा सभी, अनस और रेहान हैं अंबागढ़ चौकी से। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने और हीरामन शेंडे राहुल नगर अमरावती से। फरमाइश आपकी। भवानी माता वार्ड खंडवा से हैं मनोज सेन, दीपक सेन और भव्या सेन। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू और सुरेश मुरादाबाद के श्रोता। दिलमाज आलम, मोहम्मद कलीम, जीनत महल, नवापुरा।

बीडशायर महाराष्ट्र से ये फरमाइश नंदकिशोर घटे और संगीता घटे की। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देवकुमार और आर्य कुमार जायसवाल, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा की फरमाइश मऊनाथ भंजन से आई हुई है। सोनू बिंद हैं जौनपुर से, सोनवर्षा खानपुर चुनार से, अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर। मुजफ्फरपुर बिहार के श्रोता हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी और चांदनी कुमारी। रमेश नचानी, भारत नचानी उदयपुर के श्रोता हैं। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से संदेश भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव और दिव्येंदु का। जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव दीदारनगर से हैं और सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा, पूनम, विनोद और पिंकी जायसवाल।

हरियाणा से बिट्टू भाटिया, निम्नाबाद जिंद से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा और जतिंदर कौर, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोद पुरी, वीपी रंजू और अशोक पुरी, शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल और मंजू जायसवाल की फरमाइश। तो श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आप सुन रहे थे अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
2: जी,
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और

0: अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी,
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी,
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी,
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी,
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: जय जोरापुर, जय भारत।
7: जय जोरापुर, जय भारत।
4: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जोरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
8: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक

0: खतरनाक चाल थी डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
1: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज, महाराज हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
2: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
2: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
2: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
2: जी महाराज।
0: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
0: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
0: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
0: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
0: जी।
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
0: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
3: जी।
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
6: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
0: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
1: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
6: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
6: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
6: लेकिन जरा होशियारी से।
7: जो हुकुम सरकार।

0: John Armour! What how? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो.
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ. आओ सामने.
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी. फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से.
2: जी.
3: छोड़ो मुझे. हाथ मत लगाओ मुझे. मुझसे हाथ हटाओ. मैंने कहा छोड़ो मुझे. हटो यहाँ से.
0: शाबाश, शाबाश, सारल जंग. मैं खुश हुआ. तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा.
4: हुजूर.
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है. एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है. लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है. लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था.
0: फौजियों, ले चलो इसको.
3: छोड़ो मुझे. छोड़ो मुझे.
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए. उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया. उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए. तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े.
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया. लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था. उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी. वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे.
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा.
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता.
7: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा.
1: ये नामुमकिन है.
7: व्हाई?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते. हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे. अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं. हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है.
7: तो नहीं मानोगे. देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें. ये सजा.
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा. हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए. हमने जो किया हमें उस पर गर्व है. कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है. इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा. हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं.
7: एक्चुअली यू आर अ फूल.
5: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा. बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई.
6: काला पानी की सजा?
5: हाँ, काला पानी की सजा. भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी.
6: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे.
5: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली.
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं. भारत माँ का बहादुर बेटा हूं.

0: माता को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा, फिर मैं तो राजा हूं।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए
7: 0542227658।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें
8: 0542227658।
4: कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं ताहिरा सईद की गाई पारंपरिक रचनाएं।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पारंपरिक रचनाएं, फनकार थीं ताहिरा सईद। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित शिवनाथ मिश्र का सितार वादन। राग है वृंदावनी सारंग, तबले पर संगति की है पंडित पूरन महाराज ने।

0: ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी से प्राप्त सूचना के मुताबिक धीरज साहनी, पिता का नाम राजकुमार साहनी, ये खजुआ बाजार

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित शिवनाथ मिश्र का सितार वादन राग था वृंदावनी सारंग, तबले पर संगति की पंडित पूरन महाराज ने। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, 1 बजने को है अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई।

0: सर वाराणसी के निवासी हैं और 25 जून 2025 की शाम से लापता हैं। धीरज साहनी की आयु है 27 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था सफेद रंग की शर्ट और भूरे रंग की जीन्स। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचना दें। सागर पाल, पिता का नाम रामविलास पाल, ये दीनदासपुर सिंधौरा वाराणसी के निवासी हैं और 1 जुलाई 2025 से दीनदासपुर से ही लापता हैं। सागर पाल की आयु है 25 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा, शरीर सामान्य, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था हल्के नीले रंग की शर्ट और काले रंग की लोअर। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा वाराणसी को सूचना दें। अनीता देवी, पति का नाम राजेश गुप्ता, ये जैतपुरा वाराणसी शैलपुत्री की निवासी हैं और 23 जून 2025 की रात्रि 8 बजे से अपने घर से लापता हैं। अनीता देवी की आयु है 36 वर्ष, कद 4.5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था गुलाबी रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपके पास हो तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना है और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। खेल दर्पण कार्यक्रम रात में 10 बजे लखनऊ केंद्र से रिले होगा। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे आशुतोष भट्टाचार्य का ध्रुपद गायन। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात में 8 बजे आबिदा परवीन की गाई गजलें सुनवाई जाएंगी। अंजुमन प्रोग्राम होगा रात्रि 9:30 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से बातचीत का विषय होगा बैंकिंग कार्य में सावधानी। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे महेंद्र सिंह यादव और उनके साथी। इनके गाए कुछ लोकगीत आप लोक संगीत कार्यक्रम में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज युवा साथी सुनेंगे आज की बात, क्या आप जानते हैं, इसके अंतर्गत IST मानक पर जानकारी। यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। धरती के गीत कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी गीत सुनवाए जाएंगे शाम 5 बजे। कलाकार होंगे धूखा राम मकरम और दुखिया बाई। सुहाने तराने ये कार्यक्रम होगा 2:30 पर। प्रस्तुति पूजा सिंह की 1:15 पर कार्यक्रम होगा अंगनैया। इसमें चर्चा और गीत संगीत के अलावा बातचीत सुनवाई जाएगी आकाशवाणी के 90 वर्ष विषय पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी, आकाशवाणी।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: और 58 को पद्मश्री से सरफराज किया गया। जाने माने फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनके ताउन के लिए बाद अजमर पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। फिल्म अदाकार की अहिल्या और लोकसभा रुक्न हेमा मालिनी ने यह अवार्ड हासिल किया। वॉयलिन बजाने वाले डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। पद्म विभूषण गैर मामूली और खसूसी खिदमत के लिए, पद्म भूषण खसूसी खिदमत के लिए और पद्मश्री किसी भी शोबे में खसूसी खिदमत के लिए दिया जाता है। साल 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्डों को मंजूरी दी है। बकिया पद्म अवार्ड फातिहीन को बाद में मुनक़िद होने वाले जलसे के दूसरे मरहले में अवार्ड से नवाजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निगम लखनऊ की 342 अवामी बहबूदी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। 413 करोड़ रुपए के लागत वाले इन प्रोजेक्टों की शुरुआत स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ से मुतालिक पुस्तिमक्का का इजरा भी किया। प्रोग्राम में वजीर आला ने अपने खिताब में कहा कि लखनऊ नगर निगम को सफाई रैंकिंग में मुल्क में तीसरा मकाम मिलना एक बड़ी हुसूलियाबी है। उन्होंने कहा कि हमें अब लखनऊ को अव्वल नंबर पर लाना है। वजीर आला ने कहा नगर निगम के साथ आवाम की जिम्मेदारी है कि वो लखनऊ को साफ और खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करें। वजीर आला ने कहा,
1: मैं आभारी हूँ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 17 की 17 नगर निगम की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा बोर्ड बना और उसी का परिणाम है कि नगर निगम ने इन 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए।
0: हुकूमत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की हमवार फराहमी यकीनी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मगरबी एशिया तनाज़ों पर कल नई दिल्ली में मुनक़िद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने ये बात कही
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों को खत लिखकर 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को महफूज, हमवार और कामयाबी के साथ मुनक़िद करने की अपील की है। जनाब प्रधान ने पूरे मुल्क के सभी वज़राए आला, नायब गवर्नरों और हुकूमतों से इस मुतालिक तावुन तलब किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गांव पंचायतों की नई बॉडी तश्कील होने तक या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की मुद्दत के लिए आउटगोइंग गांव प्रधानों को गांव पंचायतों का इंतजामिया मुकर्रर किया है। रियासत के गांव पंचायतों के प्रधानों की मुद्दतकार आज खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम के मुताबिक सभी जिला मजिस्ट्रेटों को गांव पंचायतों में आउटगोइंग प्रधानों को इंतजामिया के तौर पर नामजद करने का हक दिया गया है। ये सभी कल से इंतजामिया के तौर पर कामकाज संभालेंगे। इन सभी को सिर्फ मामूल के मुताबिक और रोजाना के कामों को करने की इजाजत होगी और उन्हें कोई भी हिकमत अमली का फैसला करने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत ने यह भी वाजे किया है कि अगर किसी भी हालत में कोई हिकमत अमली का फैसला जरूरी हो तो जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही यह फैसला किया जा सकता है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के लाखों लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे। 5 रोजा हज के पहले दिन कल आजमीन हज मिना के टेंट सिटी में जमा हुए। आजमीन हज आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक शदीद सड़क हादसे में औरास थाना हलके के किलोमीटर 262 पर दिल्ली से गोरखपुर जा रही मुसाफिरों से भरी एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में 5 अफराद मौके पर ही जहां बहक हो गए जबकि एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मकामी इंतजामिया ने फौरन मौके पर पहुंचकर राहत और रसानी का काम शुरू कर दिया। दरियासना उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए सड़क हादसे में जानोमाल के हुए नुकसान पर रंज का इजहार किया है। साथ ही मरने वालों के लवाहिकीन के तई सब्र की दुआ की है। दरियासना गुज़िश्ता शब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक हादसे में कैची धाम जा रहे 4 अकीदतमंद जा बहक हो गए और 3 जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से टकरा गई। और कल पूरी रियासत में दिन भर की तेज धूप, शदीद गर्मी और लू के दरमियान रात में ही अचानक मौसम का मिजाज तब्दील हो गया। रियासत के गोरखपुर और अयोध्या समेत कई दीगर अजला में गुज़िश्ता शब तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल शदीद गर्मी से कुछ राहत दी। अयोध्या और जौनपुर में भी आज सुबह तेज हवाओं और बारिश से मौसम तब्दील होने की खबर है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 हुए हैं। संदेश के बाद ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया।
4: हो गया इंतजाम।
5: किसका?
4: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: सुनो ना।
9: हाँ?
8: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
9: तो रोका किसने है? हाँ?
8: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
9: मुझसे।
8: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
9: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
8: पर उससे मेरा क्या फायदा?
9: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
8: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
9: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
10: 0542227658।
11: 0542227658।
8: लो अभी फोन लगाता हूँ।
11: 0542227658।
12: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

सत्र जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल प्रेसिडेंट हाउस में मनकित नागरिक अलंकरण जलसे में साल 2026 के लिए छाछठ जानी मानी हस्तियों को पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से दो हस्तियों को पद्म विभूषण, छह को पद्म भूषण

0: अंगने यह कार्यक्रम सुने वाली सब बहनी लोगन के नमस्ते आ गुंजा तोहरों के नमस्ते हो।
1: नमस्ते हो लाली दीदी, नमस्ते हमरे ओरी से भी कुल बहनी लोगन के नमस्ते।
0: अच्छा ई बतावा, काल गंगा जी गल रहलू की आज?
1: अरे दीदी, यही फेरा में तो पड़ल रह गईली। गंगा जी तो आज गईली है नहाए, लेकिन जानत हूँ ना, कुल त्योहार तो दू दिना मनावल जात हो। कुछ लोगन देखा अपने गौवा से काल चल गईलन, कुछ जनी जो बचल रहलिन वो आज गईलिन। अब का करी, यही फेरा में ना समझ में ना आवेला कि कवन दिन कवन त्योहार मनत हो।
0: चला कोनो दिन गईलू ना गंगा दशहरा पर, गंगा जी नहैले से, गंगा जी के पूजा कैले से, मतलब आ साथे इहो मतलब है कि गंगा जी के साफ सफाई का भी ध्यान दिहल जाए।
1: अरे बिल्कुल दीदी बिल्कुल, लेकिन वहाँ जाके ना ई ध्यान तो समझ ला कि किनारे हट जा तो लोगन के मन से कि गंगा जी में जवन नहात है उनकर साफ सफाई भी किया जाए। जे जहाँ नहा तो तहे कपड़ा छोड़ के चल जा। तो हम तो दो चार लोगन के कहली भी कि का हो बहनी, अपन कपड़वा लत्ता तो ले जा। तो कहतीन कि नाही, ई मानल जाला कि जहाँ नहा वही कपड़ा छोड़ देवल जाए। तो हम कहली देखा ई कुल तो ना हो, ई कुल बात गलत हो भाई। जौन पवित्र नदी में हम लोगन नहा थी, ओकर पवित्रता ओकर साफ सफाई भी ध्यान देवे के हो कि ना देवे के हो। तो कहले पे तो कपड़ा उठाए के ले गए, लेकिन हम देखत रही कि आगे जाके कोनिया में फेंक दे।
0: भाई तो ठीक नहीं है। देखा हम लोगन समझावत रहिला, चेतावत रहिला गोहरा गोहरा के बहनी लोगन के कि भाई खाली गंगा जी के नहले से, उनके महात्म के समझले से काम ना चली, उनके महात्म के बनावल रखल भी जरूरी है। लेकिन गुंजा कही ना कि आज हम लोगन के कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम है, उ का है इतना जानत हूँ ना?
1: एकदम जानत है भाई। आज तो अपन हेलो अंगनैया फोन इन कार्यक्रम हो, ऐमे हम लोगन देखा जोहत है कि बहनी लोगन का फोन आवे। आज का विषय का हो तनी बतावा था?
0: देखा विषय ई है कि बहुत दिन से हम लोगन रेडियो पे गोहरा गोहरा बहुत चीज चेतावत ही बतावत है। बाकी ई चेतौले बतौले का बहनी लोगन पर का असर है, बहनी लोगन के बदे रेडियो का उपयोगिता है, कैसे सबके हित बदे ई काम करत है रेडियो, ते ई रेडियो से

0: जुड़ल कौनो भी हुनकर अनुभव है ना वो साझा करें, यही बदे आज का ई फोनिंग कार्यक्रम हम लोगन रख ले ही जाए।
1: भाई बहनी लोगन फोन करे, अपने जन अनुभव हो के साझा करे, ये बात तो हम जोते हैं, लेकिन देखा सबसे पहले कि अपन अनुभव साझा कर देते हैं।
0: हाँ
1: देखा हो दीदी, जब हम लोगन छोटैया में रहली ना, तो हम लोगन का जो बब्बा रहले ना, वो रेडियो बड़ा सुनत रहे।
0: देखा तू हर बात बाद में सुन, पहले एक ठे फोन आवा था सुनल जाए। हेलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो।
0: देखा भाई श्रोता भैया बहनी जे भी जुड़ल बात कही नहीं हो पावत है, उनसे संपर्क नहीं हो पावत है, आवाज ही नहीं आवत हो।
1: हेलो
2: हेलो हाँ मैडम जी,
1: हेलो सही हो दीदी, आवाज तो आई थे ना एकदम, उधर से बहनी लोगन या भैया लोगन जब फोन करे तो वो परेशान हो कि हमारा फोन तो मिल गया लेकिन आवाज कहीं ना जाता।
0: हाँ तो चला जमले आवाज नहीं आवा था, ठीक करल जाता कि भाई संपर्क हो जाए रेडियो से, तब से तू अपन बात बताइए।
1: हाँ तो हम बतियावत रही ना कि जब हम लोगन छोटैया में रहली ना, तो हमारे जिन बब्बा रहे ना उनके भाई रेडियो सुने का बड़ा शौक रहे, जाना तो सुतते उठते कुल समय रेडियो लेके बैठल रहे। तो हम कही भी कि का हो बब्बा ई डब्बा के का लेके बैठल रहेला हर समय, तो कहे ना कि ई डब्बा ना हो बच्ची, ई डब्बा से बड़ा जानकारी का बात मिलेला। तो हम कही कि का, तो कहे कि देखा बैठले बैठले घर में देश दुनिया का कुल खबर मिल जाता हो। इतने नहीं, जब खेती में जाए ना तो खेते में डब्बा ले ले जाए, उनमें से पसंद पसंद का गाना उनमें सुने, तो किस्म किस्म का गाना आवे। कभो कभो तो लइकन बच्चन का कोनो कार्यक्रम चले ना, तो ओहू हम लोगन के बैठा के सुना कि बैठा सुना ऐसे जानकारी ला।
0: अरे गुंजा ई तो बात तू बहुत रहे आ जा रहे ना, वो बतावे कि रेडियो के इतना लोगन का जुनून रहे, इतना ओकरे प्रति लोगन प्रेम रखे कि कत्तो जाए रेडियो लेके जाए, और रेडियो खाली जानकारी बदे ही नहीं मनोरंजन बदे, उनके हर तरह के शिक्षा देवे बदे ई रेडियो रहे।
1: भाई शिक्षा तो सहियों में बहुत मिलेला रेडियो से, वो समय का बात का कहलू है, आज के समय में देखा ना अपने रेडियो से कितना दूर दराज गांव में जहाँ सही तरीके से सूचना ना भी पहुंच पावा तो वो रेडियो पहुंचा देता।
0: हाँ अब पहले तो इतना बढ़ कर रहे ना जानला रेडियो कि इतना बढ़ कर रहे कि ओके ओकरे बदे ना लोग लकड़ी का केस बनवा में लकड़ी का केस बनवा में उमन रेडियो के सजाए के रखल जाए, ओकरे बदे भाई पर्दा सी है, घरे के घरे तीन लोग रहे।
1: हाँ, हाँ।
0: पर्दा सी के रखे और समय समय पर रेडियो चालू होके और समय समय पर ऊपर कार्यक्रम प्रसारित होके।
1: भाई ये कुल तो कहे लायक हो, इतने नहीं ये जन सूचना का हम लोगन का इतना बड़ का साधन हवे ना, वो उमें जवन देखा रेडियो पे मने इतना विश्वास करे, इतना विश्वास करे कि का किहल जाए, मने कि रेडियो से जवन सूचना मिल गए ओकरे बाद केहू से ना पूछे के पड़ल कि उस सही हो कि गलत हो, मतलब रेडियो एक विश्वास रहे।
0: जैसे दाऊ देवता आकाश से बोले ना, पहले आकाशवाणी हो,
1: हाँ
0: तो आकाशवाणी हो तो ओके मान लिहल जाए कि अरे दाऊ बोलत हुवन देवता बोलत हुवन ई आकाशवाणी है ई सच हुई। हाँ वही से समझ ल कि आकाशवाणी एक नाम पड़ गए रेडियो।
1: भाई जब देवता का वाणी जे तरह से सही हुए ना, वही तरह से ई जो आकाशवाणी से जो सूचना मिले वो भी एकदम सही होखे। जानत हो दीदी एक बात और कहल चाहत है, ई रेडियो ऐसन हो ना कि माने कि एके बिना देखले हम लोगन एके सुन सकीला, एके अपने साथे ले जा सकीला, और एकरे अंदर से जो संगीत बजेला ना, जो सकारात्मक विचार मिलेला ना, ओकर माने कि अपने जिंदगी में एक गहरा अर्थ छोड़ देवेला। और तो और हम लोगन देखा जब दिन दुपहरिया में काम काज कई के जब
0: गुंजा एक ठे फोन आवत है ले ली हल जाए। हेलो हेलो श्रोता बहनी से चाहे भैया के फोन करत, इस समय लाइन इतना बिजी है कि समझ में नहीं आवता। हेलो
3: हेलो
0: हाँ भैया कहाँ से बोलत हुआ?
3: हाँ नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार भैया।

0: बगहिचा बोला थिला, बगहिचा का जौनपुर।
1: बताई, रेडियो से जुड़ल आज आपका कोनो अनुभव हो तो साझा करी।
0: सुना,
1: हाँ
0: हम आवाज डबल आवाज से मोबाइल में, हम रेडियो जो से हम जिस रेडियो से बात कर सिला, वो रेडियो 684 बाजोर, जिसकी उम्र है 60 बरस की। हाँ, इस बात कर सिला, आज बना के रखले बाजी लकड़ी मॉडल, 3 रेडियो हो हमारे पास। और रेडियो के शौकीन हम महिला और क्यों ना हो।
1: तो रेडियो का आप शौकीन कब से हैं भैया?
0: ये हम 65 पहला सन 7 पहला।
1: अच्छा, तब आप तो हमार बहुत पुराना श्रोता हुआ।
0: बहुत हैला, हम ये समझ ला कि एक रेडियो ये 70 साल 80 साल का एक मर्फी किसान हो।
1: हाँ।
0: एक फिलिप्स फिलेटा हो जो नए युग का हो।
1: हम्म,
0: पुराना रेडियो खोजी ला की, क्योंकि पुराने रेडियो से बहुत शौकीन है।
1: तो रेडियो को कौन कौन कार्यक्रम आपके पसंद आवे ला भैया?
0: सारे कार्यक्रम, इसमें इलेक्ट्रिक से बजट हो, जब इलेक्ट्रिक बंद जाले लाइन हम बैटरी वाली भी चालू कर दिला, सेल वाली भी चालू कर दिला।
1: बहुत अच्छा लगा था आपसे बात करके। अजाना थे हम लोगन के बहुत खुशी होला कि हम लोगन का ये प्रयास सफल हो था और रेडियो जोन अपन 90 साल पूरा करा था आप लोगन के प्रेम के बदौलत।
0: हाँ, जो 1936 में हुई। अंग्रेज ने आके क्या स्थापित किया ने, पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता में। मालूम है ना आपके?
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल।
0: 1957 में जगदीश माथुर ने आकाशवाणी कही ना, पहले डीसीजी ऑल इंडिया रेडियो, फिर ये आकाशवाणी है, फिर ऐसे पहली बार डीसीजी ऑल इंडिया, बाद में आकाशवाणी है, आकाशवाणी उन्होंने किए थे जगदीश माथुर 1957 में। बहुत खुश रहते हैं रेडियो से। जी जी,
1: चलिए यही तरह सुनत रही हमार कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ फोन करे बदे। हाँ हेलो हेलो
2: हेलो।
1: हाँ भैया, कौन बोलत हुआ? हेलो, के बोलत हुआ?
2: हेलो
1: हेलो,
2: आवाज आ रहा है?
1: हाँ, आवाज आपका आवा था, हमारा आवाज नहीं मिला था का?
2: आवाज आ रहा है, आपका भी आवाज आ रहा है। हम रामेश्वर से बोल रहे हैं।
1: रामेश्वर से कौन भैया बोलत हुआ?
2: हम राजू विश्वकर्मा बोलत हिला।
1: अच्छा, रामेश्वर से राजू विश्वकर्मा जी, रेडियो से जुड़ल कोनो अनुभव आपका हो तो साझा करी।
2: रेडियो
1: आप सुने लन?
2: हाँ, रेडियो तो हम कम से कम 12-13 घंटा सुनते हैं, हमारे पिताजी भी बहुत 12-13 घंटा रेडियो सुनते हैं।
1: हाँ हाँ, तो आज तो ये है ना कि आकाशवाणी का 90 बरिस जौन पूरा हो था, यही विषय पर आप लोगन के अनुभव से जुड़ल कुछ बात हम लोगन जानल चाहत है, तो आपका कौन अनुभव होता बताई?
2: पहली बात तो आपके आकाशवाणी परिवार को हमारे तरफ से 90 साल पूरे करने के बहुत बहुत बधाई।
1: आपके भी बहुत बहुत बधाई भैया।
2: दूसरी बात ये है कि हम लोग मैच बहुत शौकीन है, जब क्रिकेट का कमेंट्री आता है बड़े उसके बहुत प्रेम से सुनते हैं। जो हम कभी छोड़ते नहीं है। और दूसरा जो आपके कार्यक्रम आते हैं, हेलो फरमाइश हुआ और कृषि जगत हुआ, ये प्रोग्राम हम लोग बहुत दिल से सुनते हैं।
1: यही तरह सुनत रही भैया, आप लोगन के प्यार से ही ई रेडियो आज तक चलत है और हम लोगन आपसे जुड़ल है। यही तरह सुनत रही और आपन प्रतिक्रिया जो ना वो फोन के माध्यम से चाहे ईमेल के माध्यम से व्यक्त करत रही, तो हमार रेडियो बहुत आगे बढ़ी।
2: रेडियो 1995 से सुन रहे हैं हम।
1: अरे, आप तो बहुत पुराना श्रोता हुआ।
2: हाँ, रेडियो हमारे बचपन में जो है, हमने कम से कम बहुत रेडियो का जितने भी सुधार हुआ वो सब पहले के प्रसारण से अब के प्रसारण में भी बहुत सुधार हो गया जो है।
1: जी जी,
2: आप लोग और सुधार करने की इसमें जरूरत है।
1: तो आप क्या चाहते हैं, कौन तरह का सुधार हो के चाहिए?
2: नहीं, हमारे तरफ देखिए, पहली बात तो जो है कि थोड़ा सा जब खेल वोल आता है तो कभी कमेंट्री नहीं आती है जो क्रिकेट का, तो अच्छा, मजा नहीं आता है।
1: अच्छा अच्छा, चलिए हम लोगन प्रयास करब कि आपका संदेशा पहुंच जाए। यही तरह से फोन करत रही आपके मन फोन करे बदे बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया।
2: जी धन्यवाद धन्यवाद।
1: गुंजा?
3: हाँ दीदी।
1: हाँ, देखा श्रोता भैया लोगन सुना थुमन और कार्यक्रम में फोन भी आवा था, कितना निक लगा था ना?
3: बड़ा निक लगा था भाई, सुन के मिला था कि हाँ भाई, जने जने अपन रेडियो

0: सुनेलन अपने आकाशवाणी से जुड़ल भेल हुए
1: एक ठे फोन
0: और
1: और आवत है।
0: हाँ हाँ पहले देख लेवल जाए।
1: हेलो,
2: हाँ हम वह बोल रही थी। नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते भैया।
2: अरे हम जो पहले से पहले बात कहली ना वह आदमी हिला बात कर दिला तो
1: अच्छा अच्छा भैया, आपका बात पूरा नहीं होत रहे।
2: हाँ ना हो पाव से जिला ना मानल भरत सर बात के
1: अच्छा
2: लिए
1: अच्छा
2: क्योंकि रेडियो के समय जो 90 वर्ष आवा समय बड़ी हंसी खुशी बड़ी खुशियाली होता बहुत खुशियाली। हाँ
1: हाँ तो चलिए फिर बतियावल जी और श्रोता भैया लोगन भी फोन करत हुई है ना।
2: अच्छा ठीक है
1: हाँ
2: ठीक है ठीक
1: ठीक
2: है
1: है, नमस्ते भैया।
2: नमस्ते।
0: भाई भैया लोगन फोन करत हुवन, बहिनी लोगन के भी फोन का इंतजार हो, लेकिन बाकी जब तक फोन ना आवेला तब
1: हाँ।
0: तक लाली दीदी तोसे पूछल चाहत है कि तू अपन अनुभव बतावा तनी।
1: ए हमार तो अनुभव यह है, देखा अनुभव बताई पहले फोन ले ली।
0: हाँ हाँ एकदम।
1: हेलो हेलो
3: हेलो।
1: हाँ भैया, नाम
3: हाँ
1: बताएं अपन।
3: नमस्कार नमस्कार, गंगा
1: नमस्ते
3: पुर
1: नमस्ते।
3: मिनी मछली शहर से
1: अच्छा मछली शहर से कौन भैया?
3: धर्मराज सरोज।
1: अच्छा तो
3: हाँ
1: भैया आप रेडियो सुनिए ना,
3: हाँ रेडियो तो हम सन 67 से सुनत है
1: सन
3: इसी
1: 67 से सुनत हैं, तो आप तो बहुत
3: से
1: पुराना
3: जब।
1: श्रोता हैं हमार। और
3: हाँ
1: रेडियो के बारे में अगर कोनो अनुभव है तो वो हम लोगन से साझा करें।
3: हाँ जब गंगा भैया आवत रहे गोवर्धन भैया बहुत पुराना श्रोता है, 6-7 रेडियो हम सुन के ओके पुरान कह चुका है। रेडियो
1: रेडियो पर और कौन कौन जानकारी का चीज सुनत रहलन?
3: पर तो बड़ी बड़ी कुछ जितनी जानकारी लगभग आवत लाली बहन है जो है बोलिए हम सुनत ही। तो आर कार्यक्रम बहुत अच्छा गया था। ये कार्यक्रम हमका थोड़ा सा गड़बड़ लागत है कि जब ये जो आप सबके हेलो फोनिंग फरमाइश और लोग गीतिया आवत है
1: तो हेलो फोनिंग फरमाइश में गड़बड़ का लागे ला आपके?
3: उसमें ये जवन अरुण कुमार हैं या जे भी पूजा हैं जे भी होता है वो कार्यक्रमों के जितिया आवत रहा तो उन्हीं में नमो लेते रहा थी जितिया सुनाई में नहीं आवत।
1: देखा नाम लेवल तो जरूरी है ना भैया, ये तो कार्यक्रम का मांग हो।
3: अरे तो लोगन से हम कहा था श्रोता बंधु लोगन के बता दे जाए भाई 10-20 नाम लिया जाए गाना सुन मिलत यहाँ सुहा पूरा नाम नाम नाम अंत
1: अच्छा
3: तक
1: चलिए
3: लोग
1: आपका
3: कैसे।
1: संदेशा हम अरुण भैया तक पहुंचा दे।
3: हाँ वो पानी की जरूरी हमारा संदेशा दें
1: हाँ
3: और
1: बिल्कुल,
3: कार्यक्रम
1: उनके
3: आपके
1: तक आपका
3: बहुत अच्छा
1: संदेशा
3: गया
1: हम
3: तो
1: पहुंचा
3: भाई
1: दे।
3: बहुत अच्छा बार बहुत अच्छा बार
1: चलिए यही तरह
3: धन्यवाद
1: फोन करत रही। हाँ धन्यवाद
3: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: लाली दीदी देखा हो श्रोता भैयन का भैया लोगन का कभी कुछ कमी कभी कुछ बेसी तो चलल करत हो, लेकिन ई सुन के बड़ा नीक लगत हो कि अपने कार्यक्रम के कितना जने जने लोग सुनत हवन, कितना दूर दराज के लोग सुनत हवें। और जो पूछत रहली ना कि अपने हम लोगन जो साझा करल जाए रेडियो का अनुभव, कि हम लोग भी तो भाई अपने बचपना से रेडियो के देखल चलल आवत है सुनल चलल आवत है। अपन बब्बा हवन दादी हैं। फोन आवत है गुंजाई, फोन आवत तो। हेलो हेलो
2: हेलो।
0: हेलो। हाँ भैया कहाँ से बोलत हुआ?
2: हम चोचकपुर से बोलत हैं, बहुत ही बहुत धाम जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी मैम।
0: अच्छा, राम सकल चौधरी भैया रेडियो का ये जो 90 बरस पूरा होत हो
2: हाँ
0: ओकरे।
2: 90 वर्ष पूरा होने के लिए आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: हाँ अपन अनुभव साझा करी भैया, आप रेडियो कब से
2: साझा
0: सुनत
2: क्या
0: हो?
2: है, हम तो माला नियमित श्रोता है
0: हेलो
2: आकाशवाणी और
0: हेलो।
2: रेडियो से। हाँ
0: हाँ भैया आपका आवाज ना आवत रहल, फिर से तनी बताई। हेलो
2: हेलो।
0: हेलो।
2: हाँ हेलो।
0: हाँ भैया तनी फिर से
2: हाँ
0: बताई।
2: पहले तो आपको नमस्कार
0: नमस्कार भैया नमस्कार, आपके भी नमस्कार।
2: जी। हाँ हेलो।
4: हाँ भैया तनी फिर से
0: हेलो।
4: बताई
2: नमस्कार।
0: हेलो।
2: रेडियो तो मान हम बचपन से सुनते हैं
0: अच्छा अच्छा
2: आकाशवाणी के।
0: हाँ
2: हाँ
0: हाँ
2: राम सकल चौधरी बोल रहे हैं।
0: हाँ हाँ हाँ
2: रेडियो बचपन से हम लोग जो छोटे थे बच्चे उस समय वो रेडियो ले लेकर घूमते थे।
0: हम्म
2: बहुत आनंद आ रहा था उस समय 90-95 की बात है।
0: अच्छा अच्छा
2: बहुत अच्छा।

0: रहा था उस समय।
1: हाँ।
0: अभी भी जुड़े हुए हैं।
1: बहुत बढ़िया बात है भैया कि आप उस समय से लेके अब तक रेडियो से जुड़े हवा।
0: अब तक हम रेडियो से जुड़े हुए हैं, 2-4-5 रेडियो रखते हैं। जी अब सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान की बातें होती है इससे, वाणी कार्यक्रम।
1: हेलो हेलो। हाँ हाँ भैया।
0: हाँ सभी कार्यक्रम वाला हम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: समाचार वगैरह भी सुनते रहते हैं। और ये भी कार्यक्रम जैसे अंगनैया हुआ, गृहलक्ष्मी हुआ, ये भी सुनते रहते हैं। आप लोग की बातें जो जानकारी देती है बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: आकाशवाणी के माध्यम से
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप पूरा कार्यक्रम अपने रेडियो का सुनल करेला, समय समय से सुनल करेला, ऐसे जानकारी भी आप लोगन के मिलत हुई। कुछ और अनुभव बतावल चाहत हुआ?
0: अनुभव तो बस यही है।
1: धन्यवाद भैया फोन करे का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते भैया।
2: गुंजा तो हमार अनुभव पूछत रहलू ना।
1: हाँ बिल्कुल बताई दीदी, अपन अनुभव भी बताई।
2: जानला कि सवेरे से काम करके दोपहरिया में जब खाली समय मिले ना, तो बस यही रहे कितना हाली काम कह के अंगनैया में लेके बैठ जाई रेडियो। लेकिन देखा एक श्रोता भैया का फिर से फोन आवता। हेलो
3: हाँ जी।
2: हाँ भैया, कौन भैया बोलत हुआ?
3: नमस्ते साहब।
2: नमस्ते नमस्ते।
3: अरे अब जौनपुर से बोल रहा हूँ सर।
2: जौनपुर से कौन भैया बोलत हुआ?
3: हाँ मुफ्तीगंज एक ब्लॉक है।
2: हाँ
3: मौलिया।
2: हाँ
3: रात अली साहब जी, हम तो रेडियो बहुत दिन से सुनत सुनत आप यहाँ लग जाला।
2: अरे नौवा बता दे भैया, नौवा बता दे अपन।
3: सतीश मौर्या साहब।
2: अच्छा अच्छा सतीश भैया। हाँ अब बताइए अपन बात।
3: हाँ मतलब रेडियो तो हम बहुत दिन से सुनी ले, लेकिन आप यहाँ लग जाला, कृषि कार्य जगत में लग जाला है।
2: भाई आप दिल से लगावेलन ना, दिल से आप हम लोगन का कार्यक्रम पसंद करेलन। अब बहुत खुशी होता कि आप लोगन इतना दिल लगा के हमन का कार्यक्रम सुनेलन। और हम लोगन का
3: समझ नहीं साहब कि हम 1974 में हमार ब्याह भयल लाल।
2: अच्छा।
3: और तब से वह रेडियो चलत के हो। ब्याह मिलल लाल अंगनैया हमें बहुत बढ़िया लगा ला। आप लोग मिठाई खानी का इतना मीठ मीठ बतिया
2: नहीं, बस आप लोगन का प्रेम है भैया कि हम लोगन इतना मीठ मीठ बतियाई ला, आप लोगन इतना पसंद करेलन। और एकरी बदे आपकी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना हम लोगन का कार्यक्रम, हम लोगन का आवाज पसंद करेलन।
3: लेकिन यार वो पाने वाली जो नवाला साहब बेटवा फिल्मिया गनवा वाला,
2: हाँ हाँ
3: यही में लगावत लगाओ तुम थक गयी आज 20 साल से लगाओ तो कब्बो ना पकड़ ले फोन।
2: अच्छा चलिए अब कोशिश करत रही है, मन तो देखी हमार बस नहीं है ना भाई फोन सब के हुए एक संगे करे ला केकर कब लग जाए।
3: अच्छा एक बात साहब पूछा, झगड़ू भैया मर गए ना कि हुए?
2: नहीं भैया झगड़ू भैया हुआ अब ही एक घड़ी ना हुआ आवत नहीं हुआ।
3: कृषि कार्यक्रम जगतवा में बहुत आन नहीं बढ़िया लगा ला। हाँ भाई मीर्ति बहन और शिखा श्रीवास्तव के बड़ा बढ़िया लगा ला।
2: नहीं सब लोगन हुवन आपके दया दुआ से, सब लोगन अभी कुशल मंगल हुवन और समय समय पर जैसे जेकर कार्यक्रम रहेला आवत रहेला।
3: आपसे बात हो गई।
2: हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्ते। हाँ गुंजा
1: दीदी
2: तो उहे बतावत रही कि दोपहरिया में जब बैठ जाये ना।
1: हाँ,
2: तो जितना कार्यक्रम आवे ना कुल सुन
1: आप देखा देखा हो दीदी, एगो फोन और आवत तो तनी लेला फोन आके।
2: हेलो हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ भैया हेलो।
4: हाँ जौनपुर से बोल रहे हैं।
2: जौनपुर से कौन भैया बोलत हुआ?
4: अरे हम फूलचंद भैया बोल रहे हैं।
2: अच्छा फूलचंद भैया बहुत बहुत स्वागत है। हेलो अंगनैया में आप फोन कैलन, आकाशवाणी का 90 साल पूरा होता वही विषय पर सब केहू अपन अनुभव साझा करत है, आपका कोनो रेडियो से जुड़ल अनुभव हो तब बताई।
4: अरे दीदी आकाशवाणी कितने भी श्रोता है और आकाशवाणी पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई।
2: आपके भी बधाई, रेडियो
4: के पुराने श्रोता है।
2: आपके भी बहुत बहुत बधाई भैया, रेडियो ही तरह सुनत रही। कौन कौन कार्यक्रम आपके अच्छा लगेला?
4: हमको सुबह सुबह जो गुड मॉर्निंग बनारस आता है वो अच्छा लगता है, स्वास्थ्य चर्चा अच्छा लगता है, और गांधी चर्चा और ये रामचरित

0: मानस और ये जो हेलोफोनी फरमाइश आता है, और हम सिंगर है, गायक है हम भी, लेकिन
1: अच्छा,
0: रेडियो खूब सुनते हैं। हमारे घर पे सारी व्यवस्था है, टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन रेडियो मैं बहुत दिन से रखता हूँ।
1: तो
0: और
1: सुनत रही, रेडियो तो
0: हरदम सुन,
1: सुनी है, तो हम लोगन का भाई लगाव प्रेम आपसे बढ़त रही यही तरह से।
0: जी। और आपका ये जो कृषि जगत आता है कार्यक्रम, गृह लक्ष्मी कार्यक्रम, सब सुनते हैं।
1: तो लाभ आपके मिला था हम लोगन के कार्यक्रम से?
0: हाँ, बहुत रेडियो रेडियो जो जानकारी मिल जाती है वो आप कहीं भी नहीं मिलेगा।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगल आपसे ये जानकारी सुन के कि रेडियो से जौन सुने के मिला था और कहीं से न मिली, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
0: आप लाली दीदी बोल रहे हैं? हाँ,
1: हाँ, लाली दीदी बोलो थी।
0: लाली दीदी, आपकी आवाज हम हरदम सुनते हैं।
1: चलिए, सुनत रही यही तरह से हम लोगन का रेडियो आगे बढ़त रहे। हाँ, धन्यवाद
0: जी।
1: भैया।
2: तलाली दीदी,
1: हाँ हो,
2: देखा हो अपन अनुभव तो तनी पूरा कर दा, नहीं तो फिर
1: हाँ
2: से देखा श्रोता भैया बहनी लोगन का फोन आए तो फिर बज
1: हाँ
2: जाई वो ही
1: आ
2: में।
1: कितना निक लगत है ना, सब पर घड़ी घड़ी फोन आवा था, ये लगत है कि देखा सब केहू फोन करत था। हाँ, फिर एक ठे फोन आवा था। हेलो हेलो हेलो
0: हेलो
1: हेलो। हाँ, कि कौन
0: हेलो।
1: के बोलत भैया?
0: हाँ, मोहन यादव सैदपुर भीतरी से बोलत हूँ।
1: अच्छा, मोहन भैया सैदपुर भीतरी से
0: हाँ,
1: आंगनैया
0: सैदपुर
1: कार्यक्रम
0: भीतरी
1: में
0: से।
1: आज फोन कैलन। हाँ, आप तो रेडियो से जुड़ल कोनो जानकारी, कोनो अनुभव हो तो साझा करें।
0: रेडियो का आम रेडियो अपने शाम को ध्यान है। हाँ, रेडियो हमारा सारा, सुबह से लेके 6 बजे से लेके हमारा रेडियो चालू होला, 3 बजे तक बंद होला इसका मतलब।
1: अच्छा, तो रेडियो सुनले से कोनो काम में आपके बाधा नहीं पड़े ले?
0: कौनो बात आना थोड़ा मतलब कोनो काम हम फिर दिव्यांग करनी है।
1: अच्छा।
0: हाँ, यही से हमको पूरा जानकारी मिलल, देश विदेश का खबर मिलल, हेलो फोन फरमाइश मिला, अंग्रेजी कार्यक्रम तो बहुत मस्त से मिला।
1: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया हम लोगन का कार्यक्रम इतना दिल से पसंद करे बदे गुंजा।
0: लाली दीदी, आपको बात हमेशा सुनिए आपका प्रोग्राम।
1: हाँ, चलिए यही तरह सुनत रही हम लोगन के कार्यक्रम के आगे बढ़ावत रही भैया, अब फोन करत
0: हाँ,
1: रही। हाँ,
0: जी,
1: ठीक है।
0: बहुत सुनते बाहर कार्यक्रम सुनी लगी बात ना।
1: चलिए भैया,
0: अच्छा,
1: यही तरह से कार्यक्रम
0: जी,
1: सुनत रही। धन्यवाद।
2: लाली दीदी, देखा हो श्रोता भैया लोगन का जन फोन आवे लगल ना, तवन तो घड़ी की तरफ हम लोग देखबे ना कैली, समय का कमी हो गए हो, अपने कार्यक्रम का भी समय हो गए हो, तो का की हल जाए अब।
1: अरे पहले तो ये जान ला कि देखा इतना भैया बहनी लोगन रेडियो से इतना हृदय से जुड़ल हुआ ना, तो ये काहे जुड़ल हुआ कि हम लोगन का रेडियो ऐसा काम करत था, एकर जौन उद्देश्य है ना बहुजन हिताय और बहुजन
2: बहुजन
1: सुखाय,
2: सुखाए।
1: माने कि ए उद्देश्य के इस सार्थक करा था आपन रेडियो। हमन की गर्व होला कि हम लोगन ई रेडियो से के माध्यम से अपने श्रोता भैया लोगन से जुड़त थी और उनके हर समस्या का समाधान करत थी। हाँ, तो देखा अब चले के बात कहत रहलू ना, तो देरी नाही करब, चले का बेरा हो गई ला, तो चला चलल जाए और बहनी लोगन से कहल जाए
2: नमस्ते।
1: नमस्ते।

ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम मंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं महेंद्र सिंह यादव और उनके साथी। पहले सुनिए इनकी गाई एक लचारी।

0: इस कहरवा के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम में कलाकार थे महेंद्र सिंह यादव और उनके साथी। इनके गाए कुछ लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स डीटीएच डीआरएम वेव ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sancho border post

0: के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमेरिका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा 30 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.news

0: newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूत

0: जयपुर बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि मुन्नार कुमारकोम निलाक्कल कुमिली सबरीमला वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलुर्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश पंजाब उत्तर प्रदेश विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाने तराने।
3: सुहाने तराने कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा। दोस्तों, बाहर सूरज थोड़ा जोर दिखा रहा है, दफ्तर में काम का थोड़ा दबाव है या घर पर दोपहर की वो सुस्ती छाई हुई है, इन सब के बीच मैं ले आई हूँ आपके लिए एक ऐसी जगह जहाँ वक्त ठहर जाता है। ये है सुहाने तराने, जहां हम बात करते हैं उन गीतों की जो सिर्फ रूह में उतर जाते हैं। तो अगर आप ऑफिस की कुर्सी पर हैं, अपनी कार में हैं या घर पर लंच के बाद थोड़ी देर सुस्त

तारे हैं, तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ इस सुरमई सफर पर चल पड़िए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाने तराने। दोस्तों, जब भी हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन इजहारे मोहब्बत या जुदाई के गानों की बात होती है, तो एक गीत ऐसा है जिसके बजते ही दिल की धड़कनें जैसे ठहर सी जाती हैं। साल 1973 में आई फिल्म लोफर का वो कशिश से भरा नगमा, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं। पर्दे पर जब खूबसूरत मुमताज इस गीत को गाती हैं, तो हर दिल पिघल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी साहब की जोड़ी ने इस गीत को किस तरह तैयार किया था? चलिए आज आपको सुनाती हूँ इस गीत के बनने का एक बेहद दिलचस्प किस्सा। इस गीत को लिखा था हमारे प्यारे आनंद बख्शी साहब ने और इसमें संगीत के रंग भरे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। बख्शी साहब की एक बहुत बड़ी खासियत थी दोस्तों, वो जितने सीधे और आम बोलचाल के शब्द लिखते थे, वो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाते थे। इस गीत के बनने का किस्सा बड़ा मजेदार है। अब बारी थी इस गाने को रिकॉर्ड करने की, और जब माइक पर सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर जी आईं, तो उन्होंने इस गाने को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लता जी ने इस गाने में जिस तरह से दर्द और मोहब्बत की कशिश को अपनी आवाज से पिरोया, उसने सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्यारेलाल जी ने इस गाने के बैकग्राउंड में वायलिन और धीमे ड्रम का जो कॉम्बिनेशन रखा था, उसने लता जी की आवाज को एक कमाल का सपोर्ट दिया। जब यह फिल्म रिलीज हुई, तो फिल्म लोफर में धर्मेंद्र जी के अभिनय को तो सराहा ही गया, लेकिन मुमताज पर फिल्माया यह गीत फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी बन गया। तो दोस्तों, यही जादू होता है पुराने सुहाने तरानों का, शब्दों में सादगी और संगीत में रूह। चलिए अब बातें कम करते हैं और सीधे आपको ले चलते हैं 70s के दशक की उस हसीन दुनिया में। अपनी चाय की चुस्की लीजिए, काम से 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और सुनिए लता जी की जादुई आवाज भी यह सदाबहार नगमा, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाने तराने मेरे यानी पूजा के साथ। दोस्तों, कुछ गीतों में एक ऐसा नशा, एक ऐसी ताजगी होती है कि वो चाहे कितने भी पुराने क्यों न हो जाएं, हर दौर में एकदम नए लगते हैं। एक ऐसा ही जादुई गीत साल 1971 में आया था, जिसने भारतीय सिनेमा में रोड ट्रिप और बंजारों के संगीत को एक नया मुकाम दे दिया। समझ तो गए ही होंगे आप, फिल्म कारवां का वो सुपरहिट नगमा, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का। जी हाँ, जितेंद्र और आशा पारेख जी पर फिल्माया गया यह गीत आज भी हर महफिल की जान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंचम दा ने इस गीत को बनाने के लिए क्या अनोखा एक्सपेरिमेंट किया था? चलिए आज आपको सुनाती हूँ इसके मेकिंग का एक बेहद मजेदार किस्सा। फिल्म कारवां के निर्देशक थे नासिर हुसैन साहब, जो अपनी फिल्मों में वेस्टर्न और मॉडर्न म्यूजिक को बहुत पसंद करते थे। जब उन्होंने संगीत की कमान राहुल देव बर्मन यानी हमारे पंचम दा को सौंपी, तो पंचम दा ने कुछ ऐसा करने की सोची जो इससे पहले हिंदी गीतों में नहीं हुआ था। दरअसल इस गाने की जो मुख्य धुन है, वो एक बेहद मशहूर इंटरनेशनल बंजारा लोकगीत से प्रेरित थी, जिसे बाद में ग्रीक और इंग्लिश सिंगर्स ने भी अलग अंदाज में गाया था। पंचम दा ने उस धुन को पकड़ा, लेकिन उसमें जो देसी तड़का लगाया वो कमाल था। इस गाने को बंजारा लुक देने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में असली खंजर, कुल्हाड़ियों और बर्तनों को आपस में टकराकर क्लिंकिंग साउंड तैयार की गई। गिटार, ड्रम और कांगो के साथ जब बंजारों के हथियारों की वो खनक मिक्स हुई, तो स्क्रीन पर ऐसा लगा जैसे सचमुच कोई बंजारा कबीला झूम रहा हो। अब धुन और म्यूजिक तो एकदम टॉप क्लास तैयार था, लेकिन इसे अमर बनाना था आवाज के जादू से, और ये जिम्मेदारी संभाली हिंदी सिनेमा की दो सबसे बड़ी ताकतों ने, मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी ने। महान गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी जी ने इसके बोल लिखे थे। इस गाने में रफी साहब ने जिस अल्हड़पन और रोमांटिक अंदाज में गाया और बीच बीच में जो हम्म की तान ली, उसने गानों को एक अलग ही ऊंचाई दे दी। वहीं लता जी की मखमली और साफ आवाज ने आशा पारेख के किरदारों की चुलबुलाहट को पर्दे पर जीवंत कर दिया। कहा जाता है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद पंचम दा इतने खुश थे कि उन्होंने स्टूडियो में ही रफी साहब को गले लगा लिया था। तो दोस्तों, पंचम दा के उसी पागलपन, मजरूह साहब के शब्दों और रफी लता की अमर आवाज का नतीजा है कि आज इतने साल बाद भी यह गाना हमारी प्लेलिस्ट में टॉप पर रहता है। चलिए अब बातें कम करते हैं और सीधे आपको ले चलते हैं यादों के उस हसीन कारवां में। झूमने के लिए तैयार हो जाइए।

गाना अपने आप गूंज उठता है। बागों में बहार है तुमको मुझसे प्यार है ना। साल 1969 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना का यह गीत आज भी हर जनरेशन के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माए गए इस एवरग्रीन गीत के बनने का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। चलिए आज आपको सुनाती हूँ इसके पीछे की एक मजेदार कहानी। दोस्तों, इस गीत को संगीत दिया था महान एसडी बर्मन यानी हमारे सचिन देव बर्मन दादा ने, और इसके बोल लिखे थे जादूगर आनंद बख्शी साहब ने। कहा जाता है कि बर्मन दादा इस फिल्म के लिए एक ऐसा गीत चाहते थे जो सीधे सीधे आई लव यू न कहे, बल्कि जिसमें एक लड़का लड़की से जबरदस्ती अपना प्यार कबूल करवाना चाहता हो और लड़की शर्मा कर मना कर रही हो। आनंद बख्शी साहब जब बर्मन दादा से मिले तो दादा ने उनसे कहा, बख्शी कुछ ऐसा लिखो जो एकदम सिंपल हो पर उसमें एक ड्रामा हो। बख्शी साहब ने वहीं बैठे बैठे एक लाइन सोची, बागों में बहार है। बर्मन दादा बोले, हाँ आगे। बख्शी साहब ने कहा, लड़का कहेगा बागों में बहार है, लड़की कहेगी है। लड़का कहेगा तुमको मुझसे प्यार है तो लड़की कहेगी ना। बर्मन दादा उछल पड़े। उन्हें ये हाँ ना का मजेदार आइडिया इतना पसंद आया कि धुन तैयार तुरंत हो गई। धुन बन गई, शब्द आ गए, लेकिन असली जादू तब हुआ जब स्टूडियो में मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी माइक पर आए। इस गाने में जो एक्टिंग रफी साहब ने अपनी आवाज से की है वो कमाल है। जब वो गाते हैं तुमने कभी देखा है तो उनकी आवाज का वो उतार चढ़ाव सुनने वाले को दीवाना बना देता है। और लता जी ने जो इसमें हूँ हूँ और ना कहा है, उसमें जो छिपी हुई मोहब्बत और कशिश है, उसने इस गीत को अमर बना दिया। वैसे तो आराधना फिल्म के बाकी गीतों के लिए किशोर दा को याद किया जाता है, लेकिन रफी साहब का गाया यह इकलौता गीत फिल्म की जान बन गया। तो दोस्तों, जब कमाल के कंपोजर, बेमिसाल गीतकार और जबरदस्त सिंगर्स मिलते हैं तब इतिहास बनता है। चलिए दोपहर की इस सुस्ती को दूर भगाते हैं, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हैं और सुनते हैं ये सदाबहार तराना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: सुहानी तराने कार्यक्रम सुन रहे हैं आप मेरे यानी पूजा के साथ। दोस्तों, जब इंसान को किसी से बेपनाह मोहब्बत होती है ना, तो वो हवाओं में तैरने लगता है, दुनिया की हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। और इसी खास एहसास को जब पर्दे पर उतारने की बात आती है, तो जो गीत जहन में सबसे पहले आता है वो है, आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। जी हाँ, साल 1978 में आई फिल्म घर का यह गीत महज एक गीत नहीं, बल्कि प्यार में डूबे एक दिल की धड़कन है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस आइकॉनिक गाने के बनने के पीछे की कहानी कितनी दिलचस्प है? चलिए आज आपको सुनाती हूँ इसके पीछे का एक बेहद प्यारा किस्सा। इस गीत को लिखा था शब्दों के जादूगर गुलजार साहब ने, और इसे धुन दी थी हम सबके चहेते आरडी बर्मन जी ने। गुलजार साहब और पंचम दा की दोस्ती के किस्से तो पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। दोनों जब भी साथ बैठते थे तो कुछ ऐसा बनता था जो इतिहास रच देता था। इस गीत के बनने का एक बड़ा ही अनोखा किस्सा है। जब गुलजार साहब ने ये लाइन लिखी, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, तो पंचम दा ने इसे पढ़ा और हंसते हुए बोले, गुलजार ये क्या लिख दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है और वो हवा में तैर रहा है। लेकिन गुलजार साहब मुस्कुराए और बोले, पंचम, जब कोई प्यार में होता है ना, तो वो जमीन पर नहीं आसमान में ही चलता है, तुम बस इसे एक बार महसूस करके धुन बनाओ। और फिर पंचम दा ने जो धुन तैयार की, उसने इस गीत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। धुन बनने के बाद बारी थी रिकॉर्डिंग की। सुर कोकिला लता मंगेशकर जी ने जब इस गीत को स्टूडियो में गाया, तो उन्होंने अपनी आवाज में वो कशिश और वो अलहड़पन डाला जो एक नई नवेली दुल्हन के एहसास को बयां करता है। गीत के बीच में जो सितार और बांसुरी का पीस बजता है, वो सीधे दिल के पार उतर जाता है। और जब ये गीत पर्दे पर आया, तो सुपरस्टार रेखा जी और विनोद मेहरा जी पर फिल्माया गया यह गीत हर प्रेमी जोड़े का एंथम बन गया। रेखा जी की आंखों की वो मासूमियत और चेहरे के एक्सप्रेशंस ने इस गीत को विजुअली भी उतना ही खूबसूरत बना दिया जितना यह सुनने में था। गीतों के बनने के पीछे के ये किस्से हमें इन गीतों के और भी करीब ले आते हैं, है ना? तो चलिए, अब देर किस बात की, दोपहर के इस सुकून में हवाओं में थोड़ा सा रोमांस घोलते हैं। अपनी खिड़की के पास बैठिए, चाय की चुस्की लीजिए और खो जाइए लता जी की जादुई आवाज में। सुनिए, आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे।

0: तो दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का, तो अपनी रेडियो दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाने तराने।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम वेव्स, ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए आज सुनते हैं छत्तीसगढ़ी गीत। कलाकार हैं धुरवाराम मकरम और दुखिया बाई।

धरती की गीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी गीत कलाकार थे दुर्वाराम मकरम और दुखिया बाई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का प्रोग्राम युववाणी।

0: दोस्तों, दिन भर की भागदौड़, थकान और जिम्मेदारियों के बाद अगर शाम में कोई अपना मिल जाए जो कुछ बातें करे, थोड़ी मुस्कान दे और ढेर सारी जानकारियां भी, तो मज़ा ही आ जाता है ना? बस हम भी लेकर आ गए हैं बातों और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब से भरा जानकारियों का एक खूबसूरत पिटारा,
1: जहाँ होंगी दिल की बातें, युवाओं की आवाज़ और वो सब जो आपको हमसे जोड़े रखता है। लेकिन उससे पहले जान तो लीजिए कि आज के कार्यक्रम में आपके साथ कौन है।
0: बिल्कुल दोस्तों, आज के सफर में आपके साथ हूँ मैं मोनिशा
1: और मैं आराध्या। और स्वीकार करिए हमारा ये प्यारा सा
0: नमस्कार। वैसे किसी भी खूबसूरत सफर की शुरुआत अगर एक प्यारे से गीत से हो जाए तो माहौल और भी शानदार बन जाता है। तो चलिए शाम को थोड़ा सुरीला बनाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
0: 0542227658।

0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: दोस्तों, क्या आपको याद है जब पहली बार ये सोशल मीडिया हमारे जीवन में आया था, तब हम उस वक्त क्या महसूस करते थे? हम सभी इसे लेकर कितने एक्साइटेड थे ना, हर बार अपने साथियों से इसके नए नए फीचर्स की बातें करते थे।
4: बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन कब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया पता ही नहीं चला। बल्कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इसकी हमें लत लग गई है।
3: पहले पोस्ट करते थे खुशी के लिए, फिर करने लगे लाइक्स के लिए, फिर रात को सोने से पहले गिनने लगे कि कितने लाइक्स आए। कब ये सब काम करते करते हमारी नींद कहीं गायब ही हो गई।
4: हाँ, और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि सबकी यही कहानी है। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, जब आप किसी भी सोशल मीडिया पर स्टोरी देखते हैं, जैसे कोई कहीं कहानी कहीं घूम रहा है, या कोई नई कार ले रहा है, कोई हर रोज परफेक्ट लाइफ जी रहा है, तब आपके मन में क्या आता है? खुशी या हल्की सी बेचैनी, वो फीलिंग जो कहती है मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं।
3: और क्या आप जानते हैं कि उस फीलिंग को कहते क्या है? उसे कहते हैं फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये आज की सबसे बड़ी बीमारी है दोस्तों, जो दवाई की दुकान में भी नहीं मिलती लेकिन आपके फीड में हर रोज मिलती है।
4: आपने कभी सोचा है, आज मोबाइल सिर्फ एक मशीन ही नहीं बल्कि हमारी दुनिया बन चुका है। सुबह आँख खुलते ही नोटिफिकेशन और रात को सोने से पहले एक आखिरी स्क्रॉल। दोस्तों, खबरें, मनोरंजन, पढ़ाई, करियर, सब कुछ अब एक सोशल मीडिया के आसपास घूमने लगा है।
3: लेकिन सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया हमें जोड़ रहा है या धीरे धीरे हमें हमसे दूर कर रहा है? हमारा समय, हमारी शांति और हमारा असली जीवन छीन रहा है। पहले हम सिर्फ टाइम पास के लिए सोशल मीडिया चलाते थे, लेकिन अब लगता है जैसे बिना फ़ोन के कुछ अधूरा सा है। कभी घंटों निकल जाते थे घूमने दोस्तों के साथ, लेकिन अब देखिए सोशल मीडिया के कारण हम कितना स्क्रॉल करते हैं हमें पता ही नहीं चलता।
4: लेकिन ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, दूसरा पहलू ये भी है, इसने युवाओं की आवाज़ दी है। आज कोई भी अपना हुनर दुनिया तक पहुंचा सकता है। कोई गाना गाकर वायरल हो रहा है तो कोई छोटे गांव से पढ़ाई के टिप्स देकर लोगों की मदद कर रहा है।
3: यानी अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया अवसर भी है, पहचान भी और शक्ति भी। दोस्तों, सही इस्तेमाल करके नए स्किल्स, वीडियो एडिटिंग, इंग्लिश और करियर की जानकारी से लेकर बहुत सारी चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं।
4: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। तुमको याद है, हम जब छोटे थे हमारे पास फ़ोन नहीं था, तब हम अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेलते थे, खूब मस्ती करते थे। लेकिन अब सब ऑनलाइन है, गेम ऑनलाइन खेलते हैं, दोस्तों से बात भी ऑनलाइन करते हैं।
3: सोशल मीडिया ने हमें कनेक्ट तो किया, लेकिन क्या हम सच में कनेक्टेड है? इसकी फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, जैसे फेक न्यूज़, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग और गलत कंटेंट। इनका असर हमारे ऊपर बहुत गहराई से पड़ रहा है।
4: अब सवाल यह है कि आखिरी इसका समाधान क्या है?
3: तो इसका जवाब है संतुलन। सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, पर पूरी ज़िंदगी नहीं। थोड़ा समय परिवार को दीजिए, दोस्तों से आमने सामने बात कीजिए, अपने सपनों पर काम कीजिए और कभी कभी मोबाइल से दूरी बनाकर खुद से भी मिलिए।
4: ये तो तुमने सही कहा। देखो, मेरा आधा से ज़्यादा समय तो बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में ही चला जाता है, लेकिन अब से मैं इसका इस्तेमाल हिसाब से करूँगी।
3: बिल्कुल दोस्तों, तकनीकी बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। सोशल मीडिया एक साधन है जिससे आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया बदल भी सकते हैं। बस ज़रूरत है समझदारी की, जागरूकता की और सही दिशा की।
4: तो दोस्तों, क्या आप सोचते हैं क्या सोशल मीडिया युवाओं के लिए वरदान है या चुनौती? आप अपना जवाब हमें बता सकते हैं।
3: वैसे जानकारियों का ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अगर इसमें मनोरंजन का तड़का लग जाए तो इस सफर अधूरा नहीं लगता। क्या कहती हो?
4: बिल्कुल, तो चलो बिना देरी के सुनवाते हैं ये गीत।

0: क्या बात है, कभी कभी ये गाना मन को वहां ले जाता है जहां सब कुछ सुकून से भरा और रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल, पर ये सुकून आजकल मिलता कहाँ है? घर में स्क्रीन है, बाहर ट्रैफिक है और ऊपर से ये धुआं।
1: बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, कि कैसे हम एक वर्चुअल दुनिया में हैं, इतने खो गए हैं कि असली दुनिया की तरफ देखना ही भूल गए।
0: ये तो है, और वो असली दुनिया आज हमसे कुछ मांग रही है। ये बताने से पहले मैं आपसे दोस्तों कुछ साझा करना चाहूंगी। मेरे घर के पीछे एक आम का पेड़ था, बचपन में उसी पर मैं चढ़ा करती थी, उसी पर मैं खेला करती थी, उसकी छाया में दोपहर करती थी मेरी, और हम गर्मियों में वो पेड़ जैसे पूरे मोहल्ले का सुकून था। पड़ोसी आते, दादी वहाँ बैठती थी, बच्चे खेलते, और फिर एक दिन वो पेड़ नहीं रहा। नई बिल्डिंग जो बनानी थी तो काट दिया गया, और उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि कुछ चीज़ें जब चली जाती हैं तो वो वापस नहीं आती।
1: बिल्कुल दोस्तों, जैसे हमने आपसे कहा था कि ये असली दुनिया है, वो हमसे कुछ मांग रही है, तो चलिए जानते हैं कि वह आखिर क्या मांग रही है।
0: तो दोस्तों, हम यह जो धरती है ना हमारी, वो हमसे कह रही है कि बस अब और नहीं, अब वो समय दूर नहीं जब ये पूरी तरह बीमार हो जाएगी और तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
1: हाँ, सच में इसमें हम युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम ही से है बदलाव आएगा।
0: और देखो, बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस एक छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे प्लास्टिक बैग्स की जगह हम कपड़े का थैला इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: और इसके साथ ही एक पौधा लगाइए छत पर, गमले में, आंगन में, बस एक एक पौधा, वो एक दिन पेड़ बन जाएगा और किसी की छाया बनेगा, वो आपकी लेगेसी होगी।
0: और प्लास्टिक को ना कहिए, अगली बार जब बाजार जाएं कपड़े का थैला लेकर जाएं, बस इतना ही करना है। लेकिन अगर हर युवा ये करे तो करोड़ों प्लास्टिक बैग्स कम होंगे। और एक ज़रूरी बात, वही सोशल मीडिया जिसकी बात हमने की, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उस पर हम एक पोस्ट कर सकते हैं, एक रील बना सकते हैं, एक मैसेज दे सकते हैं पर्यावरण के लिए, जो एक इंसान को भी जगा दे तो काफ़ी ही है। और ये है इसका सही इस्तेमाल।
1: वाह, क्या बात कही है तुमने, आज से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगी।
0: बिल्कुल, आज से ही शुरुआत करते हैं, और दोस्तों आप भी करिए, क्योंकि एक छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: अच्छा दोस्तों, अभी अभी हमने आप बात की थी सोशल मीडिया की, पर्यावरण की, और यह सब करते करते एक नज़र घड़ी पर डाली तो सोचा यह तो टाइम है, जो टाइम है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST।
0: क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? क्योंकि वैसे तो हम सब जानते हैं कि IST है क्या, और हम उसको हमेशा अपनी घड़ी में देखते हैं।
1: लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर यह IST आया कहाँ से है, यह तय किसने किया, और यह क्यों पूरे इंडिया में एक ही टाइम ऐसा गए?
0: तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया इतना बड़ा देश है, पूरब से पश्चिम तक करीब 3,000 किलोमीटर, फिर भी अरुणाचल प्रदेश में भी वही टाइम और गुजरात में भी वही टाइम, जबकि सूरज अरुणाचल से निकलता है और गुजरात में जब निकलता है तो 2 घंटे की दूरी होती है, 2 घंटे की देरी होती है।
1: लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, असल में आज जिस IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम अपनी घड़ी में देखते हैं, उसकी शुरुआत अंग्रेजों के दौर में हुई थी।
0: एक समय ऐसा था जब भारत में कोई एक तय समय नहीं हुआ करता था, हर शहर अपना अलग अलग समय मानता था। मुंबई का समय अलग, कोलकाता का समय अलग, और मद्रास यानी आज के चेन्नई का अलग।
1: क्योंकि उस दौर में लोग सूरज के हिसाब से समय तय करते थे, जहां सूरज जल्दी निकलता वहां वो घड़ी भी जल्दी मानी जाती।
0: लेकिन फिर आया रेलवे का दौर, जब ट्रेनें चलने लगी तो सबसे बड़ी समस्या हुई समय की।
1: सोचिए, अगर मुंबई से ट्रेन चली और हर शहर समय अलग अलग पहुंची, तो ट्रेन कब पहुंचेगी, टिकट पर कौन सा समय लिखा जाएगा और लोग क्या समझेंगे?
0: यहीं से ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसे समय की जो पूरे देश में एक जैसा हो। फिर

0: अंग्रेज़ों ने भारत के बीचों बीच एक जगह चुनी, इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर, क्योंकि यह लगभग भारत के बीच में पड़ता था।
1: और वहीं से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा यानी 82.5 ईस्ट
0: लॉन्गिट्यूड को चुना गया, जो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के लिए माना गया उसको। इसी के आधार पर तय हुआ पूरा भारत GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलेगा, यानी जब लंदन में सुबह 6 बजेंगे तो इंडिया में सुबह के 11:30 हो चुके होंगे।
1: तो दोस्तों, अब जब भी आप अपनी घड़ी में IST देखें तो याद रखिएगा,
0: ये सिर्फ समय नहीं है बल्कि भारत जैसे विशाल देश को एक लय, एक व्यवस्था और एक पहचान में बांधने वाली चीज़ है। एक ऐसा समय जो अरुणाचल की पहली किरण से लेकर गुजरात की आखिरी शाम तक पूरे देश को एक साथ जोड़ती है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: दोस्तों, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सही संगति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही लोग आपको सही दिशा दिखाते हैं। और अगर अपनी भाषा को बेहतर बनाना है तो शब्दों से दोस्ती कर लीजिए। दोस्तों, क्या कहते हो राधिया?
2: बिल्कुल, क्योंकि अच्छे शब्द ही सिर्फ हमारी शब्दकोश ही नहीं बल्कि हमारी पर्सनालिटी को भी निखारते हैं।
1: बिल्कुल, तो चलिए आज के कुछ खास शब्दों से रूबरू होते हैं।
2: दोस्तों, हमारा आज का हिंदी का शब्द है अभियान। अभियान यानी किसी अच्छे उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलकर किया गया हुआ प्रयास या मुहिम। जब लोग किसी बदलाव के लिए एक साथ आगे आते हैं तो वहीं एक अभियान शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, स्वच्छता अभियान में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इसके पर्यायवाची हैं मुहिम, प्रयास, पहल, आंदोलन या योजना।
1: वाह, मतलब अभियान सिर्फ एक काम नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने वाली सोच है। और अब बढ़ते हैं आज के इंग्लिश के वर्ड की ओर। और हमारा इंग्लिश का वर्ड है ज़ेलस, जिसकी स्पेलिंग है ZEALOUS, ज़ेलस। अब सुनने में ये थोड़ा जेलस जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों इसकी मीनिंग जो है ना वो बिल्कुल अलग है। जेलस का मतलब जलन महसूस करना होता है, वहीं ज़ेलस का मतलब होता है किसी काम में बहुत ज़्यादा पैशनेट, एनर्जेटिक और डेडिकेटेड होकर करना। इसके सिनोनिम्स होंगे पैशनेट, डेडिकेटेड या फिर डिवोटेड। यानी अगर कोई इंसान पूरी जोश और मेहनत से किसी अभियान का हिस्सा बने तो उसे ज़ेलस पर्सन कहा जा सकता है।
2: एग्जैक्टली, यानी एक शब्द सिखाता है कि मिलकर आगे बढ़ना और दूसरा सिखाता है पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ना।
1: शब्दों का ज्ञान तो हो गया, लेकिन इतिहास जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि बीते समय की कौन सी घटनाओं ने आज के समाज में और हमारे जीवन को आकार दिया है।
2: बिल्कुल, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या खास दर्ज है, तो चलिए बिना देरी के बताते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन 1739 में फारस के शासक नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच हुए समझौते के बाद अफगान क्षेत्रों पर मुगलों का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया।
1: और दोस्तों, आज ही के दिन यानी कि 26 मई को 1926 में लेबनान ने अपना संविधान अपनाया, जिसने देश की आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी।
2: और 1937 में दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और कॉमेडियन मनोरमा का जन्म हुआ, जिनके जन्म के बाद हजारों फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है।
1: दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, तब तक आइए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अब बारी है उसका जिसका आपको इंतजार बेसब्री से हो रहा था, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे।
1: होगा क्यों नहीं, आखिर ये हमारे श्रोताओं को देता है मौका सीधे हमसे जुड़ने के लिए, यानी कि हमारे प्रश्नों का सही जवाब देकर विनर्स बनने का मौका देता है ये।
0: तो चलो बिना देरी के बताते हैं आज का प्रश्न।
1: बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हमने कल आपसे जो प्रश्न किया था उसका सही जवाब क्या है और किन साथियों ने इसके सही उत्तर दिए हैं।
0: तो दोस्तों, कल हमने आपसे प्रश्न किया था कि भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF टोल सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया था, जिसका सही जवाब है गुजरात।
1: और जिन साथियों ने सही जवाब दिए हैं उनका नाम है रवि मौर्य, सेमरौल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा MP से हैं, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। इसके साथ ही ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से जिन साथियों ने सही जवाब दिए हैं उनके नाम हैं प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर MP से हैं, सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, नेपानगर MP से हैं, प्रभुदयाल शूदे, शिवा बसंती बाई और गणेश शूदे। इसी के साथ संगीत की नगरी खंडवा से हैं श्यामा बाई रायकवार। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब बारी है आज के प्रश्न की, तो हमारा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा आज का प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र थे। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र थे।
0: इस सवाल का जल्दी से उत्तर देकर बन जाइए आप भी विनर्स।
1: आप अपने आंसर हमारे इंस्टा हैंडल youthairvaranasi पर भेज सकती हैं
0: या फिर हमारी ईमेल आईडी youthairvns@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
1: दोस्तों देर मत कीजिए, जाइए इसका आंसर दीजिए और बन जाइए विनर्स। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि देखिए रोजगार सूचना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हम युवा के लिए रोजगार बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको बिना देरी के बताते हैं आज की रोजगार सूचना।
0: अब बारी है रोजगार सूचना की, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की तरफ से आई है।
1: जिसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सहायक लोको पायलट यानी कि ALP पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती 11,127 पदों के लिए की जा रही है। RRB आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 14 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
0: इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु 30 वर्ष है।
1: और इससे जुड़ी और जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। और कार्यक्रम में आगे और भी जानकारी आपको देंगे, तब तक आइए सुनाते हैं आपको ये गीत।

0: तक।
1: दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आजकल लोग एक दूसरे से कम और स्क्रीन से ज़्यादा बातें करने लगे हैं?
2: घर में हम सब साथ तो बैठे होते हैं, लेकिन नज़रें मोबाइल पर होती हैं। दोस्तों से बात कम होती है, और होती भी है तो अब चैट पे।
1: और

0: यही वजह है कि आज इंसान ऑनलाइन तो बहुत कनेक्टेड है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं अकेला भी महसूस कर रहा है। इसलिए आज के समय में डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी हो गया है, यानी कुछ समय के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार स्क्रीन देखने की आदत से दूरी बनाना।
1: अब इसका मतलब ये नहीं कि तकनीक गलत है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हम तकनीक का इस्तेमाल कैसे करें, ना कि तकनीक हमारा इस्तेमाल करने लगे।

0: ना कि तकनीक हमारा इस्तेमाल करने लग जाए।
1: पहले हम खाली समय में फोन उठा लेते थे, लेकिन अब थोड़ा समय खुद को दीजिए, क्योंकि इससे हम खुद से जुड़ते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि जब हम स्क्रीन से जुड़ाव महसूस करते हैं तब हम खुद को करीब नहीं पाते।
1: परिवार से बातें, दोस्तों के साथ हंसी, किताबों की खुशबू, सुबह की खुली हवा, ये सब भी जिंदगी का हिस्सा है। तो दोस्तों, दिन का थोड़ा समय खुद के नाम कीजिए, फोन को थोड़ा देर के लिए साइलेंट रखिए और जिंदगी की असली आवाज सुनिए।
0: क्योंकि हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता, लेकिन आपका सुकून बहुत जरूरी है।
1: और अब हमें भी एक नोटिफिकेशन मिल चुका है कि आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम दिया जाए। उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपको सोचने पर जरूर मजबूर करेगी कि डिजिटल दुनिया के साथ साथ अपनी जिंदगी से जुड़ रहना कितना जरूरी है। और जाने से पहले बस इतना ही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए, अपने के साथ समय थोड़ा समय निकालिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ ही मैं मोनिशा
0: और मैं आराध्या।
1: मुलाकात होगी कार्यक्रम के किसी अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना प्रोग्राम युवावाणी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रसारित भोजपुरी में समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नगर निगम लखनऊ का 413 करोड़ रुपया लागत का कई गो परियोजना के लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भेलें। यह मौका पर वहां के कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमनी का नगर ईज ऑफ लिविंग के दृष्टि से स्वच्छ, सुंदर आ सुरक्षित शहरन के रूप में अपन पहचान बना रहा हवें। श्री योगी स्वच्छता रैंकिंग में नगर निगम लखनऊ के नंबर एक पर ले आइले का संकल्प दोहरौलें।
1: आज स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त होता है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे नंबर एक पर लेके आना है। हम लोगों ने 17 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध करवाए हैं। नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में भी कुल मिलाकर के 65 लाख गरीबों को एक एक आवास। जनता का पैसा जनता के लिए और जनता के हित में खर्च होगा, यही मोदी जी का विजन है, यही मोदी जी की प्रेरणा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का आज केंद्र में 12 साल पूरा हो गए। यह मौका पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एगो सोशल मीडिया पोस्ट में एक भारत के सभ्यता आ विकास यात्रा का बदलाव लावे वाला दौर बतौन है। प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया पर अपने बधाई संदेशा में कहने कि यह 12 साल में गरीब कल्याण शासन का प्राथमिकता बनल, अंत्योदय आत्मनिर्भरता के शक्ति में बदलल आ जन भागीदारी विकास के जन आंदोलन का रूप दिहले हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में चिकित्सा आ स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यन को समीक्षा कैलें। यह मौका पर वहां के कहने की सरकारी अस्पतालन में इलाज, जांच, दवाई आ आपात सेवा का गुणवत्ता लगातार बढ़िया होके के चाहे। मुख्यमंत्री मातृ मृत्यु दर आ शिशु मृत्यु दर में औरियो कमी ले आवे बदे संस्थागत आ सुरक्षित प्रसव व्यवस्था के मजबूत बनौले पर जोर देने। इससे पहले मुख्यमंत्री काली लखनऊ में कारागार विभाग आ कृषि विभाग के कामकाजों को समीक्षा कैले। एगो रिपोर्ट।
2: कारागार विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से

0: कारागारों को नई पहचान दी जाए। उन्होंने ओपन जेल की परिकल्पना को उपयोगी बताते हुए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि खरीफ 2026 की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। श्री योगी ने जून माह से सभी विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपालों के साथ किसान मेले के भी आयोजन के निर्देश दिए, ताकि किसानों को योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और प्रगतिशील खेती की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रदेश में अलग अलग एक्सप्रेसवे पर भइल दुगो बढ़न सड़क दुर्घटना में करीब 10 यात्रियों के मौत हो गईल, वहीं कई गो और यो यात्री घायल हमें। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से गोरखपुर जा रहल बस आज उन्नाव के औरस पुलिस स्टेशन के लगे बेकाबू होके पलट गईल। ए दुर्घटना में 6 जने के मौत हो गईल आ करीब 10 जने घायल हमें। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज तड़के बाराबंकी के लगे एगो कार खड़ा गाड़ी से लड़ गईल। ए दुर्घटना में कार में बैठल 4 जने के मौत हो गईल। अयोध्या के श्री राम मंदिर के राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा का पहला सालगिरह आज श्रद्धा आ उत्साह के साथे मनावल जा रहल हो। एगो रिपोर्ट।
2: सुबह 4 बजे मंगला आरती और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान श्री राम, माता सीता और राम परिवार का अभिषेक किया गया। पूरे दिन विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दोपहर में भगवान को 56 भोग अर्पित किया गया। राम मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत और महंत मौजूद हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: गोरखपुर के साथ ही प्रदेश के कई गो और जिलन में बीतल रात आंधी तूफान के साथे भइल बरखा के बादे आज दिन में तेज घाम निकरल। राज्य में अजुओ पूरा दिन लोगिन के गर्मी या लूह का सामना करे के पड़ल। मौसम विभाग प्रदेश में आज आ बिहनहु कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़े का संभावना जतौले हो। विभाग बिहने तक खातिर दिन में भीषण लूहो का रेड अलर्ट जारी कैले बा। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।

मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में बैंकिंग कार्य में सावधानियां विषय पर डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से रामकृष्ण मिश्र की बातचीत के अलावा सुनिएगा महेंद्र सिंह यादव का और साथियों का गाया लोकगीत। 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम की कलाकार होंगी आबिदा परवीन। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा आशुतोष भट्टाचार्य का ध्रुपद गायन। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे 7:31 पर रसरंग और 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें कल यानी 27 मई सन 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल रात 10 बजे वट वृक्ष कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में मिट्टी में जीवांश का महत्व विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में मधुमेह में स्वास्थ्य की देखभाल विषय पर लीजिएगा जानकारी, विशेषज्ञ होंगे

0: டாக்டர் பிரவீன் குமார் பாண்டிய. श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ आप सुनते हैं प्रातः 6:40 पर. गुड मॉर्निंग बनारस, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7:00. शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर, दिन में 12:45 पर और रात 10:30 पर सुनेगा पंडित वी जी जोग का वायलिन वादन. NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12:00. सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत दिन में 12:30 पर और रात 8:00 सुनिएगा पल्लवी पांडे के गाय भजन. दिन में 1:15 पर गिरिलक्ष्मी कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता में महिलाओं की भूमिका विषय पर शिखा बर्मन की वार्ता का प्रसारण होगा. साथ ही लीजिएगा गृहलक्ष्मी टिप्स, सेहत ज्ञान और सुनिएगा गीत संगीत. युवा साथियों का प्रोग्राम युवा वाणी का प्रसारण होगा रोज की तरह शाम 5:15 पर. शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में औद्यानिक फसलों का जैविक नियंत्रण विषय पर डॉक्टर सुहानापुरी गोस्वामी से सतीश कुमार यादव की बातचीत के अलावा सुनिएगा मंगला विश्वकर्मा का गाया लोकगीत. इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर. गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर. तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण. आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है. आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
1: डायल कीजिए
3: 0542227658.
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658.
0: कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म किक का गीत. आवाज और गीतकार योयो हनी सिंह और जस्मीन, संगीत योयो हनी सिंह का.

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म खाकी से। आवाज सुनिधि चौहान की है, गीतकार हैं समीर और संगीतकार राम संपत।

0: आकाशवाणी एट 90
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण नवदिल्ल्यां क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायाः अध्यक्षता कृता। क्वाड समूहेन स्थिर सुरक्षित ऊर्जा स्वीकरणाय प्रतिबद्धता प्रकटिता। भारत अमेरिका देशौ अद्य महत्वपूर्णानां खनिजानां दुर्लभानां भूतत्वानां च आपूर्तिं खननं प्रतिक्रियां च सुरक्षितं कर्तुं प्रमुख द्वैपाक्षिक संरचनायां हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः राजस्थानस्य सांचो सीमा स्थाने गतवान् राज्यस्य सीमक्षेत्रेषु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 इत्यस्य आरंभम अकरोत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाः प्ले ऑफ क्रीडायाः क्वालिफायर 1 क्रीडायां गुजरात टाइटंस दलं गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं धर्मशालायां सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां क्वाड विदेशमंत्रिणां सभायाः अध्यक्षः अभवत्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेशमंत्री बेनी वोंगः, जापान देशस्य विदेशमंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो च अस्यां सभायां भागं भजितवन्तः। सभायाः अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनम् अभिसंबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः क्वाड राष्ट्रेषु सहयोगं सुदृढीकरणाय परस्परं साहाय्यं कर्तुं च अवधानं प्रदत्तवान्। सः अवदत् यत् क्वाड देशाः मुक्त समाजाः सन्ति, ये समृद्धेः विकासस्य च अन्वेषणे नवान्वेषणे च सृजनात्मकतां पोषयन्ति।
3: Economic resilience should be promoted.
4: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: डॉक्टर जयशंकरः अवधानं प्रदत्तवान् यत् भारत प्रशांत प्रदेशः वैश्विक वृद्धेः स्थिरतायाः च चालकः भवेत्। सः अवदत् यत् समुद्रीय लोकतंत्र रूपेण, बहुवादी समाज रूपेण, आपण अर्थव्यवस्था रूपेण च क्वाड राष्ट्राः स्वतंत्रं मुक्तं च हिंद प्रशांत प्रदेशं प्रति दायित्वं वहन्ति। स्वस्य वक्तव्ये अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अकथयत् यत् संयुक्त राज्य

0: पंचो राम राम।
1: और गौरी
2: हाय मट्टी भाई।
0: अरे गौरी कहीं की देखत बाऊ इतना जौन हो कि भगवान धूप कैले बायन कि खेती किसानी में जौन हो कि हालत खराब भइल बा भैया लोगन के। कितनों खेत सिंचात बा, कितनों पानी दियात बा, लेकिन सवेरे दियात बा साझी के सूख जात बा। और यह हाल मनई का भइल बा कि मनई भी गर्मी से बेहाल भइल बा। और कहीं कि किसान भैया लोगन के सबके भैया लोगन से घोराए घोराए के कहीं कि भैया देखा हो धूप तो इतना तेज पड़त बा कि और बहुत जरूरी ना होके तो खेती कियारी की तोरे बिना सुबह शाम ही जाए।
2: ये बात तो बिल्कुल ठीक कह लेनी मरती बहन। और इतना गर्मी में अगर ज़रूरत ना भी हो तो बाहर निकल ही के ना चाहिए। बहुत अगर ज़रूरी कोनो काम हो तब गर्मी में बाहर निकला और हो सके तो सुबह शाम में ही अपन काम कर ले।
0: अरे सुबह शाम में काम करें लेकिन जरूरी बात है निकला हो के चाहिए। निकले से पहले जौन है ई कह लें कि अपने के जौन हो खूब बढ़िया सा जौन हो कि कपारे पचरों गमछा बांध लें, छाता ले लें और कहीं कि बोतल का पानी जरूर साथे में रख लें, कहे से कि घटर घटर प्यास लगत बा दू कदम कैले पे। तो ऐसे में जौन हो कि अपने सावधानी के अगर बहुत जरूरी हो तो साथ निकलें। और कह जला न कि भाई तई तई सावधानी बरतल जा, तई तई जौन हो परहेज कर जा तो बड़ी बड़ी परेशानी से बचल जा सकेल। यानी कि जौन हो मनई अगर समझदारी से रहे, सतर्कता से रहे तो बड़ी बड़ी परेशानी से भी वो बच सकेला।
2: और कहल जाला ना कि सावधानी हटल तो दुर्घटना घटल। बहुत जगह भी ऐसे जैसे रोड पे अगर आदमी चला था मोटर गाड़ी से तो हेलमेट लगा के, या फिर पैदल भी चला था तो बाएं तरफ से चला के चाहिए। तो रोड और सड़क पे ऐसे चला समय भी यातायात के नियम का पालन करके सावधानी से चला के चाहिए।
0: कहलू है बड़ा पते का निके का बात कि भाई सावधानी से चले के चाही। और कहलू है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और सावधानी तो हर जगह बरतब जरूरी बा, चाहे घरे से बहरे निकला, मोटर गाड़ी से बहरे निकला, या खैला पिला में बाय या अपने खेती किसानी में बाय। कहल जला ना कि देखा अब जौन पहले खेती किसानी रहल अब उनमें बड़ा परिवर्तन आ गई बा। परिवर्तन ए बात का आ गई बा कि देखा पहले रहे कि भाई खेते से ट्रैक्टर से लोग जुताई कह दे, देसी खाद लोग दे, हाँ बीजन का समय समय पर अपन दे। लेकिन अब जब खेती किसानी में परिवर्तन आ गई बा, तरह तरह का जौन हो कि नई बीज आ गई ना, नया कीटनाशक आ गई ना, नई नई फसल आ गई नी, तो सतर्कता ये बात का हो गौरी ना कि जैसे कुछ भैया लोग

0: हुआ कि देखा जब कीटनाशक दवाई जो डालन खेते में तो ऐसा है जो कि खुलल चेहरा से या हाथे से डाल देना, तो इसमें क्या करे के चाहिए?
1: तो इसमें कभी कभी ये भी होला कि अगर हवा चला था और वो कीटनाशक का छिड़काव कर थे तो उनके नाक में आँख में जा सकला, उससे उनके शरीर के नुकसान कर सकला, आँख नाक के नुकसान कर सकला। तो अपन नाक के कपड़ा से अच्छे से ढक के या आँख के चश्मा उश्मा लगा के ढक के और हाथ में दस्ताना पहन के तब छिड़काव करके जितना से हो सके अपने आँख नाक के हाथ के बचा के छिड़काव करके।
0: इसके साथ साथ ये भी गौरी करे के चाहिए ना कि जैसे कुछ भैया लोग हुआ कि बिना जनले सुनले जो है कि फसल के बिया ऐसे ही जो खेते में डाल देते बाड़े, हाँ इसमें भी सावधानी बरत के जरूरी है भैया लोगन की, भाई जौन भी आप जो है बीज डालत हुआ या खाद डालत हुआ उकरे बारे में भी जो वैज्ञानिक भैया लोग हुआ उनसे बातचीत करें कि भाई हमें ई बीज डालना हो। तो कहीं ना कि आजकल तो देखा इतनी नई नई तकनीक आ गई हो कि थोड़ा भी परिश्रम कैले से या थोड़ा भी ऐसा बीज आगल हुआ ऐसा तकनीक आ गई हो कि कम परिश्रम से भी हम अच्छी अच्छी फसल उगा सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इनमें भी सावधानी बरते के हो, इनमें भी सचेत रहे के हो कि कैसे हम कम समय में कम पैसा में अपने खेती किसानी में अच्छी से अच्छी पैदावार कर सकीला।
1: और ओकर कोनो जिन जो कीटनाशक खरीदत हैं ना पैकेट का चीज़ खरीदत हैं तो ओकर दाम देख ले कि जितना दाम लिखल है उतना दाम को दुकानदार दे सके नहीं। और दूसरी बात कि ओकर समाप्ति तिथि जो लिखल है उस हो कि नहीं, अगर समाप्ति तिथि के बाद को देता है तो सामान न ले, तो ये सब भी अपन जाँच परख के लेवे के चाहिए।
0: बिल्कुल निके निके बात कर थू, सावधानी के बात करूँ, लेकिन हम लोग कहें कि कुछ जरूरी संदेश सुन ले जाए और फिर बात कही कहल जाए।
1: सुनवा
2: सर 50,000 एडवांस।
3: और इतना कैश तो हम नहीं
4: रहे और आज बैंक भी बंद है।
5: इलाज है, डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढोल।
4: लेकिन
5: अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने क्योंकि RBI करना है क्योंकि
6: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
7: और को भी सिखाओ।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
9: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
8: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: गौरी कहीं कि अब भैया लोगों के हम लोग जो है कि एक नीके का बतकही सुनवा चलो थी ला।
2: तो देखा एक बातचीत है, बैंकिंग कार्यों में का सावधानी रखा के चाहिए, इपे डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से बतियात है रामकृष्ण मिश्र।
1: हाँ तो कहीं ना भैया कि लोग जरूरी बतकही बाय कि जरूर ध्यान से सुना गुने।
3: प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी, आप सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक रहल हूँ। आज आपसे जानल चाहत कि जे भी किसान भाई या जे भी आम जनमानस के लोग बैंक से जोन भी लेन देन करत हुआ, बैंक में खाता खुलवावत हुआ या अन्य भी तरह का जोन भी डिजिटल पेमेंट जोन होला, ये सब करत हुआ तो ओ घड़ी उनके कौन कौन सावधानी बरते के चाहिए।
4: आकाशवाणी के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कृषक बंधुओं, मेरी तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और नमस्कार। जो विषय है, जो प्रश्न है, दोनों बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि ज्यादातर आजकल अखबार में आपको ये शिकायतें या समाचार छपती हुई मिल रही हैं कि लोगों को बैंक के साथ परेशानी है, लोगों को डिजिटल पेमेंट में परेशानी है, जिससे उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम यहाँ अपनी बात एकदम शुरू से शुरू करेंगे। हम ये मान के कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसका खाता हो भी सकता है बैंक में और खाता नहीं भी सकता।

0: शुरू करेंगे जिसका नहीं है वहां से। तो सबसे पहले आपकी आपको बैंक से जुड़ने के लिए जो जरूरत होती है, वो पहला एक खाता खोलने के। खाता खोलने के पहले आप ये जरूर देख लें कि अपने घर से नजदीक जो शाखा है वहां पर खाता खोलिए, इससे आपको समय बचेगा। और खाता खोलने से पहले उस बैंक के बारे में पता कर लीजिए कि आजकल फर्जी बैंक खुल रहे हैं वो तो नहीं है, कोई राज्य सरकारी बैंक या कोई मान्यता प्राप्त बैंक प्राइवेट का इस तरह से बैंक है, जिसमें आपके साथ धोखाधड़ी की संभावना शून्य हो जाएगी। जब आपने ये निर्धारित कर लिया कि आपके घर के पास कौन सा बैंक है, तो उस बैंक में आप जा करके अपना खाता खोलने को सोचेंगे। सबसे पहले खाता खोलने के में जो परेशानियां आती हैं, आप ऐसे सीधे चले जाते हैं कि साहब हमको खाता खोलना है, और वो आपसे कई कागज, कई फोटो, इस तरह की चीजें मांगते हैं, तो आपको थोड़ी झुंझलाहट होती है।
1: जी
0: तो ऐसी स्थिति में अगर आपने ये निर्णय लिया है कि आपको बैंक में खाता खोलना है, अपना या अपने घर के किसी सदस्य का या अपने दोस्त का, किसी का भी, तो उसमें थोड़ी सावधानी ये बरतिए कि आप अपने खाता खुलवाने से जाने से पहले अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी निवास प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र जो आपके पास हो, दो दो प्रमाण पत्रों में से कोई भी, उसकी फोटो कापी करा ले, कम से कम दो। फिर उसका मूल भी अपने पास रख लें। आपको जरूरत होगी दो फोटोग्राफ्स की, पासपोर्ट साइज की,
1: जी
0: जिसमें आपका चेहरा साफ दिखता रहे, या जिसका भी खाता खुलना हो उसका चेहरा दिखता रहे, तो दो आपको पासपोर्ट साइज के फोटो। अगर आप पैसा जमा करने के दृष्टिकोण से भी जा रहे हैं, उसमें जमा करना है, तो खाता खोलने के लिए वो पैसा जरूर अपने पास सुरक्षित रख लें। सबसे बड़ी परेशानी आती है पहचान देने की। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास गांव में उस बैंक का कोई भी ग्राहक हो, तो आप उससे संपर्क करिए, कहिए जरा हमारा खाता पहचान कर दे। और नहीं भी करेंगे तो आप जाइए, वहाँ ब्रांच मैनेजर या स्टाफ आपको उसकी व्यवस्था करा देंगे।
1: जी
0: एक जरूर है कि आप जिस संवर्ग से हम बात कर रहे हैं, उसमें प्रायः लोग खाता जमा करते समय पैसा नहीं जमा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने शाखा प्रबंधक को या उनके स्टाफ को ये सीधे बताइए कि सर हमको ऐसा खाता खोलना है जिसमें नगद पैसा जमा नहीं करना पड़ता।
1: अच्छा
0: ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है जिसमें खाता बिना पैसा जमा किए ही खुलता है,
1: अच्छा
0: तो
1: मानी
0: ये
1: शून्य पे।
0: शून्य पे, हाँ इसको शून्य खाता बोलते भी हैं। तो इस हिसाब से आपका खाता खुल जाएगा। और जब आपका खाता खुल जाए तो बैंक से कहिए कि वो परिचयकर्ता की व्यवस्था कर ले, जैसा भी हो
1: अच्छा
0: उस आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कोई कोई न कोई मिल जाएगा उस ब्रांच में। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हो सकता है कि आप लिखा पढ़ी करने में समर्थ न
1: ना
0: हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने ही किसी विश्वसनीय आदमी के साथ बैंक जाइए, ताकि वो आपके साथ कोई धोखाधड़ी
1: न
0: न
1: करे।
0: करे। पता चला कि कभी कभी होता है, या सुनाई दिया होगा आपको, कि खाता खुलवाने हम गए और अंगूठे का निशान दूसरे ने लगा दिया, और वो अपने नाम से खाते का संचालन
1: जी करत
0: कर
1: दे।
0: रहा है और आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि अंगूठे का निशान उसका लगा हुआ।
1: जी
0: तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आप अगर पढ़ लिख नहीं सकते, तो बैंक में जब भी जाए, चाहे खाता खुलवाने, चाहे लेन देन करने के लिए, उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा
1: कि वो
0: कि आपके
1: पढ़े।
0: साथ कोई विश्वसनीय आदमी हो जो आपके साथ धोखा न करे,
1: जी
0: और आप जितना कह रहे हैं उतना पैसा जमा कर दे, जितना पैसा चाहते हैं उतना पैसा का वो
1: निकाल
0: फार्म
1: दे।
0: भर दे, तो उससे आप थोड़ा सुरक्षित रहेंगे। वैसे बैंकों में मुख्य रूप से बचत खाता खुलता है, जनधन खाता तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर एक आवर्ती जमा होती है। आवर्ती जमा का मतलब हर महीने एक निश्चित रकम जमा करेंगे, और तो जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो वो उसकी परिपक्वता राशि आपको ब्याज के साथ मिल जाएगी। फिर एक होता है फिक्स डिपॉजिट, मतलब आप एक मुश्त एक पैसा, कोई पैसा जो आपके पास उपलब्ध हो, खाली हो, उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब अधिकतम 10 साल तक के लिए आप बैंक में जमा कर सकते हैं। यहाँ मेरी एक व्यक्तिगत सलाह है, अगर आप आवधिक पैसा जमा कर रहे हैं 1 साल 2 साल वाला, तो उसमें ये जरूर बैंक से सुनिश्चित होना कि कम से कम किस अवधि के लिए अधिकतम ब्याज दर मिल रहा है। तो इससे आपका नुकसान, जैसे मान लीजिए आपने उनसे जाके कह दिया कि 10 साल का खाता खोल दीजिए मेरा फिक्स डिपॉजिट का, और पता चला कि 10 साल, 5 साल से लेकर 10 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर वही है, तो आप क्यों 4 साल इंतजार करेंगे?
1: जी
0: आप 4 साल पहले, मतलब 5 साल या 6 साल, जब भी वो उपलब्ध हो हाईएस्ट रेट, उस पीरियड का करिए, ताकि अगले 4 साल में पैसा बढ़ के दुगना हो जाएगा आपका।
1: ज्यादा मिले तो
0: तो इस तरह से आपके आपका धनराशि ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। तो
1: माने कि ये तरह से खाता खोलने खुलवा लेना।

0: ऐसे परिचालन करें। जब लेन देन शुरू हो था बैंक में खाता खुल गल, तो ओ घड़ी कौन कौन बात का सावधानी रखें?
1: जी, अब खाता खुल गया मतलब आपका बैंक में जाने का रास्ता खुल गया।
0: जी
1: आप बैंक में जा करके अपने खाते के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकते हैं।
0: जी
1: आजकल बैंक में ये लेन देन दो तीन तरीके से होती है। पहला ये कि आप खुद खाता संचालित करें और वहाँ से पैसा जमा करें और निकालें।
0: जी
1: दूसरा ये है कि आप अपना चेकबुक ले लीजिए और चेकबुक को जिसको भुगतान देना उसको चेक दे दीजिए। तीसरा है डिजिटल पेमेंट, आजकल इसका नाम बहुत जोर शोर से चल रहा है। सामान्य भाषा में डिजिटल पेमेंट का मतलब हुआ, डिजिटल भुगतान का मतलब हुआ ऐसा लेन देन जिसमें कागज कलम हस्ताक्षर की जरूरत
0: ना
1: नहीं
0: पड़े।
1: है। ये आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टैबलेट से, इन सब मशीनों के कीबोर्ड के माध्यम से लिखा पढ़ी कर करके आप उसमें अपना लेन देन कर सकते हैं। यहाँ पर दो तीन चीज़ें जरूर ध्यान रखिए। नंबर एक, कोई भी सूचना किसी ऐसे आदमी को मत दीजिए जिसको जो उसका फायदा उठा सके। मैं अभी थोड़ी देर बाद इस मुद्दे पर बात करूंगा, लेकिन मैं अभी जरा पहले बैंक में जो लेन देन जाके करते हैं उस पर आपको आपसे दो चार बातें। सबसे पहले तो जाकर के अगर आपका पासबुक नहीं पूरा है तो उस पासबुक को पूरा करा के ये देखिए कि आपके खाते में कितना पैसा है,
0: जी
1: और आप उससे ज़्यादा पैसा उससे नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर आप निकालने जा रहे हैं तो बैलेंस पता कर लीजिए और उसके आधार पर अपना धन निकासी फॉर्म का
0: भरें।
1: भरिए और वो ब्रांच में कैशियर को या जैसी भी व्यवस्था हो वहाँ दे दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोगों के साथ क्या होता है जब हम बैंक में जाते हैं, प्रायः सबके साथ, तो वहाँ धन निकासी फार्म और जमा करने वाले फार्म पड़े रहते हैं,
0: जी
1: गड्डी के गड्डी।
0: जी
1: लोग क्या करते हैं, गड्डी उठाते हैं, अपना पैसा निकालने वाला फार्म भरा तो उसे भरा उन्होंने, ऊपर राशि लिखी शब्दों में, फिर अंक में लिखा, खाता नंबर लिखा, तारीख डाला और अपना दस्तखत कर दिया। ऐसा कतई मत करें। पूरे पैड में से एक शीट अपने काम भर के निकालिए और उसको अलग रख के भरिए। ऐसा करने से आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जब आप पूरे पैड पे लिखते हैं तो आपके विड्रॉल या आपके उस फार्म को हटाने के बाद उसके नीचे वाले फार्म पर उसके उभार पड़े रहते हैं, और अगर कोई आपके ऊपर निगाह रख के बैठा है कि इनका आज पैसा काट देना है, तो वो उसी उभार पर अपना कलम चला करके दस्तखत करके आपका पैसा बिना जानकारी के आपको निकाल लेगा। फिर जब आप जानेंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी।
0: जी
1: तो इस अभ्यास से बचिए कि पूरे पैड पर अपना पैसा निकालना या जमा करना है। फार्म भरते समय चाहे वो जमा करने वाला हो, चाहे, तारीख लिखिए, खाता नंबर लिखिए, अपना नाम लिखिए, निकाली जाने वाली या जमा की जाने वाली राशि, अक्षर और शब्द दोनों में रखिए। विशेष रूप से धन निकासी में ये ध्यान रखिए कि जो राशि लिख रहे हैं शब्दों में, उन दो शब्दों के बीच में कोई अंतर ना हो, रिक्त स्थान ना हो। उसी हिसाब से अंक में जो आप लिख रहे हैं उसमें भी कोई दो अंकों के बीच में कोई स्थान ना हो। क्यों? ऐसा करने से एक सुरक्षा ये मिलेगी आपको कि अगर कोई आदमी उस धन निकासी फॉर्म पर भी धोखाधड़ी करना चाहे और आपने बीच में उसमें काफी जगह दे
0: जगह
1: रखा
0: दी।
1: है, तो उस जगह में अपने हिसाब से बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपया निकाला और रुपया और 1,000 के बीच में पर्याप्त जगह है, तो वहां पर एक एक या दो या तीन जैसा भी खाते की स्थिति रही वो लिखेगा और उसी हिसाब से आपका पैसा निकाल लेगा।
0: 1,500 भी
1: जो
0: लिखा
1: भी कर, नहीं 500 तो
0: जी।
1: नहीं कर पाएगा क्योंकि वो 1,000 है, तो अब उसमें बीच में थोड़ी स्पेस कम होती है, लेकिन बाईं तरफ बढ़ाना सबसे आसान काम है। दाहिनी तरफ बढ़ाने में थोड़ी मुश्किल होती है, वो कलम हिल जाएगी या कुछ सट जाएंगे दोनों अक्षर। अब ये आपने एक एक जगह लिखा, 2 इंच के बाद दो लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होगी।
0: जी
1: तो
0: तो ध्यान
1: ये
0: देकर।
1: ध्यान दीजिए जी, 50,000 जब आप जमा करेंगे तो 50,000 या उससे ऊपर के लिए आपको पैन कार्ड हर हाल में देना पड़ेगा। अगर आपने खाते में लगा दिया है तो उसका नंबर उस वाउचर पर लिखना पड़ेगा।
0: अच्छा, आप पैन कार्ड के भी लेके कुछ सावधानी रखे के होला?
1: किसी भी कार्ड को के साथ सावधानी सबसे बड़ी ये है कि आप उसकी सूचना किसी दूसरे आदमी को मत दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि लोग मोबाइल पर आपसे पूछ लेते हैं कि आपका खाता नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, ओटीपी क्या गई है, इस बैंक में है, और आपने खाता दिया इतना डिटेल उसका विवरण दिया, तो आप अपने आप को फ्रॉड का शिकार होने से बचा नहीं पाएंगे।
0: माने ये डिजिटल पेमेंट के समय ज्यादा एकर समस्या आवत
1: डिजिटल पेमेंट में
0: फ्रॉड का?
1: फ्रॉड नहीं, जैसे कि मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आप 50,000 जमा करेंगे, 1,00,000 जमा करेंगे, तो उस हिसाब से निकालने की भी सीमा है, 1,00,000 से आपको विशेष अनुमति लेनी पड़ती है, तो उसमें फिर अंक बढ़ा करके वो निकाल लेगा, आपका डिटेल उसके पास आई है, और 50,000 से ट्रांजेक्शन करने लेन देन करने में आपको पैन कार्ड देना है, तो पैन कार्ड उसके पास मिल गया, वो नंबर आपका लिख के आपके साथ धोखाधड़ी कर लेगा। यही चीज सारी सावधानियां जब आप अपने खाते पर जारी चेक से भुगतान करने जा रहे हैं, चाहे अपने लें चाहे दूसरे आदमी को दें, तो ये सारी सावधानियां उसमें भी बरतिए, और उसमें कोशिश करिए कि जिसको भुगतान दे रहे हैं उसके नाम पे चेक जारी हो, और चेक के पीछे उसका नाम लिख के प्रमाणित कर दीजिए, तो उसमें कोई तीसरा पुरस्कार नहीं ले पाएगा।
0: अच्छा, डिजिटल पेमेंट के समय जो सुरक्षा का चर्चा होता रहा, तो ऊपर का विशेष ध्यान दें लोग?
1: जी, तो डिजिटल पेमेंट के पहले एक चीज और साफ कर दें आपको, जब आप खाता खोलने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति के साथ पासबुक तो आपको मिलना बहुत आवश्यक है, वो मिल जाती है, लेकिन अगर आप एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा लेना चाहते हैं तो अपना अनुरोध पत्र तत्काल संबंधित ब्रांच को जमा कर दीजिए, क्योंकि ये मिलने में कम से कम 1 दिन का टाइम लगता है, ये तुरंत नहीं मिलेगा। एटीएम 2 तरह होते हैं, एक पर आपका नाम लिखा रहता है, एक रेडीमेड होता है। रेडीमेड वाला तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यक्तिगत नाम का कार्ड हो तो वो फिर छप के आता है बाहर से, उसमें 1-1.5 महीने का टाइम लगता है, तो आप अपना अनुरोध उनको दे दें। एटीएम कार्ड जब आपको मिल गया, मैं यहाँ तीनों को समाहित करूंगा, एटीएम कार्ड को, नेट बैंकिंग को और मोबाइल बैंकिंग को। एटीएम कार्ड में 2 नंबर होते हैं, एक आगे होता है जो एटीएम कार्ड का नंबर होता है और वो लगभग 12 अंकों का होता है, अलग अलग बैंकों का है लेकिन अमूमन 12 अंक का, 12 से 16 अंक होते हैं उसमें, और उसके पीछे जब आप पलटेंगे तो 3 अक्षर का एक नंबर होता है, उसको CVV बोलते हैं। ये सबसे सिक्योरिटी, सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। ये नंबर आप किसी को मत बताइए, यहाँ तक कि अपने बेटे, नाती, पोता, किसी को भी, क्योंकि इससे लेन देन बहुत आसान हो जाता है। तो जब आप एटीएम कार्ड लेते हैं तो उसमें आपको अपना पिन, मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाना पड़ता है, वो बनाइए। उसका पूरा प्रोसेस जब आपको एटीएम कार्ड मिलेगा तो उस एटीएम कार्ड के बाद आप उस प्रोसेस से अपना पिन बना सकते हैं। ये पिन भी किसी को मत बनाइए, बताइए।
0: तो मैंने एक तरह से ध्यान रखे के हुई, जागरूक होए के हुई, तब जो है बैंकिंग के समय जो फ्रॉड या अन्य तरह का सुविधा हो ले उसे बचल जा सकता था।
1: और इन तीनों के साथ एक और चीज है, इसमें OTP आती है, 1-time password, ये किसी के साथ हिस्सेदारी मत करिए, इसको मत दीजिए, वो चाहे एटीएम कार्ड हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे नेट बैंकिंग
0: जी,
1: हो,
0: जी,
1: तो सब में।
0: तो आप अपने बीच में आई ना, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में बताऊ ना, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गौरी हो, देखा हो, बैंकिंग कार्य में सावधानी का बरतल जाए, एपी डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से बतावत रहे रामकृष्ण मिश्र। अब भैया बड़े नीके के जानकारी देना है कि भैया लोग अगर ये बात कहीं सुनने हुई हैं तो कि गुनी हैं भी अपने जीवन में, और साथ ही कहीं कि बिना देर के लिए भैया लोगों के जो हम लोग के बढ़िया सा लोकगीत सुनवा दें, तो कहीं कि महेंद्र सिंह यादव और साथ ही कहीं लोकगीत सुने, फिर आगे बात कही कही जाएं।

0: कहो गौरी,
1: हाय मट्टी भाई।
0: हम कहें कि महेंद्र सिंह यादव और साथी भैया लोगन का कितना नीके का गीत रहा है। भैया कहें कि जौन हो कि आगे का बतकही भैया लोगन से हम लोग कहल जाए कि अगले दिन का कार्यक्रम बता दे भैया के कि काल सवेरे 6:05 पर अपन खेती की बात हुई, विषय रही मिट्टी की जांच का महत्व और जानकारी दी हैं दिनेश कुमार सिंह जी।
1: और संध्या के 6:30 पर अपने कृषि जगत कार्यक्रम में विषय रहे औद्योगिक फसलों का जैविक नियंत्रण और पे जानकारी दे डॉक्टर सुहाना पुरी गोस्वामी से बतियावत हैं सतीश कुमार यादव।
0: कहीं कि भाई ये बात कही जरूर सुनी है कि अपन जौन हो कि औद्यानिक जौन फसल हैं माने जौन कहा जाला कि औद्योगिक फसल जो हैं एकर जैविक नियंत्रण कैसे कैल जा सकल है, तो ए पे बत कही यही जरूरी सुनी है। और साथ ही साथ में एक बात और हम कहीं ना गौरी कि जब भी हम लोग कहत रही ना कि भाई कड़ाके का जौन हो कि धूप बहुत तेज पड़त हुआ है, गर्मी से लोग परेशान हुआ, तो कहें कि जैसे अपन लोग परेशानी हो, मनई लोग का परेशानी हो, वैसे ही अपने जीव जंतु अपन पशु पक्षी उनकर भी देखभाल करी, उनकर भी रख रखाव करी बहुत जरूरी हो।
1: और उनके बदे कम से कम अगर कुछ ना कर सका तो घर के बाहर कहीं

0: पानी रख दे या थोड़ा दाना वाना रख दे, पेड़ पौधा पे पानी रख दे तो वो अपन से पी सकलन।
1: हाँ पी सका ना, साथ साथ में ये भी कहें कि अगर धूप बहुत तेज हो तो अपनी चन्नी जो ना हो, जहाँ पर आप अपन जो ना पशु जो बांधा ना उनके हटा के जो ना मड़ई में बांध दे या छाया कह दे, जिससे कि भाई उनकर भी स्वास्थ्य हम लोगों के प्रभावित ना करे। कहा से कह जाना कि भाई अपन खेत अपन पशु अपन लोग अगर जो ना सुरक्षित रहना अच्छे से।

0: वाला या वो कोनो मैसेज लड़की का वाला तो पे क्लिक करके ना करक चाहिए। उसे भी अपन मतलब आपका बैंक का कुछ
1: एक साथ साथ गौरी एक
0: बात हो
1: बात ये भी
0: सकता
1: हो ना
0: है।
1: कि ये मौसम में जो हो ना अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहे कि हो, खास कह के खान पान के प्रति सचेत रहे कि हो कि भाई देखा बासी खाए से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और कहें कि ताज़ा फल खाएं, ताज़ा सब्जी खाएं जैसे कि अपने स्वस्थ रहें, और ज़रूरी ना हो कि बहुत महंगा ही फल खाए के हो। इस समय देखा ना प्रकृति भी हम लोगों के मौसम के अनुसार से जो हो खान पान देला, फल फूल देला, तो देखा गाजर हो, ककड़ी हो, खरबूजा हो, तरबूज हो, बहुत कुछ ऐसा मिलत हो कि जो कि खा पी के भैया हम लोगों स्वस्थ रह सकेला। और खाली अपने काहे खाएं, भौजी लोगों के भी खियावें, बच्चन लोगों के भी खियावें, और लइकन बच्चन पर विशेष ध्यान रखें कि ये गर्मी के समय में उन्हें बाहर का सामान न खाए दे। काहे से कहा जाए ना कि लेकिन बच्चन भाई उनकर मानता नहीं मन और तुरंत उन्हें खाए पिए के चाहे लगा ला, तुरंत कोनो चीज़ देके ललचा लगाना, तो ऐसा ना करें, अपने बच्चन पर विशेष ध्यान दे ये गर्मी के समय में उनके जोन हो खिला पिला कर जोन हो। और अपने भी तो कहें कि अब कार्यक्रम का हम लोग का समय भी बीतल चल जाता हो, भैया लोग से विदा लोग का समय आ गया तो आवा चल जाए,
0: जो
1: पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज में फिल्म खुदगर्ज का गीत। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और धुन तैयार की है राजेश रोशन ने।

हिमलता और जसपाल सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म नदिया के पार का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.5 मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: मीडियम वेव 241.5 चैन मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार विनोद कुमार सोनकर, विश्वास सोनकर पुत्र विनोद कुमार सोनकर, ग्राम परमापुर टेड़वा थाना कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर के निवासी हैं। ये 24 अप्रैल सन 2026 से लापता हैं। विश्वास सोनकर के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 27 वर्ष, लंबाई लगभग 165 सेंटीमीटर, सामान्य शरीर है, रंग गेहुआ है, चेहरा गोल है, इनके बाएं आंख के नीचे कट का निशान है। ये हिंदी और भोजपुरी भाषा बोल लेते हैं। ये सफ़ेद हाफ शर्ट, ब्लू जीन्स पैंट, गमछा, लाल चप्पल लिए हुए हैं। इनके गले में लॉकेट हैं। यदि आपको विश्वास सोनकर के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्ज़ापुर को सूचित कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार गोविंद चंद बर्मन पुत्र श्री महेंद्र चंद्र बर्मन ये 25 सितंबर सन 2025 से लापता हैं। गोविंद चंद बर्मन के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 58 वर्ष, रंग सांवला है, चेहरा लंबा है, बाल सफ़ेद और काले मिक्स हैं, लंबाई 5 फीट 4 इंच है, दुबला पतला शरीर है, आँखें छोटी और अंदर की ओर धंसी हुई हैं, मुंह में दांत कम है, सिर का बाल कम है, दाहिनी आँख के ऊपर चोट का निशान है। ये बंगाली भाषा बोलते हैं, इकहरा मजबूत शरीर है। यदि आपको गोविंद चंद बर्मन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी

0: विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान कल से पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला, इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे

0: क्षेत्र को अपना परिवार माना।
1: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज गोंडा से नकहा जंगल गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन नकहा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक चलेगी। वहीं पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज चौथे बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़े मंगलवार के अवसर पर लखनऊ स्थित हजरतगंज के प्राचीन दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के निकट आयोजित भंडारे में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ ही 56 भोग लगाए गए। प्रदेश में आगामी बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में मेरठ में पर्व को लेकर प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।
3: हम लोग जो परंपरा विगत वर्ष थी उसी का अनुपालन करेंगे और शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो नागरिक सुविधाएं है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, फायर की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। विद्युत की आपूर्ति भी हमने विद्युत विभाग को कहा है कि प्रातः सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक अनुरोध विद्युत की सप्लाई हो। और
0: प्रदेश में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वहीं एक अन्य घटना बारामती जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के

0: से गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
2: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं सुविंदर सिंह की आवाज में फिल्म कच्चे धागे का गीत। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार नुसरत फतेह अली खान।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं अदनान सामी की आवाज में। फिल्म है बजरंगी भाईजान। इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम रसरंग का अगला गीत आइए सुनते हैं, राहत फतेह अली खां की आवाज़ में फिल्म सुल्तान से। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार विशाल शेखर।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये

बजने दे जरा। जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं आबिदा परवीन, इनकी आवाज में आज आप सुन रहे हैं सूफियाना गीत।

सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आप तो ऐसे ना थे का गीत। इस गीत को लिखा है निदा फाजली ने और धुन तैयार की है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म इज्जत से। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म हंसते जख्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और एस बलबीर की है। इस गीत को लिखा है कैफी आज़मी ने और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कल की आवाज़ का गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने और धुन तैयार की थी नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म धनवान से। इस गीत को लिखा है साहिर ने और संगीत से सजाया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। आवाज़ लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की है।

0: श्रद्धा गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब समाप्त तो होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक

0: ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
3: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
4: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
3: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ

0: और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे चार लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी

रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया।

0: 75 से अधिक देश के 500 से अधिक एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
1: उन्होंने कहा कि तकरीबन 75 मुल्कों ने योगा आसन चैंपियनशिप के लिए इंदिराज कराया है और दुनिया भर से 5,000 से ज्यादा शुरका के हिस्से में हिस्सा लेने का इम्कान है। तकरीब के दौरान वजीर मौसूफ ने पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप 2026 के लिए मास्कट, जर्सी और चैंपियनशिप फिल्म का भी आगाज किया। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आदमी ने हज अहम तरीन मनासिक हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब के मैदान अरफात में जमा हुए। तमाम आजमीन हज सफ़ेद अहराम बांधे हुए थे, जिन्होंने खुतब हज की समाअत की और मस्जिद निबरा में एक साथ जुहर और असर की नमाज अदा की। अब तमाम हुज्जाज कराम मुजदलफा के लिए रवाना होंगे और एक साथ मगरिब और ईशा की नमाज अदा करेंगे। हुज्जाज कराम रमीय जमरात के लिए कंकरियां भी इकट्ठा करेंगे। वो मुजदलफा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। इसके बाद वो कल सुबह मीना वापस पहुंचेंगे, जहां वो कुर्बानी का फरीजा अंजाम देंगे और रमीय जमरात करेंगे। इस साल 1,75,000 से ज्यादा भारतीय हुज्जाज कराम फरीज हज अदा कर रहे हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान गर्मी में तेजी आने की भी पेशगोई की है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके से मुतालिक बेबुनियाद हवालों को वाज तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इन बेबुनियाद हवालों से मुतालिक मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मुतालिका फरीकैन के लिए भारत का मौकिफ कतई, वाजह और अच्छी तरह जाना पहचाना है। उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तर्जुमान ने कहा कि सूरत हाल पर तबसरा करने का किसी भी दूसरे मुल्क को कोई हक नहीं है। आज वियतनाम के दनांग में 23 साल तक की उम्र की कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों ने अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखा और मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा जीता। 65 किलोग्राम जुमरे में मोहित कुमार ने किर्गिस्तान के खिलाड़ी को 12-4 से हराकर सोने का तमगा जीता। 79 किलोग्राम के जुमरे में चंद्रमोहन ने भी कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी के साथ एक सनसनीखेज मुकाबले में उसे 7-6 से शिकस्त दी। इस दौरान 92 किलोग्राम के जुमरे में पुनीत कुमार ने चांदी का तमगा जीता। 125 किलोग्राम के जुमरे में भी भारत को चांदी का तमगा मिला। बैडमिंटन में आज ओलंपिक में 2 बार तमगा हासिल करने वाली पीवी सिंधु और भारतीय मर्दों की डबल की जोड़ी सत्विक सहराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन के 16वें राउंड में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वारदानी को 21-17 और 21-18 से हराकर टूर्नामेंट के 2 राउंड में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खबरें एक बार और। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बायस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निजाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपए फी क्विंटल कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं एस बाबुल सुप्रियो की आवाज में ये गीत।

0: श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन। कार्यक्रम अभी और भी है, लेकिन पहले ये संदेश।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार को दिन में 11:30 बजे और महीने के आखिरी रविवार को दोपहर 2:30 पर। तो इस बार आरोग्यम में कार्यक्रम का विषय है न्यूरो और स्पाइन के रोग, कारण, लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अवनीश राय। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 28 मई 2026 को प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच। तो श्रोताओं, हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।
0: कार्यक्रम अंजुमन में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गजल। कलाकार हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता।

कार्यक्रम की अगली गजल आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में। शायर हैं नसीम अख्तर और संगीत भूपेंद्र सिंह का।

भूपेंद्र सिंह की गाई इस गजल के साथ ही गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खेल दर्पण प्रस्तुति आकाशवाणी प्रयागराज की है।
1: खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांति तिवारी स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में।

0: आज के अंक में आप सुनेंगे अर्जुन पुरस्कार विजेता जिमनास्ट आशीष कुमार से सुंदरम तिवारी की भेंटवार्ता और हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत और अंत में सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं सुंदरम तिवारी और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न केवल प्रयागराज बल्कि भारत को भी स्वयं पर गर्व करने के कई अवसर दिए हैं। प्रयागराज के जाने माने अर्जुन अवार्डी जिमनास्ट श्री आशीष कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
1: आशीष जी, एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। एक जो आम माता पिता हैं वो अपने बच्चों से ये बात कहते हैं एक उम्र में, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने इस कहावत को झुठला दिया। कितना मुश्किल था ये डिसाइड करना या कितना आसान था आपको अपने माता पिता को कन्विंस करना कि मैं एक खेल को अपने प्रोफेशन के तौर पे चुनूंगा? कैसे आपने कन्विंस किया था अपने माता पिता को?
2: देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर खेल का अपना अलग नेचर होता है, अपनी अलग प्रतिक्रिया होती है। जहाँ तक बात है जिम्नास्टिक की, तो जिम्नास्टिक्स में क्या है कि बच्चों की जो प्रशिक्षण है वो बहुत कम उम्र से स्टार्ट होती है। तो बच्चों का जो ट्रेनिंग है, जो एक्चुअल एज है जिम्नास्टिक में, वो 4 साल मानी गई है। अच्छा, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हमारे गेम में क्या है, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके शरीर का लचीलापन, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। 50% स्ट्रेंथ, 50% फ्लेक्सिबिलिटी, ये होना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा,
2: तो जब बच्चा छोटा होता है, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी
1: बहुत होती है,
2: क्योंकि अभी उनकी शरीर विकसित हो रही है, हड्डियां लचीली हैं। आपने देखा होगा कि मटका होता है जब बनता है, तो वो आपके हाथ में होता है, आप उसको जिस शेप में ढालेंगे वो ढल जाएगा। तो जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इसीलिए कहा जाता है कि जिम्नास्टिक्स में जो बच्चा ढल जाता है वो कोई भी गेम हो वो अच्छा ही करेगा। इसीलिए आप देखिए कई ऐसी कंट्रीज है, स्पेशली चाइना, जहाँ पे जिम्नास्टिक कंपलसरी है कि बच्चों को पहले 5 साल जिम्नास्टिक करानी ही करानी है।
1: आपके केस में किसने निर्णय लिया? आपने निर्णय लिया कि मुझे खेलना है, या आपके फादर मदर जो आपके पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजूंगा?
2: ऐसा था कि मैं 4 साल का था, मेरे फादर रेलवेज में थे, वो गाजियाबाद पोस्टेड थे।
1: अच्छा।
2: उनको तो पता भी नहीं था कि मेरा एडमिशन हुआ है। 1992 में नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जिम्नास्टिक का सेंटर जो बॉयज के अंदर है वो खुला, तो वहां से ये शुरुआत हुई। मेरे भाई ने मेरा एडमिशन कराया जिम्नास्टिक हॉल में
1: जी।
2: और मेरे फादर को नहीं पता था, मेरे फादर को बहुत बाद में पता चला कि मैं जिम्नास्टिक जाता हूँ। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई जिम्नास्टिक की।
1: क्या बात है। जिम्नास्टिक में आपने जैसे बताया कि मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है, लचीलापन फुर्ती जरूरी होती है। 2006 सूरत जो पहला पदक शायद आपको मिला
2: जी,
1: पहली सफलता जब किसी न्यूज़पेपर ने आपका नाम शायद पहली बार छापा, एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, थोड़ा सा उस मोमेंट के बारे में हमें बताएं जब पहली बार आपको लगा कि आप आशीष कुमार से एक सेलिब्रिटी आशीष कुमार के रूप में परिवर्तित हो गए।
2: ये 2006 मेरा सीनियर का पहला कंपटीशन था।
1: अच्छा।
2: और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो मैंने 2006 में खेला था, एक्चुअल में मेरी जो एज थी
1: जी
2: उस टाइम पे जूनियर की थी।
1: अच्छा।
2: बट मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बेटर थी, इम्प्रूव्ड थी, तो मुझे सीनियर खिलाया गया। और 2006 एशियन चैंपियनशिप से मेरा पहला सीनियर में जो कंपटीशन था वो कॉमनवेल्थ गेम्स का था।
1: अच्छा।
2: वहां से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि क्या होता है जब आप खेलते हैं तो आपको पता चलता है अरे ये इतना बड़े लेवल का कंपटीशन है। फिर 2006 एशियाई चैंपियनशिप जो सूरत में हुई थी
1: जी,
2: भारत के पास इससे पहले सीनियर एशियन कैटेगरी में कोई भी मेडल नहीं था। हम वहां गए, ट्रेनिंग की, और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वहां पे फ्लोर एक्सरसाइज जिसपे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था 2006 में ये हुआ, और 2008 ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट भी आया हुआ था जिसने 2008 में गोल्ड लिया है फ्लोर पे।
1: अच्छा।
2: तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बट सबसे अच्छी चीज नर्वस नहीं था, एक एंजाइटी थी, डर था। और जब मैं फाइनल में पहुंचा, इंडिया से अकेले मैं ही फाइनल में पहुंचा था
1: जी,
2: और फ्लोर इवेंट मेरा बेस्ट इवेंट है उस पे था। इंडिया क्राउड, मैंने पहली बार देखा कि इंडिया में जिम्नास्टिक का कॉम्पिटिशन हो रहा है, और मोर देन आई थिंक 3,000 to 4,000 पब्लिक उस स्टेडियम में थी, और बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट था इंडिया में। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इंडिया में इतना बड़ा कंपटीशन खेलने का।
1: अच्छा।
2: जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की एंग्जाइटी को कंट्रोल करके, और जब मेरा मेडल आया तो वो मतलब बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मेरे लिए एक्सपीरियंस था। एज कम थी तो मुझे

0: इन सब चीजों का मतलब नहीं पता था कि पहला मेडल जो जीतता है तो कैसा फील होता है। बस मेरे लिए था कि मैंने मेडल जीत लिया, मैं बहुत खुश था, क्योंकि कम एज में बच्चों का माइंड दूसरे तरीके से काम करता
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल,
0: अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार कंट्री का पहला मेडल एशियन चैंपियनशिप में सीनियर में एक बहुत बड़ी बात होती है
1: निश्चित रूप से बड़ी बात
0: ये।
1: होती है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल, फिर 2010 का ही ज्वांग खेल, 2011 का ढाका दक्षिण मध्य एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, और फिर 2011 में एक भारत का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जब मिला आपको, वो क्षण कैसा था?
0: देखिए अर्जुन पुरस्कार जिस समय मिला, अब उसको मेरा बैड लक कह लीजिए, जिस टाइम पर अर्जुन पुरस्कार मिलना था उस समय हम लोग लंदन में कैंप कर रहे थे,
1: अच्छा
0: क्योंकि उसी साल ओलंपिक से क्वालिफिकेशन होने थे जापान में, और सेम टाइम पे ही, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं,
1: जी
0: राष्ट्रपति भवन में मिलता है, तो मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंज उस समय आया, क्योंकि मेरी पूरी टिकट्स बुक थी इंडिया आने की। अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि जिस डेट में ये पुरस्कार वितरण होने थे उसी डेट के एक दो दिन गैप में वर्ल्ड कप होने थे
1: अच्छा
0: बेल्जियम में। मेरे लिए चैलेंज ये था कि अगर मैं इंडिया ट्रैवल करता हूँ तो देखिए आप इतनी दूर से इंडिया ट्रैवल करेंगे, एक दिन आपको लेने में लगेगा और फिर सेम डे आपको वहीं से डायरेक्ट बेल्जियम जाना पड़ता, तो मेरा बीच का जो ट्रेनिंग था वो छूटता,
1: अच्छा
0: आपको वहां पर ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता।
1: जी
0: तो उस टाइम पे मैंने कंपटीशन को सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे लिए उस समय वो जरूरी था, वो मेरा एक सेक्रीफाइस था जिसको मैं मिस करता, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑनर लेना अपने आप में एक ऑनर की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा मैंने बोला उस टाइम पे मैं एज अ प्लेयर, तो मेरे लिए डिसीजन ये था कि ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जाके हमारा आगे के ओलंपिक्स के रास्ते खुलेंगे। तो वहां पे मैं उसमें नहीं गया था। फिर इंडिया आने के बाद उस समय जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अजय माकन, उनके थ्रू मैंने अपना अवार्ड लिया, बट उनसे भी वो अवार्ड लेना मेरे लिए बड़ा प्रेस्टिजियस था, क्योंकि
1: जी
0: जब छोटा था तो मैं सुनता था कॉमनवेल्थ मेडल, अर्जुन अवार्ड, मतलब लगता था कि ये वाकई बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है जब आपके पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास बहुत उपलब्धियां हैं, तो आप जब उसको देखते हैं ना, तो कई बार अगर आपको लगता है मैं कैपेबल हूं तो आप उस चीज को फील कर पाते हैं, कि जब वो
1: बिल्कुल
0: चीज हमारे नाम से जुड़ती है तो आपको वो 100 करोड़ जनता से ना अलग कर देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद जब आप प्रयागराज आए, जो मित्र थे, माता पिता, उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं?
0: क्या होता है नॉर्मली अपने जिम्नास्टिक में जब कोई मेडल लेता है तो लोग जाते हैं,
1: जी
0: एक नॉर्मल भीड़ होती है। हम ट्रेन से आ रहे थे, मैं थे, मेरे फादर, मदर और डॉक्टर यूके मिश्रा,
1: जी
0: हम सब साथ में ही ट्रेन से वापसी कर रहे थे, और मुझे लगा कि बड़ा मेडल है, लोग होंगे, बट लिटरली जब ट्रेन जंक्शन पे लगने लगी, आप सोचिए मुझे 300 मीटर दूर से ही ना ढोल नगाड़े की आवाज आने लगे,
1: क्या बात है।
0: तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, मुझे लग रहा लोग आए हैं, बट लिटरली जब मैंने इंटर किया मुझे इतना क्राउड देखा, इतना क्राउड, मुझे लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है, मतलब एक्सेप्शनल क्राउड, पूरा स्टेशन भरा हुआ था।
1: जी
0: मैं अपना पैर स्टेशन पे रख ही नहीं पाया, निकलते ही गोदी में लेके मुझे मिश्रा सर को, जो मेरे कोच थे, डीके राठौर, माले पे माला, और कोई भीड़ से निकल के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, यंग्स बच्चे जो नए ज्वाइन किए हुए थे, और स्टेशन पे बाकी लोग, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं उनको नहीं पता, लेकिन जब उनको भी पता चल रहा था तो वो भी क्राउड में सम्मिलित हो रहे थे,
1: जी
0: वो भी देखना चाह रहे थे कि भाई पहला मेडल जिसने लिया है कौन है। तो वो मेरे लिए मेरे लाइफ टाइम का एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है।
1: आपकी इस अचीवमेंट से हटके अब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते आपका जो ज्यादातर समय होगा वो निश्चित रूप से आप अपनी प्रैक्टिस पे देते होंगे। एकेडमिक्स, जो आपकी एजुकेशन थी, वो कैसे आप उसमें एजुकेशन और अपनी प्रैक्टिस में बैलेंस बनाते थे?
0: जिम्नास्टिक्स में जैसे मैंने बताया, मैं नर्सरी में था जिस समय मैंने ज्वाइन किया, मैं 4 साल का था,
1: अच्छा
0: तो क्या होता है नर्सरी प्रेप ये फिर भी मैनेजेबल होती है स्टडी।
1: हाँ
0: जब 2013 में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला ट्यूलिट पीटर कप हंगरी बुडापेस्ट में,
1: अच्छा
0: उसको खेलने के बाद क्या होता है, अंडर 14 जब आप खेलने लगते हैं तो आपका ट्रेनिंग बर्डन बढ़ने लगता है, और जिम्नास्टिक्स में हम लोगों की सुबह की ट्रेनिंग 4 बजे से होती है,
1: अच्छा
0: शाम को भी, मतलब एक दिन में 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग होती थी। 2013 के बाद मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं कई बार ऐसा भी होता था कि हफ्ते में 2 दिन ही स्कूल जाता था,
1: अच्छा
0: बट इंटरनेशनल खेलने के बाद मैं आपको बताऊं, मैं नर्सरी से लेके 8 तक राजापुर में एक स्कूल है, वहां की प्रिंसिपल ने मुझे काफी सपोर्ट किया उस टाइम
1: अच्छा
0: पे। और फिर देखिए 2013 अगर आप देखेंगे तो काफी बैक की बात है। फिर स्कूल्स को क्या रहता है ना, उनको एक्सपेक्टेशंस कम होती है कि स्कूल से कोई बच्चा निकल के यहां तक जा सकता है, वो भी जिम्नास्टिक जैसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि जिम्नास्टिक्स को उस समय उतनी वो नाम नहीं मिला
1: हाँ,
0: था,
1: उतनी पॉपुलरिटी
0: हाँ,
1: नहीं थी
0: पॉपुलरिटी
1: इंडिया
0: नहीं
1: में।
0: थी, लेकिन जब मैं खेल के आया वहां से मैंने लगभग 5 मेडल

0: जीते थे, तो स्कूल्स वाले काफी सपोर्ट करते थे और
1: कुल मिला के तालमेल बन गया
0: तालमेल बन
1: बन गया।
0: गया।
1: आशीष जी, एक सीनियर प्लेयर के रूप में आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं?
0: जो यंग बच्चे हैं,
1: जी
0: स्पेशली 4 से लेके 10 साल 12 साल तक के
1: जी
0: बच्चे, उनको डेफिनेटली स्पोर्ट्स में आना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
1: अच्छा
0: अभी गवर्नमेंट ने, अब देखिए खेलो इंडिया स्कीम्स है।
1: जी, मैं ये बात पूछना ही चाह रहा था कि जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों में तो जो व्यावसायिक तौर पे जो प्रोफेशनल स्टेडियम भी हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पर तो संभवतः हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गवर्नमेंट से ही होती हैं, तो
0: हाँ
1: उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, ये भी मैं
0: देखिए,
1: पूछना चाह
0: मैं
1: रहा था।
0: उनके लिए स्पेशली आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा ऑब्जर्व रहा है, बड़े शहरों की उपेक्षा छोटे शहरों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स को अवेयर होने की।
1: अच्छा
0: देखिए क्या होता है, बच्चा छोटा है, 4 साल का बच्चा, उसको क्या पता क्या करना है। आपको पता है बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसे वो
1: जी
0: पता है, लेकिन अब पेरेंट्स को भी अवेयर होना है कि नहीं, बच्चे को मुझे एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में डालना है।
1: जी
0: जिमनास्टिक में डाल दीजिए, बैडमिंटन में डाल दीजिए।
1: तो ये बेसिकली माता पिता की जिम्मेदारी है कि
0: जी
1: वो डिसाइड करे कि बच्चे को किस दिशा में भेजना है। ठीक है,
0: जरूर।
1: चलते चलते बस एक सवाल ये कि सफलता के क्षण तो सभी शेयर करते हैं, सभी एंजॉय करते हैं, सफलता के क्षण शायद एक स्पोर्ट्समैन के जीवन में कम ही होते हैं, असफलताएं और दबाव ज्यादा होते हैं, उनसे कैसे आप निपटते थे? और एक सवाल और कि जो युवा इस समय स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें?
0: देखिए, जहां तक सवाल है असफलता का, तो स्पोर्ट्स का शब्द ही यही है कि आपको गिरना, खड़े होना,
1: जी
0: ये स्पोर्ट्स सिखाता है, ये आपको कोई और नहीं सिखा सकता। और शायद यही एक कारण है कि एक स्पोर्ट्समैन जब गिरता है, सफलता है, तो वो उसको मेंटली टफ बनाता है, और जो प्लेयर उससे जूझ के आगे निकलता है, तो वो या तो इतिहास रचता है, या तो अपना एक नाम बनाता है
1: जी
0: और अच्छी जगह पे सेटल होता है। और युवाओं को मैं एक बड़ी छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ,
1: जी
0: जो मेरे सीनियर्स डॉक्टर यूके मिश्रा जी ने मुझे बताया था,
1: जी
0: और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, लोगों की थिंकिंग है कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, जो मेन चीज़ है वो है समय। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 साल से लेके 18 साल तक ये आपका समय है काम करने का, चाहे आप स्टडी में करिए, चाहे स्पोर्ट्स में करिए। जिसने अपने आप को इन 18 साल में जी तोड़ मेहनत कर दी किसी
1: जी
0: भी फील्ड में, मैं स्पोर्ट्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स में तो है ही है, अगर इस समय आपने अपने आप को मेहनत करके डाल दिया, तो ये आप मान के चलिए आपका आने वाला समय आरामदायक होगा। लेकिन अगर इस समय आपने आराम कर लिया, तो आगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा।
1: निश्चित रूप से आशीष जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण और रुचिकर बातें की हमसे, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आइए अब सुनते हैं हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत।
3: खेल से शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, मानसिक महत्व भी इसका कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं खेल के दौरान, मैदान में आपको अक्सर देखने को मिलती है, तो चुनौतियों का सामना करने में खेल का कितना महत्व है, उससे हमें कुछ सीख मिलती है। आज हम हैमर थ्रो, एक खेल है, उस पर बात करेंगे और उसमें क्या-क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, भारत में इस खेल की लोकप्रियता क्या है और उसके समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह जी। चंद्रोदय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: चंद्रोदय जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें।
4: मेरा नाम चंद्रोदय नारायण सिंह है।
3: जी
4: मैं अंतर्राष्ट्रीय हैमर थ्रोअर हूँ। प्रोफेशन से मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मौजूदा समय पर मैं इंडियन ऑयल में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ, यहीं प्रयागराज में।
3: आपके कोच रुस्तम खान जी रहे हैं, आप लक्ष्मण अवार्ड 2012 के विजेता भी रहे हैं, और जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आप 9 बार इस खेल के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2014 के फाइनलिस्ट भी आप रहे हैं, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2013 जो कि पुणे में हुआ था उसके भी आप रजत पदक विजेता रहे हैं। तो आपका जो एक खेल यात्रा है उसको किस रूप में देखते हैं?
4: मैं अपने खेल यात्रा को ऐसे देखता हूँ जैसे मैंने अपने लाइफ को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आज जो मैं पाया हूँ, वो एक हर आदमी चाहता है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए।
3: जी, हैमर थ्रो जो खेल है इसको आपने करियर के रूप में चुना है, आपने कब चुना और इस खेल को चुनने के लिए जो प्रेरणा इसके पीछे होती है।

0: इस खेल को चुनने की प्रेरणा मुझे मेरे मदर फादर से मिली थी। मेरे फादर खुद इंटरनेशनल हेमाथ्रो और डिस्कस थ्रो थे,
1: जी
0: मेरी मदर भी नेशनल हॉकी टीम की खिलाड़ी रही हैं, तो मुझे अपने परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट था स्पोर्ट्स करने के लिए।
1: जी
0: और मेरे गुरु भी, जिनका आप नाम ले रहे हैं, मोहम्मद रुस्तम खान साहब, ये इंडिया के सबसे बढ़िया हेमाथ्रोअर कोच कहे जाते हैं।
1: अगर भारत की बात करें तो क्रिकेट महत्वपूर्ण खेल है, लोकप्रिय भी है, उसके बाद बैडमिंटन वगैरह का नाम आता है। आजकल जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं उसमें जो स्थानीय लोकल जो खिलाड़ी हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, तो इससे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हैमर थ्रो जो खेल है, चूंकि ये भारत में इतना लोकप्रिय नहीं है अन्य देशों की तुलना में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं या इसकी चुनौतियां क्या हैं?
0: हैमर थ्रो जो है ये यूरोपियन गेम्स है।
1: जी
0: एथलेटिक्स में एक गेम होता है थ्रो में, जैसे चार थ्रो होते हैं, जेवलिन, डिस्कस, हैमर, शॉट पुट, तो उस थ्रो में एक कैटेगरी होती है हैमर थ्रो। ये यूरोप से आया था। इसको कहा जाता है वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम। टेक्निकल की बात करते हैं तो वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम दो होते हैं, एक पोल वॉल्ट होता है, एक हैमर थ्रो है, जिसको वर्ल्ड ने खुद सर्टिफाइड किया है कि मोस्ट टेक्निकल गेम। और इस गेम का सरकार ने जितना बढ़ावा दिया है समय कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। हैमर थ्रो एक ऐसा खेल है कि गांव से जो बच्चे आते हैं वो इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वो इसको
1: जी
0: ज़्यादा महत्व समझते हैं शहर के मुकाबले, क्योंकि उनको मालूम है कि हैमर में समय देना पड़ता है, आपको 8 साल की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी तब आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो ज़रा टाइम टेकिंग है ये, मतलब आपकी स्टार्टिंग में तो आपको 5 साल, 7 साल, 8 साल तो प्रैक्टिस करेंगे, जब आप तब आप उसमें परफेक्ट होंगे। एक कहावत कही जाती है ना, प्रैक्टिस में मेक परफेक्शन,
1: जी
0: तो हम हैमर को इस रूप में देखते हैं।
1: आपने जो हैमर थ्रो खेल चुना उसकी भारत में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकप्रियता कम है, तो इसको अगर कोई एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी है या शहरी पृष्ठभूमि का है वो अगर इसका चुनाव करता है तो उसके लिए क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं, और साथ ही साथ भारत में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा या निजी प्रयासों के द्वारा?
0: हैमर एक ऐसा गेम है जो इस टाइम हमारे गांव में बहुत ज़्यादा एडवांस है। गांव के बच्चों को उसको खेलने में मज़ा आता है, उनको देखने में भी उतना अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि इसको करने के लिए। इसके साथ कठिनाई ये है कि ये आपको देखिए, नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल हैमर थ्रो बनने के लिए आपको डाइट, उसके बाद रेस्ट आपकी कितनी है, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके साथ मेहनत कर सकते हैं।
1: आपने मेहनत की बात की, लेकिन मेहनत के साथ साथ जब सुविधाएं मिलती हैं यानी तकनीक, जिसे आज के समय में हम कह सकते हैं, तकनीक का इस खेल में कितना योगदान है?
0: तकनीक का तो इसमें, इस खेल में इतना योगदान है कि ये वर्ल्ड का, विश्व का सबसे कठिन गेम कहा गया है। जो इसकी टेक्निक कही जाती है, जिस तरीके से इसको फेंका जाता है, वो एक तरह से मतलब कि बहुत चैलेंजिंग होता है एक आदमी के लिए। एक आदमी जब स्पोर्ट्स करने आता है तो हैमर जब उठाता है तो स्टार्टिंग मतलब देखने में तो अच्छा लगेगा कि ऐसे टर्न कर सकते हैं हम, लेकिन जब आप 7.5 किलो का हैमर उठाते हैं, उसको स्विंग करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इस गेम में हम जितनी टेक्निक, जितना हम नेचर से, जितना हम फिजिक्स से, बायोलॉजी जो हम जान रहे हैं उसका यूज़ करते हैं तो उसका हमको रिजल्ट मिलता है। अगर हम उसका रिजल्ट, उसका यूज़ नहीं करेंगे तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं कि परफॉर्मेंस नहीं बढ़ना, मीटर चेज नहीं होना, जो टारगेट मिला वो टारगेट चेज नहीं हो पाते हैं।
1: आज भी ये खेल, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के पृष्ठभूमि के लड़के हैं या खिलाड़ी हैं वो इसको सहज रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें तो इस खेल में भारत के जो खिलाड़ी हैं उतना प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्या कारण है इस?
0: थोड़ा सा भारत में थोड़ा सा टेम्परेचर की बात होती है, क्योंकि ये यूरोप से आया है, तो यूरोप आप जान रहे हैं कि ठंडा राज्य रहा है।
1: जी
0: भारत में आप गर्मी का, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है खिलाड़ियों को, लेकिन आप हैमर का, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये 8-10 साल बाद, जैसे आज हमारे देश में नीरज चोपड़ा जी हैं
1: जी
0: जिन्होंने जेवलिन में नाम रोशन किया, नहीं अभी तक कोई जेवलिन भी नहीं जानता था,
1: जी जी जी
0: लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे ने ऐसा करके दिखाया कि लोग आज एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो को यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही एक समय आएगा, जैसे डिस्कस थ्रो था, विकास गौड़ा जी थे हमारे, कई ऐसे खिलाड़ी थे, अनिल कुमार जी थे, जिन्होंने उस खेल को बढ़ावा दिया और जिससे लोकप्रिय खेल हुआ। तो वैसे अब हैमर का भी समय आएगा, हैमर को 7-8 साल लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को।
1: किसी भी खेल के पीछे प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की एक महती भूमिका होती है,
0: जी
1: तो इस खेल के लिए भारत में जो ट्रेनिंग की स्थिति है और उसकी क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: चुनौतियाँ तो बहुत हैं।
1: जी
0: पहली चीज़ तो स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन में होना चाहिए, ज़्यादातर उसको कोशिश करना चाहिए कि वो नॉर्मल आम जनता में नहीं समझे अपने आप को, क्योंकि वो एक खास चीज़ करने जा रहा है तो उसको अपने आप को खास मानना पड़ेगा इस स्पोर्ट्स को करने के लिए।
1: जी चंद्रोदय जी, आपका एक लंबा खेल अनुभव रहा है, एक लंबा करियर रहा है, वर्तमान में आप सरकारी जॉब में हैं, तो कोई ऐसा यादगार अनुभव हो जिसे आप

0: श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
1: मेरा यादगार लम्हा रहा है जब मैंने विश्व के सबसे बड़े
0: जी
1: हेमथ्रो से मुलाकात की थी, जिन्होंने 1986 में 86 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिनको शायद ही लोग नाम सुने होंगे। यूरी सैदिक नाम था उनका,
0: जी
1: यूरोपियन थ्रोअर थे वो। एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब मैं उनके पास ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि जिस साल उन्होंने ओलंपिक मेडल लिया था, उनके जो कोच थे बंदरचुक साहब,
0: जी
1: वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे ओलंपिक में, कोच भी और उनकी ट्रेनिंग भी। कोच थर्ड था और उनकी ट्रेनिंग फर्स्ट सेकेंड थे। तो ये ऐसा यादगार पल था जिसको हमने कभी सुना था, जिनको हम मोबाइल पे और वीडियोस देख के सीखते थे, उनसे जाके सीखना का एक एक्सपीरियंस जो हमको सरकार ने मौका दिया, फेडरेशन ने, साई ने, ओलंपिक संघ ने हमको जो मौका दिया, वो
0: जी
1: जिंदगी में सबसे यादगार पल है हमारा।
0: और कोई अनुभव?
1: अनुभव तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं,
0: जी
1: अच्छे भी रहे हैं, खराब भी रहे हैं।
0: जी जी
1: अच्छे अनुभव ऐसे ऐसे रहे हैं कि जहाँ उम्मीद भी नहीं थी वहाँ पे हम अपना बेस्ट करके गए। कई खिलाड़ियों ने मतलब कि उम्मीद नहीं की थी कि हम बेस्ट हो सकता है, वहाँ बेस्ट हुए। कई जगह अनुभव ऐसे भी थे कि जहाँ हम पहले से तैयार थे कि ये क्वालिफाई भी करेंगे हम और हम खेलने भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कहते हैं ना कि खिलाड़ी का दिन होता है, वो
0: जी
1: दिन हमारे नहीं थे, हम नहीं क्वालिफाई कर पाए। कई बार अफसोस भी हुआ, दिल भी टूटा, बहुत कुछ होते हैं। खिलाड़ी की ज़िंदगी बड़ी ऊपर नीचे चलती है।
0: जी चंद्रोदय जी, जब कोई खिलाड़ी एक मैदान पर प्रैक्टिस करता है और जब कंपटीशन के मैदान पर प्रैक्टिस करता है या नेतृत्व करता है देश का, तो उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं और कई बार हम सफल भी हो जाते हैं। तो सफल और असफल होने के बीच की किन किन चीज़ों की भूमिका होती है? क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं जब हम नेतृत्व करते हैं और उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं?
1: देखिए, खिलाड़ी के लिए सफल असफल तो ये आम बात है,
0: जी
1: क्योंकि जितनी वो मेहनत करता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सफल असफलता खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
0: जी
1: आज असफल हुए हैं, कल न कल सफल होंगे ही। हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं, कभी ना कभी तो हम सफल होंगे।
0: चूंकि आप एक हैमर थ्रो खिलाड़ी भी रहे हैं और एक आपका लंबा अनुभव रहा है, तो एक सफल हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए किस प्रकार की अनुशासन और दिनचर्या की आवश्यकता होती है?
1: एक हैमेथ्रो खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ेगा।
0: जी
1: अगर ट्रेनिंग नॉर्मल रूटीन बताया जाए तो सवेरे 5 बजे उठना, 5 बजे से 10 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर अपने रिकवरी में चले जाना, फिर शाम में 2 बजे 3 बजे प्रैक्टिस पर उतरना, 9 बजे तक 8:30 बजे तक प्रैक्टिस करना, तो उसकी एक लाइफ बंधी हो जाती है कि दोस्त यार नहीं रहते हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है नहीं, उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था,
0: जी
1: तो एक दिनचर्या ये हो गई थी मतलब कि हमको अपने आप को सफल बनाना है बस।
0: आपने डाइट की बात की कि एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए,
1: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए।
0: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे डाइट की आपने बात की, तो डाइट में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करें।
1: देखिए, डाइट तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जितना चाहिए
0: जी
1: वो उतनी पूर्ण करना चाहिए उस खिलाड़ी को,
0: जी
1: क्योंकि एक खिलाड़ी अपने शरीर का दिन भर में प्रैक्टिस के टाइम कम से कम 10 से 12 लीटर पसीना बहाता है,
0: जी
1: तो उस पसीने को रिकवरी करने के लिए आप पानी से तो कर नहीं पाएंगे, तो
0: जी
1: आपके लिए उसको हिसाब से डाइट देनी पड़ेगी।
0: जी भारत में इस खेल की संभावनाओं और जो युवा इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: भारत में इस खेल की संभावना मुझे बहुत अच्छी दिखती है।
0: जी
1: अब मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल छोड़िए, आप रियल वर्ल्ड में आइए, आप चुनौतियों से देखिए, तब आपको बहुत मज़ा आएगा।
0: चंद्रोदय जी, आप स्टूडियो में आए और इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, हमें उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं उनको लाभ अवश्य मिलेगा।
2: अब सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स ने बनाई अपनी जगह। एथलेटिक्स में पोल वाल्टर, देव मीना और कुलदीप कुमार ने एक ही दिन में 2 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर सुर्खियां बटोरी। और गुरिंदर वीर सिंह ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 10.09 सेकंड समय के साथ 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसके साथ ही 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। आज के अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति था, जिसे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किया गया।

0: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार को दिन में 11:30 और महीने के आखिरी रविवार को दोपहर 2:30 पर। तो इस बार आरोग्यम में कार्यक्रम का विषय है न्यूरो और स्पाइन के रोग कारण लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अवनीश राय। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 28 मई 2026 को प्रातः 10:00 से 11:00 के बीच। तो श्रोताओं हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है आशुतोष भट्टाचार्य का ध्रुपद गायन। राग है यमन। आपके साथ

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आशुतोष भट्टाचार्य का ध्रुपद गायन, राग था यमन। आपके साथ पकावच पर थे अंकित पारीख। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य

से सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में

0: देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. यूनियन